0: ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम वेव 268.1 मीटर और FM 103.5 MHz पर। समिन, आज इतवार हैं, सुबह के 6:35 होने वाले हैं। आइए प्रोग्राम सुनते हैं सुबगाही।
1: प्रोग्राम सुबगाही सुनने वाले सभी सामईन की खिदमत में हमारा खुलूस भरा सलाम पहुंचे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम के आगाज में कुरान करीम की इन चंद आयात मुबारक की तिलावत सुनते हैं। तिलावत के बाद इन्हीं आयात का तर्जमा भी नशर होगा।

0: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं। मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 MHz पर समय सुबह के 6:55 होने वाले हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में खबरें सुनते हैं।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। निर्वाचनायोगेन पश्चिम बंगालस्य फाल्टा विधानसभा क्षेत्रे सहायक मतदान केन्द्राणि समेत्य सर्वेषु 85-200 मतदान केन्द्रेषु पुनर्मतदानाय आदेशः प्रदत्तः। आयोगेन उक्तं यत् बुधवासरे फाल्टा विधानसभा क्षेत्रे बृहत् संख्यायां मतदान केन्द्रेषु मतदानावधौ नैर्वाचनिकापराधः लोकतांत्रिक प्रक्रियायां विघ्नता च जाता। अस्य मासस्य 21 दिनांके सर्वेषु मतदान केन्द्रेषु प्रातः 7 सायं 6 यावत् नूतन मतदानं भविष्यति। मतगणना मई मासस्य 24 दिनांके भविष्यति। पश्चिम बंगाले दक्षिण चतुर्विंशति परगना जनपदस्य 15 मतदान केन्द्रेषु ह्यः जाते पुनर्मतदाने प्रायः 90% यावत् मतदानं जातम्। द्वयोः विधानसभा क्षेत्रयोः पुनर्मतदानं शान्तिपूर्णरीत्या सम्पन्नताङ्गतम्। निर्वाचनायोगेन सम्बद्ध निर्वाचनाधिकारिभिः पर्यवेक्षकैः च प्राप्त प्रतिवेदनानाम् आधारे पुनर्मतदानस्य आदेशः प्रदत्तः आसीत्। पश्चिम बंगाल केरल तमिलनाडु असमेषु केन्द्र शासित प्रदेशे पुडुचेरीतेभ्यः विधानसभा निर्वाचनेभ्यः मतगणना श्वः भविष्यति। निर्वाचनायोगेन पश्चिम बंगाल निर्वाचनेषु केवलं केन्द्र प्रशासनस्य कर्मचारिणः मतगणनायाः पर्यवेक्षकरूपेण नियुक्ताः। अस्मिन् निर्णये भारतस्य सर्वोच्च न्यायालयः हस्तक्षेपं कर्तुं निराकृतवान्। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा, न्यायमूर्ति जॉय मल्या बागची चेत्येतयोः पीठेन निर्देशः दत्तः यत् आयोगस्य दिङ्निर्देशानां पालनं कठोरतया भवेत्। स्नातक चिकित्सा शिक्षायां प्रवेशाय नीट यूजी इति राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा अद्य आयोजयिष्यते। परीक्षा मध्याह्ने 2 सायं 5 यावत् प्रचलिष्यति। नीट इत्येतस्य सूचनानुसारेण परीक्षा केन्द्रे प्रवेशानुमति मध्याह्ने 12 यावदेव भविष्यति। नीट यूजी इत्येतस्य आयोजनं राष्ट्रीय परीक्षण संस्थया स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्रालयस्य शिक्षा मन्त्रालयस्य च अनुमोदनेन स्नातक चिकित्सा शिक्षायां प्रवेशाय 9200 वर्षात् भवति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी डॉ आर बाला सुब्रमण्यम इत्येतस्मै, डॉ जोरम अनिया इत्यस्यै च नीत्यायोगस्य पूर्णकालिक सदस्यत्वेन नियुक्त्यर्थं शुभकामनां प्रदत्तवान्। सामाजिक संचार पटले एकस्मिन् संदेशे श्रीमोदिना उक्तं यत् तयोः समृद्धानुभवः विभिन्न प्रकरणेषु गहनः अवबोधः नीति निर्माणं सुदृढं करिष्यति। असौ विश्वासं प्रकटितवान् यत् तयोः योगदानेन विभिन्न क्षेत्रेषु नवाचारः विकासः च वर्धिष्येते इति। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः जमैका, सूरीनाम, त्रिनिदाद टोबैगो चेत्येतेषाम् आधिकारिक यात्रायै प्रस्थास्यति। एषा यात्रा अस्य मासस्य 10 यावत् प्रचलिष्यति। गिरमिटिया समुदायानाम् उपस्थितेः कारणादेव एतेषां देशानां भारतेन सह विशिष्टः सम्बन्धः अस्ति। विदेशमन्त्रालयेन स्वीये वक्तव्ये उक्तं यत् यात्रावधौ डॉ जयशंकरः त्रिदेशानां नेतृत्वैः सह मेलनं करिष्यति। आईपीएल इति क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां चेन्नईस्थे एमए चिदम्बरम क्रीडांगणे चेन्नई सुपर किंग्स दलेन मुंबई इंडियंस दलम 8-0 पराजितम्। हैदराबादस्य राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रीडांगणे मध्याह्ने 3:30 सनराइजर्स हैदराबाद दलम कोलकाता नाइट राइडर्स दलम सम्मुखीकरिष्यति। तत्रैव अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे सायं 7:30

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा क्षेत्र का मतदान रद्द कर दिया है। इस क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को पुनर्मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। आयोग ने बताया कि यह निर्णय 29 अप्रैल को हुए मतदान में गंभीर चुनावी गड़बड़ी, अलोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद लिया गया। पर्यवेक्षकों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराने धमकाने और मतदान नियमों का उल्लंघन जैसे गंभीर अनियमितताओं का उल्लेख किया है। कई केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बटन पर जानबूझकर काला टेप लगाया गया था। अनधिकृत लोगों का मतदान केंद्रों में प्रवेश और दूसरों का वोट डालने की भी घटना सामने आई है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 मतदान केंद्रों पर कल फिर वोट डाले गए। मगराहाट पश्चिम के 11 और डायमंड हार्बर के 4 मतदान केंद्रों पर वोट डाले गए। कल शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी स्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनावों की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां कर ली हैं। तमिलनाडु में इसके लिए 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना के लिए 10,545 कर्मी तैनात किए जाएंगे। 4,624 सूक्ष्म पर्यवेक्षक भी तैनात किए गए हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक एक पर्यवेक्षक सहित कुल 234 मतगणना पर्यवेक्षक पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और आयोग के वर्तमान निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरामानिया को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य बनाए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका समृद्ध अनुभव और विभिन्न मुद्दों की गहरी समझ नीति निर्माण को मजबूत करेगी। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि उनके योगदान से सभी क्षेत्रों में नवाचार और विकास को गति मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंक का खात्मा करने को मोदी सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक बताया है। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कल नई दिल्ली में शौर्य कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान सशस्त्र बलों के अतुलनीय शौर्य ने इसे भारत के सैन्य इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बना दिया है। भारत ने पिछले 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। रोहित जैन को भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। श्री जैन इससे पहले बैंक में कार्यकारी निदेशक थे। वे 3 मई 2026 से 3 वर्ष की अवधि के लिए इस पद पर रहेंगे। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जा रही है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। परीक्षा केंद्र में दोपहर 1:30 बजे तक प्रवेश किया जा सकेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने परीक्षार्थियों के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। अभ्यर्थियों को अपने प्रवेश पत्र के साथ मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड या राशन कार्ड जैसा एक मूल फोटो पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है। अमेरिका की किफायती स्पिरिट एयरलाइंस ने 34 वर्ष बाद अपना कारोबार बंद करने की घोषणा की है। यह एयरलाइंस प्रतिदिन सैकड़ों उड़ानें संचालित करती है। इसमें लगभग 17,000 लोगों को रोजगार मिलता है। एयरलाइंस ने कहा है कि तत्काल प्रभाव से परिचालन बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कंपनी ने कहा है कि ईरान के साथ युद्ध के कारण तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से परिचालन जारी रखना असंभव हो गया था। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हरा दिया है। चेन्नई में कल पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 159 रन बनाए। जवाब में चेन्नई ने 18 ओवर और 1 गेंद में 2 विकेट के नुकसान पर 160 रन बनाकर मैच जीत लिया। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अहमदाबाद में एक अन्य मैच में गुजरात टाइटन्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल

में कल फ्रांस ने भारत को 3-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। पहले सिंगल्स में भारत के आयुष शेट्टी फ्रांस के क्रिस्टोफ पोपोव से हार गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura and Sikkim, as well as southern states of Keralam, Tamil Nadu and Puducherry today. Thunderstorms and hailstorms are likely to prevail over Ladakh and Jammu and Kashmir. And that is the end of this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं मीडियम वेव 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर. समय सुबह के 7:10 हुए हैं. आइए प्रोग्राम सुनते हैं पयाम सुबह.

0: लाइव है तो क्या कहना चाहेंगे?
1: मुझे लगता है मेरी तरह अक्सर माएं जब सुबह नींद से उठती है तो स्टक हो जाती हैं कि अब क्या बनाएं, और
0: जी
1: अक्सर हम टटोलने लगते हैं फ्रिज या किचन के शेल्व्स। दो चीजें हमारे घर में हमेशा होती है, वो है दही और सेमोलिना, सूजी।
0: जी
1: तो मैं अक्सर इन दो चीजों का इस्तेमाल करता हूँ। अगर आप 2 कप सूजी लें, एक बोल में डालें,
0: जी
1: उसमें 1 कप दही डाल दें और अच्छे से मिला लें, थोड़ा सा नमक और गुनगुना पानी डाल दें,
0: जी
1: इसको 10 मिनट रख दीजिए जब तक आप दूसरा कुछ काम करें। 10 मिनट के बाद इसे फिर से मिला लें और ये बिल्कुल स्मूथ पेस्ट जैसा बन जाएगा।
0: बिल्कुल
1: अब आके एक तवे पे 1 चम्मच घी या ऑयल डाल दें, जब वो गर्म हो जाए तो एक घोल एक बड़े चम्मच से इस तवे के सेंटर पे डाल के थोड़ा सा टैप करें।
0: जी
1: टैप करने के बाद ये फैल जाएगा और गोल डिस्क शेप बन जाएगी।
0: जी
1: अब उसके टॉप में आप कभी क्रश करके पीनट डाल दीजिए, कभी फाइन चॉप करके कैरेट डाल दीजिए, कभी फाइन चॉप करके कोई और सब्जी डाल दीजिए। अगर आपने चिकन बॉईल किया हुआ या रात उस चिकन या मांस, उसके छोटे छोटे पीसेस ऊपर डाल दीजिए
0: जी
1: और ढक दीजिए। तो ये इसका जब बेस ब्राउन हो जाएगा, हल्का सा पलट लीजिए 1 मिनट के लिए, ये एक इंस्टेंट उत्तपम बन जाएगा।
0: जी
1: इसे रीहीट करने की जरूरत नहीं है, ये कोई ये फैलेगा नहीं, ये टिफिन में जाएगा। इसके साथ आप बच्चे की मनपसंद चटनी या सॉस दे सकते हैं, वो इसे एंजॉय करेगा। तो
0: जी
1: एक इंस्टेंट उत्तपम है, उन चीजों से बना हुआ है जो आपके घर में ही मौजूद है। और टॉपिंग, जैसे मैंने कहा कि आप कोई भी टॉपिंग रोज चेंज कर सकते हैं,
0: बिल्कुल
1: तो ये एक बहुत आसान रेसिपी है। दूसरा, मैं आपको एक क्विकली बताऊं,
0: जी
1: हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे कभी राजमा खाएं, कभी अल्लू दाल खाएं, कभी कोई दाल खाएं, उन्हें अच्छा प्रोटीन मिले, वो लेकिन वो खाते नहीं है।
0: जी
1: तो एक हैक मैं बताता हूं, अगर आप रोटी बना रहे हैं, आटा एक बोल में डाल दीजिए, इसे
0: जी
1: पानी की जगह वही दाल डाल दीजिए पेस्ट करके, आप थोड़ा नमक डाल के इसे गूंद लीजिए,
0: अच्छा
1: ये बढ़िया रोटी बनाइए। अब बच्चे के पास ऑप्शन नहीं है, उस आटे से दाल अलग नहीं कर सकता, वो
0: बिल्कुल
1: आराम से वो रोटी खाएगा। आप भले ही उसमें चिकन, कभी कभी येलो दाल, कभी जो भी आप करना चाहते हैं, उसका पेस्ट डाल दीजिए और उसमें आटा गूंद लीजिए,
0: जी
1: बढ़िया गर्मा गर्म रोटी बना के उसे दे दीजिए। अगर आप टिफिन में दे रहे हैं, वेरी गुड, घर में उसे खिला रहे हैं, वो भी बढ़िया। दिस इज कॉल्ड मास्किंग ऑफ फूड, और ये है बच्चों के साथ बढ़िया काम करता है। और ये दोनों चीजें मैं बिल्कुल घर में ट्राई करता हूं, ये ऐसा नहीं कि कोई थ्योरेटिकल चीज है, ये
0: बिल्कुल
1: आजमाई हुई चीजें हैं।
0: देखिए यासीन साहब, ये सभी चीजें घर में मौजूद होती है। उचना कृषि प्रतिवार मंचे तुमलो चोटते बनावान चिना लगभग
1: बिल्कुल
0: से सुई
1: बिल्कुल,
0: इस्ती सूजी हुंद वोनु लगभग से इस्ती
1: एग्जैक्टली
0: आकार।
1: एग्जैक्ट
0: तो
1: बिल्कुल
0: मगर ये जो आपने कहा है कि ये छोटे छोटे हैक्स करने पड़ेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चा सेहतमंद रहे। एलसु यथ एज में सेहतमंद रोजे पथ हेक सु बुथित वुतरित। तो इसलिए
1: एग्जैक्टली
0: हमने
1: बिल्कुल
0: माओं बहनों की नब्ज इस वक्त पकड़ी कि सुबह सुबह हर कोई भागम भाग में होता है एवरी डे। तो
1: एग्जैक्टली
0: आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए, और ये जो डिशेस दो आपने बताई इनके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू वेरी मच, थैंक यू
0: थैंक्स अ लॉट। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू।

0: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: अरे यार तू कहाँ ले आया मुझे? अम्मा तेरी भाभी ने घर का सामान मंगाया है, नहीं ले गया तो शामत है। सुना यहाँ ऑफर्स भी है।
2: ओह,
1: सॉस एक में एक फ्री, कुकिंग ऑयल 40% ऑफ, 5 किलो आटा 70 रुपए।
3: भाई ऑफर तो ठीक है, लेकिन क्वालिटी और लेवल का क्या?
1: अम्मा लेवल लेवल छोड़, ऑफर्स देख।
3: ओए ऑफर किंग, ऑफर के चक्कर में अपनी आंखें मत ऑफ कर। क्वालिटी परखने के लिए लेबल पे गौर कर। किसी भी खाद्य उत्पाद की प्रामाणिकता की पहचान उसका लेबल है। खरीदने से पहले लेबल की जांच अवश्य करें।
4: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
5: अपने सपनों को दो एक पावरफुल डायरेक्शन विद यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। प्रेस्टीजियस MBA प्रोग्राम्स के लिए एडमिशन्स अब ओपन है। CMAT स्कोर के बेसिस पर चूज फ्रॉम 4 करियर डिफाइनिंग ऑप्शंस: MBA, MBA इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, MBA इन क्राफ्ट मैनेजमेंट और एग्जीक्यूटिव MBA। यहां मिलेगी आपको क्वालिटी एजुकेशन, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी और रियल इंडस्ट्री।

0: सोचा जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी लीडर। याद रखें, सिलेक्शन होगा सिर्फ आपके सीमैट स्कोर पर। लास्ट डेट एक्सटेंडेड है 4 मई तक, अभी भी वक्त है लेकिन ज्यादा नहीं। अप्लाई नाउ और अपने मैनेजमेंट करियर को ले जाएं नेक्स्ट लेवल पर। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, शेपिंग लीडर्स ऑफ टुमारो।
1: वादी कश्मीर की खूबसूरत फिजाओं में एक नई सुबह, एक नई ताजगी, पयामे सुबह।
2: आकाशवाणी श्रीनगर पेश कर रहा है एक जामिया लाइव शो पयामे सुबह,
1: जहां होंगी सेहत, साइंस और जिंदगी से जुड़ी मुफीद मालूमात,
2: और साथ ही खेल, सकाफत और अवामी मसाइल पर बामाने गुफ्तगु। पयामे सुबह
3: यारो वन बाजियारो वन,
1: हर रोज सुबह 7:10 से 11:30 तक, सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी श्रीनगर से।
2: मीडियम वेव 268.81 और FM 103.5 MHz पर। पयामे सुब
4: सुनो सजना,
2: पयामे सुब।
5: जी दोस्तों, पयामे सुब शो में इस वक्त आपके साथ है आपकी मेजबान सकीना और मेरे साथ हैं
6: परवेज मीर।
5: और दोस्तों ये भी आपको बता दें कि संडे का थीम होता है पयामे सुब का गुड न्यूज अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि जो भी खुशखबरी जिस भी फील से है वो हमें आपके साथ शेयर करनी है। तो एक दिलचस्प मालूमात आपके साथ इस वक्त शेयर करेंगे, वो ये कि ये मेडिकल साइंस की तारीख का लगभग एक मौजजाती माइलस्टोन माना जाता है। इटली में एक बच्चा डायलेटेड कार्डियो मायोपैथी यानी एक खतरनाक बीमारी में मुब्तला हुआ था। इस बीमारी से दिल के मसल्स फूलकर कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे दिल पूरे जिस्म को खून पंप करने के काबिल नहीं रहता। और
6: इटली के दारुल हुकूमत रोम में वाका बम्बिनो जेसो अस्पताल के डॉक्टरों ने
5: जी
6: ये अहम कारनामा अंजाम देकर इस नन्हे बच्चे को आर्टिफिशियल हार्ट, जिसका वजन सिर्फ 11 ग्राम का था, लगाकर उसकी जान बचा ली। ये डिवाइस असल में जार्विक 2000 नामी मशहूर पंप का एक मिनिएचर वर्जन था, जी, जिसे खास तौर पर बच्चों के छोटे जिस्म के मुताबिक डिजाइन किया गया था।
5: और दोस्तों को ये भी बता दे कि ये मस्नूई दिल मुस्तकिल हल के तौर पर नहीं था, बल्कि ये एक ब्रिज के तौर पर लगाया गया था ताकि बच्चा उस वक्त तक जिंदा रहे जब तक कोई इंसान जो इंसानी दिल बतौरे अतिया मिल न जाए। और इस नन्हे मरीज ने इस मस्नूई दिल के साथ 13 दिन गुजारे, जिसके बाद बड़ी कामयाबी से उसे एक इंसानी दिल ट्रांसप्लांट कर दिया गया।
6: जी सकीना जी, ये ते जिंदगी तो जमानन हर मैदान मज तरक्की पर
5: बिल्कुल सही,
6: तथ सारे हम जिम्मेदारी जे पजे जती तौर जिम्मेदार बन पे اخلاقی ذمہ داری بڑ جان پہ نکھوالنہ
5: یتھ کرو تہ وس تہ کرو اٹینشن ڈائیورٹ اس کران نوجوان ذیل کت کران توجہ دنچ ضرورت
6: بالکل تو یل تک چیز کن توجہ دمو تیل یہ اخ رت سماج بارسس اخ رت سماج سپدہ تعمیر خاص کر پہ پن نو پن کن زیادہ پہم توجہ دین تاکہ اس سون ان وول مستقبل اس سہ بن تابناک
5: یہ کرو تہ بالکل رس کت کاز کہ یل سون مستقبل تابناک روز تیل گھن اس ڈیولپمنٹس تیل گھن انوینشنس تیل بوزو اس خوشخبری
6: رچر یہ تیل
5: بالکل تو ساروی کھت بوڑ ذمہ داری مالس ماجہ کاز کہ ونکن مول موج پریت کان فیسلٹی بچن آتن تھوان مگر یوت یوت چھ کافی کی تاز مول موج تمس پریت کان چیز آتن تھوان بچس تو یہ ذمہ داری ہھ تمس برہ کن پکن کہ تم تھوان بچن ہند حرکاتو سکناتن پر تت پا نظر کہ بچس روزی احساس کہ مے وچان مے تس گائیڈنس کران یا یہ مے دوست بنت مین کاروائی
6: وچانٹی مالس ماج جواب
5: جواب دن کاز کہ جواب دہ روزن ضروری
6: صحیح تو دپان اس محنت کر تمس ملے محنت پھل
5: ونکس کرو تہ موقع پہ یہ کت کاز کہ آج خاص دہ مگر تمہ برہ ون بہ کہ ون اس محنت وقت پہ کر تیل کتھ بدل تو شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ ونان آدن سونچ چین اول تئی आदर।

0: जी दोस्तों, पयाम ए सुबह आप सुन रहे हैं आकाशवाणी श्रीनगर से। सुनने वालों को बता दें कि आज वर्ल्ड लॉफ्टर डे भी है, वर्ल्ड प्रेस डे भी है। और देखिए, जो वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है वो है खुशी, कहकहा। तो आपको बता दें कि वर्ल्ड लॉफ्टर डे यानी आलमी योम कहकहा दुनिया भर में हंसी मजाक, खुशी और सेहत के फवाइद को उजागर करने के लिए मनाया जाता है।
1: ये दिन हर साल मई के पहले इतवार जो होते हैं उस दिन मनाया जाता है। इसका आगाज 11 जनवरी 1998 को मुंबई, भारत में हुआ
0: यानी
1: था।
0: कि हमारे मुल्क में। और इस दिन की बुनियाद डॉक्टर मदन कटारे ने की, जो लाफ्टर योगा मूवमेंट के बानी हैं। और दोस्तों को ये भी बताना चाहेंगे कि इस दिन को मनाने का बुनियादी मकसद हंसी के तिब्बी फवायद के बारे में शुऊर को बेदार करना है और लोगों को खुशगवार जिंदगी की तरफ रागिब करना है।
1: जी सिकना जी, वैसे दोस्तों को ये भी बता दें कि जिस्म में जो है तनाव कभी कभार पैदा होता है, और हंसी मजाक जो है ये इन हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, जिससे इंसानी सेहत और खासकर इंसानी स्किन्स पर बड़ा अच्छा असर पड़ता है।
0: और इस दिन दुनिया भर में, बिलखुसूस हमारे मुल्क भारत और मुंबई में, लोग पार्कों और अवामी मकामात पर जमा होकर लाफ्टर योगा करते हैं, लतीफे सुनाते हैं और मिलकर कहकहे लगाते हैं। और सुनने वालों को बता दें कि अब चूंकि संडे है, मिलजुल कर बैठिए फैमिली में, तो जाहिर सी बातें बातें होंगी, कहकहे होंगे और आपका मूड भी फ्रेश होगा।
1: और हमारे साथ आप बने रहिएगा, प्रोग्राम प्याम सुबह आप सुन रहे हैं। और इस वक्त घड़ी का इशारा जो है, घड़ी का इशारा ये है कि 7:45 होने वाले हैं। कश्मीरी खबरों का बुलेटिन सुनते हैं और ये ट्रांसमीटर जारी रहेगा।
0: और सुनने वालों को ये भी बता दें कि आज की ट्रांसमिशन में बात करने की कोशिश करेंगे इमरान नायकू, जो श्रीनगर के कॉरेस्पॉन्डेंट है, रैली के हवाले से।
2: ये आकाशवाणी صبحچ دون اٹھ بجے خبرن ہند بلٹن ہس بہ روف احمد گڑ خاص خاص خبرن پٹ اخ نظر مغربی بنگال کیرلم تامل ناڈو آسام تو پڈوچیری مز اسمبلی چناؤن دوران تراؤن آمتن ووٹن ہز گرند سپد پگہ سرکارن ملکک ایمرجنسی مواصلتی نظام مستحکم بناؤن تو پبلک سیفٹی بنیادی ڈھانچس وسجار دن باپت سیل براڈ کاسٹ نظام شروع کورمت نش کن مضر اثرات ہند حوالہ بیداری پود کرنے باپت آز کشیر مز سری نگر نش مخالف اخ بڑ بار پد یاترا کڑنے یوان

0: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं मीडियम वेव 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: जी परवेज।
0: सकीना जी, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:55 हुए हैं और ये वक्त है कि हम अपने दोस्तों तक, अपने सामने तक आपके बाद नशर होने वाले प्रोग्रामों की तफसील पहुंचाते हैं।

0: बिल्कुल डिटेल में
1: जी। तो समीन, रात 9:30 पर प्रोग्राम नाशिर होगा डिस्कशन टाइम। मौजू है द सिटी ऑफ लिविंग हेरिटेज, पेशकश सैयद हुमायूं कैसर। शब 10:00 फरमाइशी नगमों का प्रोग्राम, समाप्त करें आपकी फरमाइश। प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं जावेद अंद्राबी। सुबह 8:15 पर प्रोग्राम नशर होगा सैन तारीख। सुबह 8:45 पर 65 प्रोग्राम आप सुनेंगे खामोशी कुदरत की जुबान है। मकामी रोजनामों से ली गई आज की सुर्खियां आप सुनते हैं सुबह 9:00। सुबह 9:45 पर 65 प्रोग्राम समाप्त करें जेके बैंक डायरी। रेडियो साथी, ये 65 प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होगा सुबह 10:00। नन्हे मुन्ने बच्चों का प्रोग्राम हूनहार नशर होगा सुबह 10:30 पर। तलवास, ये कश्मीरी ड्रामा आप सुनेंगे सुबह 11:00। तहरीर अब्दुल अहद फयाज। दिन के 12:10 पर चंद उर्दू गजलें आप समाप्त करेंगे। 12:40 पर चंद कश्मीरी नगमे आप सुनेंगे। मगरबी मौसीकी का प्रोग्राम संडे रिक्वेस्ट शो नशर होगा दिन के 1:10 पर। दिन के 2:30 प्रोग्राम समाप्त करें नई मंजिलें। फौजी भाई अपना प्रोग्राम सुनते हैं सपहर 3:00। 4:00 पहाड़ी प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होगा। 4:30 पर पंजाबी प्रोग्राम आप समाप्त करेंगे। गोजरी प्रोग्राम नशर होता है हर रोज शाम 5:00। शाम 6:05 पर गैमी बाय हिंद खतर प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होगा। हालात हाजरा का प्रोग्राम शहरवीन नशर होता है हर रोज शाम 7:00। और रात 8:00 प्रोग्राम समाप्त करें वादी की आवाज।
0: जी दोस्तों, पयाम इस प्रोग्राम में हमारे संग बने रहिए। एक बार फिर दोस्तों को बता दें कि आज जो रैली हो रही है नशा मुक्त कश्मीर के बारे में, एक अवेयरनेस के हवाले से एलजी साहब उसको झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तो एक बार फिर आपको बता दें कि हमारे नुमाइंदे इमरान नायकू से बात करने की कोशिश करेंगे पयाम सुबह शो में। हमारे संग बने रहिएगा।

हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं। मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर समय। इसके अलावा आप हमारी नशरियात DTH और ऑल इंडिया रेडियो की लाइव मोबाइल ऐप पर भी सुन रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार सुनते हैं थोड़ी ही देर में।

निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के फालता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर इस महीने के 21 तारीख को पुनर्मतदान का आदेश दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर निर्णायक कार्यवाही के माध्यम से आतंकवाद खत्म करने के सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक। भारत आने वाला एक और LPG टैंकर हॉर्मुज जल डमरू मध्य में सुरक्षित पार किया। अमरीका जर्मनी से अपने 5,000 सैनिकों को वापस बुलाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर सहित देश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान

0: व्यक्त किया। देश के मध्य भागों में गरज के साथ आंधी आने और बिजली गिरने की आशंका। और मध्य प्रदेश के पोल वॉल्टर कुलदीप कुमार ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा क्षेत्र का मतदान रद्द कर दिया है। इस क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को पुनर्मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र में पूरी मतदान प्रक्रिया को रद्द करने का एक असाधारण कदम उठाया है। 21 मई को सभी 285 मतदान केंद्रों, जिनमें सहायक बूथ भी शामिल हैं, पर फिर से मतदान होगा। वोटों की गिनती 24 मई को होगी। चुनाव आयोग ने बताया कि यह फैसला 29 अप्रैल को मतदान के दौरान बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की रिपोर्टों के बाद लिया गया है। पर्यवेक्षकों की रिपोर्टों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराना धमकाना और मतदान नियमों का उल्लंघन शामिल है। कई बूथों पर बैलेट यूनिट के बटनों को जानबूझकर काली टेप से ढक दिया गया था, जिससे ठीक से मतदान नहीं हो पा रहा था। अनाधिकृत लोगों को भी मतदान केंद्रों में प्रवेश करते और दूसरों की ओर से वोट डालते हुए पाया गया। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता और अविरूप भट्टाचार्य की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कौशलेंद्र।
0: पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले में विधानसभा की 2 सीटों के 15 मतदान केंद्रों पर कल फिर से वोट डाले गए। मगराहाट पश्चिम के 11 और डायमंड हार्बर के 4 मतदान केंद्रों पर वोट डाले गए। कल शाम 5 बजे तक लगभग 87% मतदान हुआ। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। मतगणना के दिन पुलिस पर्यवेक्षक किसी भी स्थिति में मतगणना कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां कर ली हैं। तमिलनाडु में इसके लिए 62 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया कि मतगणना के लिए 10,545 कर्मी तैनात किए जाएंगे।
2: मतगणना प्रक्रिया को लेकर पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। ड्यूटी पर तैनात हर व्यक्ति को QR कोड वाला एक फोटो ID कार्ड जारी किया गया है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि मतगणना केंद्रों पर किसी भी तरह की गलत पहचान या धोखाधड़ी ना हो। मतगणना कक्षों और EVM स्ट्रांग रूम के प्रवेश द्वार पर सबसे अंदरूनी सुरक्षा की कमान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के हाथों में होगी। स्थानीय और राज्य पुलिस के अलावा सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए मतगणना केंद्रों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 65 कंपनियां तैनात की गई हैं। राज्य में 4,87,98,833 मतदाताओं में से 85.10% मतदान दर्ज किया गया है। महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ते हुए 2,52,59,596 वोट डाले, जबकि पुरुष मतदाताओं की संख्या 2,35,34,720 रही। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET UG आज आयोजित की जाएगी। परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होगी और शाम 5 बजे समाप्त होगी। नीट के सूचना बुलेटिन के अनुसार परीक्षा केंद्र में अंतिम प्रवेश दोपहर 1:30 बजे तक होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी वर्ष 2019 से NEET UG परीक्षा का आयोजन कर रही है। एजेंसी ने उम्मीदवारों के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। उम्मीदवारों को अपने प्रवेश पत्र के साथ मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड या राशन कार्ड जैसा एक मूल फोटो पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंक का खात्मा करने के मोदी सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक बताया है। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कल नई दिल्ली में शौर्य कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान सशस्त्र बलों के अतुलनीय शौर्य ने इसे भारत के सैन्य इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बना दिया है।
3: शौर्य केवल शारीरिक शक्ति या युद्ध कौशल का नाम नहीं है। शौर्य हमारे मन की वह अटल अवस्था है, जहाँ राष्ट्र प्रेम के आगे सारे सुख, सारे मोह, सारे भय यह व्यर्थ हो जाते हैं। शौर्य वो दिव्य भाव है जहाँ हमारा एक सैनिक अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों के स्नेह के बंधन से ऊपर उठकर माँ भारती की रक्षा का व्रत लेता है।
0: भारत ने पिछले वर्ष

0: 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। कार्यक्रम में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और उप रक्षा प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ उपस्थित थे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सेल ब्रॉडकास्ट प्रणाली, सीबीएस और सामान्य चेतावनी प्रोटोकॉल जैसी तकनीकों को अपनाने से आपदा से निपटने की तैयारी में काफी मजबूती मिलेगी। उन्होंने कल सेल ब्रॉडकास्ट चेतावनी प्रणाली के शुभारंभ के अवसर पर कहा कि इससे शासन व्यवस्था में सुधार होगा और प्रत्येक नागरिक तक समय पर और प्रभावी ढंग से सूचना पहुंच सुनिश्चित होगी। दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सेल ब्रॉडकास्ट प्रणाली का शुभारंभ किया था। इसे दूरसंचार विभाग के अंतर्गत सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स सी.डॉट ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और गृह मंत्रालय के सहयोग से स्वदेश में ही विकसित किया है। प्रणाली का कल पूरे देश में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज सुबह जमैका के किंगस्टन पहुंचे। श्री जयशंकर जमैका, सूरीनाम और त्रिनिदाद और टोबैगो की सरकारी यात्रा पर हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि जमैका के विदेश मंत्री कमीना जे स्मिथ ने कहा कि वे अगले 2 दिन में जमैका के नेताओं, व्यापारियों और प्रवासी भारतीयों के साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इस 10 मई तक अपनी यात्रा के दौरान डॉ. जयशंकर 3 देशों के विदेश मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। भारत आ रहे मार्शल आइसलैंड ध्वज के एलपीजी टैंकर एमटी सर्वशक्ति ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित पार कर लिया है। इसमें 46,313 मीट्रिक टन एलपीजी है और 18 भारतीयों सहित चालक दल के 20 सदस्य सवार हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इस टैंकर के 13 मई तक विशाखापट्टनम पहुंचने की उम्मीद है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कल संवाददाता सम्मेलन में कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और भारतीय ध्वज वाले जहाजों से जुड़ी कोई घटना दर्ज नहीं की गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका जर्मनी में सैन्य उपस्थिति में काफी कमी करेगा। इससे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मस्क के साथ अमेरिका का विवाद और बढ़ गया है। श्री ट्रंप यूरोपीय सुरक्षा के प्रति अमेरिका की प्रतिबद्धता को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। पेंटागन ने शुक्रवार को पहले घोषणा की थी कि वो जर्मनी से लगभग 5,000 सैनिकों को वापस बुलाएगा। शनिवार को इस कदम के कारण के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया और कहा कि इससे भी बड़ी कटौती होने वाली है। इससे पहले जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने कहा कि जर्मनी में अमेरिकी सैनिकों की नियोजित कटौती से यूरोप को अपनी रक्षा को मजबूत करने के लिए प्रेरित होना चाहिए। माली में सुरक्षा बलों ने लक्षित हवाई हमलों में 200 से अधिक हमलावरों को मार गिराया है। सरकारी टेलीविजन के अनुसार शुक्रवार को सुबह ये हमले सशस्त्र आतंकियों के एक बड़े समूह को निशाना बनाकर किए गए। ये आतंकी पड़ोसी सीमा क्षेत्र से आए थे और हमलों की तैयारी कर रहे थे। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम के साथ साथ केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर में गरज के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली, बिहार, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, रायलसीमा, उत्तराखंड, विदर्भ और पश्चिम बंगाल में गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। इस बीच दिल्ली में कल रात मौसम में अचानक बदलाव आया और बारिश ने भीषण गर्मी से राहत दिलाई। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: भुवनेश्वर में इंडियन इंडोर पोल वॉल्ट प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के कुलदीप कुमार ने पुरुषों के पोल वॉल्ट में 5.41 मीटर ऊंचाई की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीत लिया। कुलदीप कुमार ने पहले ही प्रयास में ये उपलब्धि हासिल कर देव कुमार मीणा के 5.40 मीटर के राष्ट्रीय रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। उधर डेनमार्क में थॉमस कप बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में आज फ्रांस का सामना चीन से होगा। सेमीफाइनल में कल फ्रांस ने भारत को 3-0 से हराया था। इस बीच उबर कप के फाइनल में आज चीन का मुकाबला दक्षिण कोरिया से होगा। इधर आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हरा दिया। चेन्नई में कल पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 159 रन बनाए। जवाब में चेन्नई ने 18 ओवर और एक गेंद में 2 विकेट के नुकसान पर 160 रन बनाकर मैच जीत लिया। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से और गुजरात टाइटंस का सामना पंजाब किंग्स से होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा सचिव संतोष कुमार सारंगी ने आज अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रन फॉर सन मैराथन को झंडे दिखाकर रवाना किया। श्री सारंगी ने कहा कि इस दिन सौर ऊर्जा का उपयोग करके अधिकतम बिजली प्राप्त करने के तरीकों के बारे में

0: जागरूकता बढ़ाने के लिए ये आयोजन किया जा रहा है।
1: सूर्य किरण हम लोगों के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसका इतने सालों तक हम लोग व्यवहार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज उसका व्यवहार करके देश में 150,000 मेगावाट का इंस्टॉलेशन हो चुका है और भी आगे बढ़ना है हम लोगों।
0: भारतीय सेना का एक दल भारत कंबोडिया द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास CINBX2 के दूसरे संस्करण के लिए कंबोडिया रवाना हो गया है। सेना ने बताया कि अभ्यास कल से 17 तारीख तक नॉम फॉर मारियास प्रांत के शाही कंबोडियाई वायुसेना प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया जाएगा। अभ्यास में कंपनी स्तर के संयुक्त प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। रोहित जैन को भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। श्री जैन इससे पहले बैंक में कार्यकारी निदेशक थे। वे 3 मई 2026 से 3 वर्ष की अवधि के लिए इस पद पर रहेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद लवलीन। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना में केंद्रीय कर्मियों की पर्यवेक्षक के रूप में तैनाती का निर्वाचन आयोग का निर्देश बरकरार रखने को लगभग सभी अखबारों ने प्रमुखता से लिया है। अमर उजाला कहता है, मतगणना कर्मियों के चयन के लिए आयोग स्वतंत्र, आदेश की जरूरत नहीं। देशबंधु ने इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा तृणमूल कांग्रेस को झटका बताया है। अब आपात स्थिति में पलक झपकते ही अलर्ट होगा देश, दैनिक जागरण की पहली खबर है। पत्र ने आगे लिखा है, केंद्र ने लॉन्च किया सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम, बिना इंटरनेट भी पहुंचेगा फ्लैश मैसेज। हिंदुस्तान ने इसे सुर्खी दी है, करोड़ों मोबाइल में गूंजी इमरजेंसी वाली घंटी। पश्चिम एशिया में संघर्ष के असर को जनसत्ता ने बॉक्स में देते हुए लिखा है, लगातार तीसरे महीने कीमतें बढ़ी। पत्र ने इसे संकट और चिंता बताते हुए लिखा है, खाने के दाम बढ़ने से रोजगार पर विपरीत असर की आशंका। दैनिक भास्कर की खबर है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से 7 की जगह 2.5 घंटे में पहुंचेंगे, चार धाम यात्रा 5 से 6 दिन में पूरी हो जाएगी। पत्र ने चार धाम यात्रा के दौरान यमुनोत्री से बद्रीनाथ तक के सफर की जानकारी विस्तार से दी है। नवभारत टाइम्स ने बदलता मौसम शीर्षक से लिखा है, दिल्ली में 2050 तक ज्यादा होने लगेगी बारिश, गर्म दिन हटेंगे लेकिन रात तपेगी। राजस्थान पत्रिका की विशेष खबर है, सोच का बोझ, हर रात 28 मिनट की नींद खो रहे हैं लोग, पढ़ाई, करियर और आर्थिक स्थिरता की चिंता। पत्र के अनुसार दुनिया में 28 करोड़ लोग डिप्रेशन से और 30 करोड़ से ज्यादा एंजाइटी से हैं परेशान, जिसका प्रमुख कारण ओवरथिंकिंग। समुद्र के भीतर फहराया सबसे बड़ा तिरंगा, हिंदुस्तान ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है, अंडमान निकोबार में दुनिया का सबसे लंबा चौड़ा ध्वज फहराकर बनाया गया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, स्वराज द्वीप पर गोताखोरों ने पूरा किया अभियान। पंजाब केसरी के अनुसार, कश्मीर को पीछे छोड़ विदेश में धमाल मचाएगा लद्दाख का पश्मीना। पत्र कहता है कि पहले लद्दाख के चरवाहे कच्चा ऊन कम दामों पर बेच देते थे, अब कुछ बड़े बदलावों के साथ लद्दाख में ही आधुनिक संयंत्र और फिनिशिंग यूनिट लग रही है, जिससे लद्दाख के शॉल ग्लोबल हब बनने की तैयारी में है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के फालता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर इस महीने के 21 तारीख को पुनर्मतदान का आदेश दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर निर्णायक कार्रवाई के माध्यम से आतंकवाद खत्म करने के सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रतीक। भारत आने वाला एक और LPG टैंकर ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य सुरक्षित पार किया। अमेरिका जर्मनी से अपने 5,000 सैनिकों को वापस बुलाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर सहित देश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। देश के मध्य भागों में गरज के साथ आंधी आने और बिजली गिरने की आशंका। और मध्य प्रदेश के पोल वॉटर कुलदीप कुमार ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: یہ چھ آکاشوانی سری نگر میڈیم ویو زیادہ ارہٹ اشاریہ اٹھ اخ میٹر تو ایف ایم اک تر اشاریہ پانچ میگا ہٹسن پہ سمین صبح اٹھ بجے تو 15 منٹ سپد ولی بوزو پروگرام سن تاریخ
4: سن تاریخ پروگرام بیاکھ اک شمار ہے چس بہ ستیش ویمل تہندس خدمت مز حاضر سامعین کشیر مز تاریخ نو نو باب بدہ کڑنے خاطر پتم واحن پروگرام مز اخ سلسلہ اخ شروع کورمت کت کر ہند تم آرکالوجسٹن سن یونیورسل ایکسپوجر دن

0: मन की वह अटल अवस्था है जहां राष्ट्र प्रेम के आगे सारे सुख, सारे मोह, सारे भय यह व्यर्थ हो जाते हैं। शौर्य वो दिव्य भाव है जहां हमारा एक सैनिक अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों के स्नेह के बंधन से ऊपर उठकर मां भारती की रक्षा का व्रत लेता है।
1: मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा है कि सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम CBS और कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल जैसी टेक्नोलॉजीज को अपनाने से कुदरती आफात से मुतालिक तैयारी को मजबूत करने, हुक्मरानी को बेहतर बनाने और हर शहरी तक बरवक्त और मौसर रसाई को यकीनी बनाने में नुमाया तौर पर मदद मिलेगी। जनाब शाह ने यह बात कल सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम के आगाज के मौके पर अपनी नई ख्वाहिशात पेश करते हुए कही। हुकूमत की जानिब से जारी किए गए एक बयान के मुताबिक इस निजाम के जरिए शहरियों को उनके इलाकों में हंगामी सूरत हाल और कुदरती आफात के सिलसिले में आगाह किया जा सकता है। टेलीकॉम के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने CBS का आगाज किया। इस निजाम को वजारत दाखिला और आफात से मुतालिक बंदोबस्त की कौमी अथॉरिटी के तआवुन से टेली कम्युनिकेशन के महकमे के तहत सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स CDOT के जरिए भारत में ही तैयार किया गया है। कल मुल्क की सतह पर इस सिस्टम को कामयाबी के साथ टेस्ट किया गया, जिसके दौरान मुल्क भर में मोबाइल फोन पर इमरजेंसी अलर्ट मैसेजेस भेजे गए। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए कौमी अहलियत और दाखिला टेस्ट नीट का इम्तिहान आज मुनक्किद होगा। इम्तिहान दोपहर 2 बजे शुरू होगा और शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। नीट के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के मुताबिक इम्तिहान के मराकज में आखिरी दाखिला दोपहर 1:30 बजे तक दिया जाएगा। नीट UG 2019 से इम्तिहानात कराने वाली कौमी एजेंसी NTA के जरिए मुनाकिद किया जा रहा है, जो सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत और तालीम की वजारत की मंजूरी से अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए होता है। NTA ने उम्मीदवारों के लिए मखसूस हिदायत जारी की हैं। एडमिट कार्ड के साथ उम्मीदवारों को एक असल तस्वीर वाला शिनाख्ती सबूत जैसे वोटर ID, आधार कार्ड या राशन कार्ड भी साथ लाना जरूरी होगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है।
2: जनादेश 2026।
3: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुद्दुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ।
2: मतगणना की पल पल की खबर, संवाददाताओं से ताजा हाल और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का सटीक विश्लेषण।
3: कल सुबह 8:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
2: जनादेश 2026।
1: मार्शल आइलैंड के परचम बरदार LPG MT सर्वशक्ति ने 46,313 मैट्रिक टन LPG भारतीय कार्गो के साथ 20 अमले के अरकान, जिनमें 18 भारतीय शामिल हैं, बहिफाजत आबनाए हुरमुज उबूर कर लिया है। सरकारी जराये के मुताबिक जहाज की इस माह की 13 तारीख को विशाखापट्टनम पहुंचने की तवक्को है। बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों की वजारत ने गुज़श्ता रोज एक प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि खित्ते में तमाम भारतीय मल्लाह महफूज हैं और भारतीय परचम बरदार जहाजों को पेश आने वाले किसी भी वाक़े की इत्तला नहीं मिली है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर, जो कि जमैका, सूरीनाम और ट्रिनिडेड एंड टोबैगो के सरकारी दौरे पर हैं, आज सुबह जमैका की राजधानी किंगस्टन पहुंच गए। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि जमैका की वजीर खारजा कैमिना जे स्मिथ ने उनका इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा कि वो अगले 2 दिन के दौरान जमैका की क्यादत, कारोबारी बिरादरी और वहां मुकीम भारतीय बिरादरी से मुलाकात के मुंतजर है। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि इस महीने की 10 तारीख तक जारी रहने वाले इस दौरे में डॉक्टर जयशंकर मजकूरा तीनों मुल्कों की क्यादत से मुलाकात करेंगे। अपने हम मनसबों के साथ बातचीत में दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी मामलात समेत बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू होगी। उनके इस दौरे का मकसद जमैका, सूरीनाम और ट्रिनिडेड एंड टोबैगो के साथ भारत के सियासी रवाबित को मजीद मजबूत बनाना और दैरीना दोस्ताना ताल्लुकात को फरोग देना है। यह दौरा आलमी खित्ते जनूब के मुल्कों के दरमियान बाहमी तआवुन और तरक्की के मुश्तरका अज़्म की भी अक्कासी करता है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका जर्मनी में अपनी फौज की मौजूदगी को नुमाया तौर पर कम करेगा, जिससे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ तनाजे मजीद बढ़ गया है, क्योंकि वो यूरोपीय सलामती के लिए अमरीकी अहद बस्तगी को कम करने के ख्वाह हैं। पेंटागन ने जुमे को इब्तदाई तौर पर ऐलान किया था कि वो जर्मनी से तकरीबन 5,000 फौजी वापस बुलाएगा, लेकिन जब हफ्ते के रोज उनसे इस इकदाम की वजह पूछी गई

0: तो जनाब ट्रंप ने कोई वजाहत पेश नहीं की और कहा कि इससे भी बड़ी कमी आने वाली है। उन्होंने फ्लोरिडा में नामानिगारों को बताया कि अमरीका फौज में बहुत ज्यादा कटौती करने जा रहा है और वो 5,000 से कहीं ज्यादा फौजियों को वापस बुला रहे हैं। इससे पहले जर्मनी के वजीर दिफा बोरिस पिस्टोरियस ने आज कहा कि जर्मन में अमरीकी फौज की मंसूबाबंद कमी यूरोप को अपनी दिफाई सलाहियतें मजबूत करने पर मजबूर करेगी। उन्होंने यूरोप में जोर दिया कि वो अपनी सलामती की ज्यादा जिम्मेदारी उठाएं और इस बात का जिक्र किया कि जर्मन अपनी फौज और इंफ्रास्ट्रक्चर को वसत दे रहा है। इत्तलात और नशरियात की वजारत ने मारूफ नगमानिगार मुसन्निफ और मवासलात के माहिर परसून जोशी को भारतीय पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती का चेयरमैन मुकर्रर किया है। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज शिमाल मशरकी रियासतों अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम ने जनूबी रियासतों केरला, तमिलनाडु और पुदुचेरी में शदीद बारिश की पेशगोई की है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर में गरज चमक और झालाबारी का इम्कान है। मध्य प्रदेश में नुमाइंदगी करने वाले कुलदीप कुमार ने नेशनल मेंस पोल वॉल्ट में 5.41 मीटर का नया रिकॉर्ड कायम करते हुए भुवनेश्वर में जारी इंडियन इंडोर ओपन कंबाइंड इवेंट्स और पोल वॉल्ट मुकाबले के पहले दिन सोने का तमगा जीता। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईनी के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया आसिया। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले बेशतर अखबारात ने मगरबी बंगाल में जारी इंतखाबी अमल से मुतल्लिक खबर को अपनी सुर्खी बनाया है। अखबार प्रताप की इस सिलसिले में सुर्खी है, मगरबी बंगाल में वोटों की गिनती के लिए सिक्योरिटी इंतजामात मजीद सख्त। जबकि अखबार इंकलाब ने बंगाल में 15 बूथों पर दोबारा पोलिंग में 90% वोटिंग की खबर को नुमाया किया है। इसी अखबार की एक और खबर है, आफात से मुतालिक मुलगीर मोबाइल इंतबाही निज़ाम का आगाज, शहरियों को फौरी अलर्ट्स की सहूलत। हिंदुस्तान एक्सप्रेस लिखता है, प्रसून जोशी प्रसार भारती के चेयरमैन मुकर्रर। अखबारात ने बहरिया के सरबराह एडमिरल दिनेश त्रिपाठी के म्यांमार दौरे से मुतल्लिक खबर को भी अहमियत के साथ शाया किया है। अखबारात की अहम बैनुल अक्वामी खबरें इस तरह हैं, मकसद हासिल किए बगैर जंग खत्म नहीं करेंगे, ट्रंप का बयान, अमेरिका के साथ नई जंग का इम्कान मौजूद है, ईरानी फौज का बयान।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। इंतखाबी कमीशन ने मगरबी बंगाल के फाल्टा असेंबली हलके में तमाम 285 पोलिंग मराकज पर इस महीने की 21 तारीख को दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हुकूमत के पुख्ता अज्म की अक्कासी करता है। भारत आने वाला एक और LPG टैंकर बहिफाजत आबनाए हुर्मुज से गुजर गया है। अमरीका ने जर्मनी से 5,000 से ज्यादा फौजियों को वापस बुलाने का फैसला किया है। भारतीय महकमे मौसमियात ने मुल्क के शिमाल मशरकी और जजीरा इलाकों के कुछ हिस्सों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं, मीडियम वेव 268.1 मीटर और FM 103.5 MHz पर। समय सुबह के 8:45 हुए हैं।
3: खामोशी कुदरत की जुबान है। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउफन कर रहे हैं डॉक्टर नसीर यूनानी व पंचकर्मा सेंटर्स, लाल चौक अनंतनाग, कोट रोड शुपया, खानका फैजबन अतराल, सिकिडाफर चौक ईदगाह श्रीनगर, उर्दू बाजार बारामूला, मागाम अपोजिट बॉयज हायर सेकेंडरी, डॉक्टर नसीर यूनानी व पंचकर्मा सेंटर, इकबाल कॉलोनी, बर्शा नगर, नट्टीपोरा, श्रीनगर। सेल नंबर 9419408023।
4: سامعین محترم السلام علیکم، پروگرام خاموشی قدرت کی زبان ہے کا تازہ شمارہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر، میں ہوں آپ کی میزبان رفعت۔ سامعین، ایک انسان اگر زندہ ہے تو وہ اس لیے زندہ ہے کہ اس کی خلیات اسے مرنے نہیں دیتی، اور طب کے میدان میں ہم نے یہی سیکھا ہے کہ یہ فطرت کا ایک سلسلہ ہے جو وقت میں قید ہے، اور ایک طبیب کا صرف اتنا کام ہے کہ وہ فطرت کی معاونت کرے۔ مگر مذاہب ہمیں سکھاتے ہیں کہ روح، آتما، یا سول ہی وہ طاقت ہے جو آج تک ہمارے مجسمے میں اس طرح سے محفوظ ہے جسے ہم نے آج تک دیکھا نہیں کسی سائنسی لیبورٹری میں، جسے ہم تول نہیں سکتے، ماپ نہیں سکتے، مگر مذہبی کتابوں میں اس کا ذکر ایک جیسا ہی ملتا ہے، اور مفکر حضرات اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ زندہ اور

0: जो है वो पीछे पीछे चलती हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो हम कहते हैं भाई ये भी नाकारा है।
1: सही।
0: तो जिस्म भी इसी तरह से एक मकरर, एक जो हार्मोनी कहिएगा या एक एतदाल कहिएगा, तो
1: एक
0: इस
1: मुकर्रर निजाम के
0: हाँ
1: तहत।
0: हाँ तो ये एक एतदाल का नाम ही सेहत है।
1: जी।
0: तो जब सेल्स में वो सोचने का एतदाल जो है वो किसी तरह से डिस्टर्ब हो जाए, तो हम कहते हैं कि भैया किसी न किसी तरह से, किसी जो हमारे इखलात की थ्योरी है वहां पर कोई ना कोई डिस्टर्बेंस
1: या
0: पैदा हुई है,
1: बैलेंस हुआ है
0: तो
1: बिल्कुल।
0: उससे जिस्म ने अपना मिजाज बदल दिया। ये हर एक आर्गन का अपना मिजाज होता है,
1: जी
0: हर एक जिस्म का अपना मिजाज होता है, हर एक मौसम का अपना मिजाज होता है, हर एक गजा का अपना मिजाज होता है, हर एक दवाई का अपना मिजाज
1: मिजाज
0: होता है।
1: होता है बिल्कुल।
0: तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि फिर वही कि गाड़ी को जिस रफ्तार से चलना चाहिए उसी रफ्तार पे। तो रिफत जी ने जो दवाइयां दी थी वो मिजाज के मुताबिक दी थी।
1: मुताबिक दी थी
0: तो
1: बिल्कुल।
0: मिजाज की मुताबिकत कैसे करते हैं, नब्ज देखकर, उससे बातचीत करते, उसको ये कुछ सवालात करके कि भाई ये किस मिजाज में बैठती है और किस खलत का गलबा हो सकता है और हमें किस तरह से। तो ये हर एक इंडिविजुअल में एक जैसी दवाई नहीं चलती है,
1: सही बात
0: तो
1: है।
0: हर एक इंडिविजुअल में किस चीज की कमी हुई, किस चीज की ज्यादती हुई, उस एतबार से हर नुस्खे में चेंजेस होती
1: चेंज
0: है।
1: हो
0: तो ये
1: जाती है।
0: जरूरी नहीं कि एक ही नुस्खा हम हर किसी अस्थमा पेशेंट, तो
1: सही बात
0: 15 दिन वो इनकी मुंजिज, 12 दिन का मुसिल, 3 दिन का, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 4 साल के बाद भी ये बिल्कुल ठीक है और रिपीट नहीं हुआ है।
1: जी
0: तो इसी तरह से दूसरी पेशेंट थी, बुजुर्ग थे, गांधरबल से ताल्लुक रखते थे। हमने एक नई चीज, बल्कि इसको नई चीज न कहे तो बेहतर है, पुरानी ही चीज है, तो बल्कि एक नई ऑब्जर्वेशन हमने ले ली। चूंकि हम लीचेस साल भर डालते रहते हैं जोंक, तो हमने देखा कि जोंक डालने के बाद क्वालिटी ऑफ विजन में बढ़ोतरी होती है।
1: होती है बिल्कुल,
0: मतलब इंसान का जो ये बीनाई का निजाम है ये बढ़
1: बढ़
0: जाता
1: जाता
0: है।
1: है। सही बात
0: तो
1: है।
0: इसी तरह से ये एक शख्स थे कि जिनका बीनाई कुछ कम हो गई थी, बहरहाल ये इसीलिए आए थे, तो हमने इनको लेज डाल दी।
1: जी।
0: तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये बहुत दिनों बाद आए थे, तो इनका खुद का कहना है कि मुझे जो है इसने बहुत इलाज किया होगा, हालांकि कोई भी वजह हो तो बीनाई में इस लीज के डालने से कुछ तो क्वालिटी ऑफ विजन बढ़ जाता
1: बढ़
0: है।
1: जाता है। सही बात
0: तो इसी तरह से ये खुद कह रहा है कि मेरी जो आंखों की रोशनी थी या बीनाई थी वो इस जोंक डालने से बढ़ गई और आज ये फिर से डालना चाहता है। और ये खुद कह रहा है कि 1 रुपए में मुझे 4 आने की बढ़ोतरी
1: हो गई।
0: हो गई
1: जी जी
0: एक
1: जी
0: बार लीज डालने से।
1: बिल्कुल।
0: और तीसरी जो ये मरीजा थी वो भी डॉक्टर रिफत ने ही देखी थी। वो डॉक्टर रिफत जी हमारी सेगडावर सेंटर में बैठती हैं,
1: जी
0: संडे और फ्राइडे के अलावा 5ों दिन होती है वहां पर। तो इनको डिप्रेशन का आरजा था, रफीका जी को।
1: जी
0: और डिप्रेशन बुनियादी तौर क्या है कि अगर एक इंसान है वो अपनी हैसियत मान लो 1 रुपए की रखता है, समझता है,
1: बिल्कुल।
0: अब इसने समझा कि नहीं जी मेरी वैल्यू इतनी नहीं है, मेरी वैल्यू 10 पैसे की
1: जी
0: है
1: है बिल्कुल।
0: या 10 से भी कम, खोटे आने की।
1: क्या बात है।
0: तो अगर ये एहसास इसने जगह ले ली किसी के जहन में,
1: जी।
0: तो इसी का नाम डिप्रेशन है।
1: डिप्रेशन है बिल्कुल।
0: अब इसको कहेंगे कि भैया तुम खोटा आना नहीं हो, तुम 1 रुपए बराबर हो।
1: बराबर हो। सही
0: तो
1: बात है।
0: ये काउंसलिंग से, और हम जो लीज डालते हैं, बिलीव मी, लीज के एंजाइम्स क्या करते हैं कि ब्रेन ब्लड बैरियर्स क्रॉस करते हैं। वंस ब्रेन ब्लड बैरियर क्रॉस हो गए तो इमीजिएटली दिमाग को खून की सप्लाई ज्यादा हो जाती है,
1: जी जी
0: और जो ही खून की सप्लाई दिमाग को ज्यादा हो गई तो ब्रेन की सेल्स जो हैं वो फंक्शन बेटर करती हैं। और इस तरह के जो डिप्रेशन के ख्यालात हो या साइकेट्रिक डिसऑर्डर, बिलीव मी 15 मिनट में लीज डालने के बाद उनके नतीजे सामने आ
1: आ
0: जाते हैं।
1: जाते हैं। सही
0: बहुत
1: बात है।
0: सारे लोग जो तनाव के शिकार होते हैं, हम उनको लीज डालते हैं, उन्हें आसमान जमीन का अंतर खुद ही महसूस होता है।
1: बिल्कुल।
0: इसी तरह से हम लोग कुछ हेड मसाजेस करते हैं स्पेशल ऑयल्स से
1: जी,
0: तो उससे भी एंडोर्फिन्स एनकेफलिन्स निकलते हैं, सिट्रस हार्मोन जो है वो दूर हो जाता है। तो इस तरह से कहने का मकसद ये है कि किसी भी तरह से हम लोग कहते हैं ऐसे मरीजों के लिए TLC टेंडर लव एंड केयर, कोई भी ऐसा मरीज आया जिसको आपको

0: के दिमागी किसी न किसी तरह से मुबतला है, तो इसको यार हाथ लगाओ, कंधे पे हाथ रखो,
1: क्या
0: जरा
1: बात
0: हाथ
1: है।
0: दबाओ भी इसके बाजू पे या पीठ पे, इसको लगे कोई अपना है यार,
1: बढ़िया
0: कोई थमथमाता है मुझे।
1: बिल्कुल,
0: तो ये एक ट्रीटमेंट है जिसको हम टेंडर बोलेंगे।
1: क्या बात
0: फिर
1: है।
0: लव है, अगर इसको सिर्फ आप एहसास ही इतना देंगे, मैं तुम्हारे साथ दूंगा, मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ, तो ये बहुत है उसके लिए। देखिए जिंदगी में सबसे अहम चीज क्या है कि जिंदा रहने के लिए कोई बहाना तो चाहिए।
1: बिल्कुल
0: अब अगर मैंने कई बार, चूंकि मैं नब्ज पे समझने की कोशिश करता हूँ, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने पूरी जिंदगी गुजारी होती है, और वो एक उम्र आती है जब दिलचस्पी खत्म होने लगती है उन तमाम चीजों से जिनकी वाबस्तगी होती है,
1: बिल्कुल
0: जिन पे इंसान जो है, मैं ये लफ्ज पता नहीं सही इस्तेमाल करूं यहाँ पर नहीं करूं, पर तब भी कर रहा हूँ, कि जिन पे इंसान पागल हुआ होता
1: क्या
0: है।
1: बात है,
0: और जब ये सारे पागलपन एक इंसान के खत्म हो
1: खत्म
0: जाते
1: हो
0: हैं, तो
1: जाते
0: एक
1: हैं।
0: स्टेज आता है ठहराव का। अगर उस टाइम जिनके लिए ये मेहनत करता है वो इसको इग्नोर करते रहें,
1: जी,
0: तो इसको सारी दिलचस्पी खत्म हो
1: खत्म हो
0: जाती है।
1: जाती है बिल्कुल।
0: मैं उनकी नब्ज जब देखता हूँ, तो नब्ज से मुझे पता ये चलता है कि मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या किसी चीज से, किसी खुशी से, किसी गम से तुम्हें कुछ फर्क
1: फर्क
0: पड़ता
1: पड़ता
0: है?
1: है?
0: उनका जवाब हमेशा ये होता है कि नहीं,
1: नहीं, क्या बात, एक
0: कोई
1: जैसे है, कोई माने नहीं
0: मैटर ही,
1: रखते,
0: माने ही नहीं
1: कोई
0: रखता
1: माने
0: है।
1: नहीं
0: तो
1: रखते,
0: इसलिए कोई ना कोई दिलचस्पी इस उम्र में भी
1: होनी
0: होनी
1: चाहिए।
0: चाहिए, कोई ना कोई बहाना इस उम्र में भी होना चाहिए, जिस बहाने की बुनियाद पर तुम जिंदा रह सको,
1: क्या बात
0: और ये
1: है,
0: बहाना आपको खुद ढूंढना पड़े। अच्छा, अब जो मैं बता रहा हूँ वो ये है कि रफीका भी डिप्रेशन में बिल्कुल ठीक हो गई। तो कहने का मकसद क्या है, टेंडर लव एंड केयर, तो ये
1: बिल्कुल।
0: तीनों चीजें अगर किसी ने समझ ली, तो उसने पूरी जिंदगी का निचोड़ समझ लिया है। तो उसके शायद वो नफसियाती जो ये अवारिजात हैं,
1: जी,
0: इनमें शायद मुबतला ना हो। तो अब कहने का मकसद, इस तरह के अवारिज हो किसी को भी, अगर इस तरह की कोई भी परेशानी हो, तो आना किधर है, हमारे सेंटर्स है अनंतनाग में। आज के दिन मैं वहां होता हूँ, डॉक्टर माजिद साहब मेरे साथ होते हैं। कल मंडे हमारे नेटीपुरा सेंटर में, एक और सेंटर हमारा सेगड़ा पर में है, एक सेंटर हमारा मागाम बाजार सिंह के सामने, एक सेंटर हमारा बारामूला में है, एक शुपिया के कोट रोड में है, और एक सेंटर हमारा यहाँ त्राल के खान का फैज मनाए आते में है।
1: जी,
0: तो कोई भी इंसान हमसे राबता कायम करना चाहे, तो हमारा एक फोन नंबर है 9419408011, तो इस पे भी आप राबता करेंगे।
1: डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। बात और होती लेकिन क्या करें, वक्त मुकम्मल हुआ चाहता है प्रोग्राम का। अगले हफ्ते मिलेंगे तो आपसे और बात होगी, तब तक के लिए आपका हमारा हम सब का अल्लाह हामी नासर।
0: अस्सलाम।
2: खामोशी कुदरत की जुबान, ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउफुन कर रहे थे डॉक्टर नसीर यूनानी व पंचकर्मा सेंटर्स, लाल चौक अनंतनाग, कोट रोड शुपया, खानका फैजबाना त्राल, सिकदाफर चौक ईदगाह श्रीनगर, उर्दू बाजार बारामूला, मागाम अपोजिट बॉयज हायर सेकेंडरी, डॉक्टर नसीर यूनानी व पंचकर्मा सेंटर, इकबाल कॉलोनी बर्शा नगर नट्टीपोरा श्रीनगर, सेल नंबर 9419408033।
3: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब है मीडियम 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर। समय सुबह के 9 बज चुके हैं। पेश है मकामी अखबारात से ली गई आज की सुर्खियां।
4: आज की सुर्खियां, सुर्खियां, सुर्खियां।
5: आज की सुर्खियां आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं होंडा, पियाजो, एक्साइड, ईशर, निसान और टीवीएस कंपनियों के बा इख्तियार डीलर, कश्मीर मोटर्स, मौलाना आजाद रोड, श्रीनगर।
3: आदाब। आज इतवार है, जिकदा 1447 हिजरी के 15 तारीख, मुताबिक 3 मई 2026 ईस्वी। मकामी अखबारात से ली गई आज की सुर्खियां लेकर हम हाजिर, मैं परवेज मीर
6: और मैं हूं सकीना। तो पहली खबर की जानिब रुख करते हैं। अखबार लिखता है कि श्रीनगर में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत मेगा पद यात्रा आज। मनुष्यात की आदि अफराद की बहाली के लिए 3 साल निगरानी प्रोग्राम पर काम जारी, लेफ्टिनेंट गवर्नर।
3: जारी मनुष्यात मुखालिफ मुहिम को माशरे के सभी तबकों से हौसला अफजा हिमायत। आज के पैदल मार्च में शामिल होंगे लेफ्टिनेंट।

0: लेफ्टिनेंट गवर्नर।
1: जदीद तरीन ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस जम्मू और श्रीनगर के दरमियान कमर्शियल सर्विस का आगाज, हफ्ते में 6 दिन चलेगी, सफर का वक्त 5 घंटे से भी कम कर देगी।
0: अखबारात लिखते हैं, नशा मुक्त अभियान, मनुष्यात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज, पहले 15 दिनों में 400 FIR दर्ज, भारी मकदार में ममनुआ अशिया जब्त, करोड़ों रुपए मालियत की जायदाद क्रुक।
1: एक और उर्दू रोजनामे की शह सुर्खी है कि वादी में बाद दोपहर मौसम में बदलाव, हल्की बारिशें, तेज हवाएं भी चली, आज कल और परसों के लिए मौसमी अलर्ट जारी।
0: मनुष्यात आमदनी से हासिल कमर्श हासिल शुदा जायदाद की मिसमारी व जब्ती मुहिम, वागहामा में गैर कानूनी कमर्शल कम्प्लेक्स मुनहदिम, बैली चराना जम्मू में 92.73 लाख रुपए मालियत की जायदाद जब्त।
1: एक और अखबार की शह सुर्खी है कि मुलगीर इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम की जांच, हंगामी अलर्ट पर सारफीन के मोबाइल फोन्स बज उठे, मरकजी हुकूमत ने मुल्क भर में सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम का आगाज किया।
0: अखबारात लिखते हैं, बनतालाब जम्मू में जेर तामीर पुल गिरने का वाकया, 3 मजदूरों की लाशें बरामद, 1 को बचा लिया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म, तहकीकात का हुक्म, 2 इंजीनियर मुअत्तल, मुतलका ठेकेदार ब्लैक लिस्ट।
1: और इसी खबर के तनाजुर में वजीर आला का बयान है कि हादसे की वजूहात का पता लगाया जाएगा और वजीर आला का मुकम्मल इंक्वायरी का हुक्म, किसी भी कोताही की जिम्मेदारों का तायुन किया जाएगा।
0: मगरबी एशिया का बहरान, हुकूमत की सूरत हाल पर मुतवातिर नजर, घरेलू LPG की 100% फराहमी जारी, PNG कनेक्शन बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज, रजिस्ट्रेशन में बतदरीज इजाफा मरकज।
1: दोस्तों, सुर्खियां अभी और भी है, हमारे संग रहिएगा।

0: स्टेकहोल्डर शामिल हैं जो एक मंशियात से पाक जम्मू कश्मीर के अजम के साथ शरीक हो रहे हैं। ये रैली दरअसल एक वसी अवामी मुहिम का हिस्सा है जिसके जरिए नौजवानों को मंशियात जैसे समाजी नासूर से दूर रखने और मस्बत सरगर्मियों की जानिब रागिब करने का पैगाम दिया जा रहा है शर्का की बड़ी तादाद इस बात की अकासी करती है कि मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात मंशियात के खिलाफ एक मुतहिद मौकफ रखते हैं। इंतजामिया की जानिब से इस बड़े प्रोग्राम के लिए तमाम तर इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं। पुलिस और सिविल इंतजामिया ऑन टू है। मुश्तरका तौर पर देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट की सहूलियात, पीने के साफ पानी, पार्टिसिपेंट्स के लिए कैप्स और टी शर्ट्स की तकसीम, पंडालों की तनसीब, बीची में एम्बुलेंस सर्विसेज और फायर सेफ्टी के इकदाम को यकीनी बनाया गया है ताकि प्रोग्राम पुरअमन और मुनज़्ज़म तरीके से मुनक्किद हो सके। साथ साथ ये भी बताते चले कि ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर ने भी इस मौके पर एक तफसीली ट्रैफिक एडवाइजरी पहले ही जारी की है और एडवाइजरी के मुताबिक जनूबी कश्मीर से आने वाली गाड़ियों को राजबाग में पार्क किया गया है जबकि शुमाली कश्मीर और डाउन टाउन इलाकों से आने वाली गाड़ियों के लिए जहांगीर चौक को किया गया है। पार्क कलश इंडोर स्टेडियम और एसपी कॉलेज पिछली जानिब से इजाफी पार्किंग की सहूलियत वहां पे फराहम की गई है। साथ साथ बंड रोड के किनारे पार्किंग पर आज मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है ताकि ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखी जा सके। साथ साथ जनूबी कश्मीर से आने वाले जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो शरका है, राजबाग के रास्ते गिनुन पार्क पर उतरेंगे जबकि शुमाली कश्मीर और डाउनटाउन के जो पार्टिसिपेंट्स जो वहां से लोग आएंगे जहांगीर चौक, एलडी अस्पताल और जवाहर नगर के रास्ते से आएंगे। इसके अलावा शुरका मखसूस फुट ब्रिज के जरिए मकाम तक पहुंचेंगे। प्रोग्राम के दौरान एलडी अस्पताल से अब्दुल्ला ब्रिज तक बड़ी गाड़ियों की आमद महदूद रहेगी।
1: इमरान आपसे जी आपसे ये जानना चाहेंगे, अब चूंकि नौजवानों की प्रॉस्पेरिटी के लिए ये कदम उठाया गया है, सौर ऊर्जा मुहिम का ये एक हिस्सा है, तो तलबा की कैसी इस वक्त कहे उत्साह है या उनका कैसा जो रश है वो आपको देखने को मिल रहा है?
0: देखिए, जैसे आपने खुद कहा कि ये प्रोग्राम दरअसल नौजवानों के लिए ही और समाज के लिए बिलखसूस अगर देखा जाए एक पैगाम है, और सिलसिले में हम देख रहे हैं कि सुबह से ही तकरीबन 7 बजे से हमने देखा एक बड़ी तादाद में जो स्टूडेंट्स हैं जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वैली यहाँ पे पहुंचे पार्टिसिपेशन के लिए, और हर एक का यही कहना है, जिन स्टूडेंट्स से हम बात कर रहे हैं, स्टेक होल्डर से, आम लोगों से बात करें, हर एक का यही कहना है कि हमें इस मुआशरे को एक पाक मुआशरा बनाना है। और शायद जब हम बचपन से सुनते आए हैं कि ये पिरवर है, सूफियों, फकीरों, वलियों की सरजमीन है और यहाँ मनशियात का बढ़ता रुझान ये बदकिस्मती है, और इसलिए जो मुहिम जम्मू कश्मीर में 100 दिन की शुरू की गई है और खासकर आज जो नशा मुक्त अभियान की जो रैली का इनेकाद किया जा रहा है, और इसमें जो बच्चों की हम पार्टिसिपेशन देख रहे हैं, स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन देख रहे हैं, तो ये इस बात की अकासी करता है, ये एक मैसेज कन्वे करता है कि जम्मू कश्मीर में छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा फर्द इस के लिए अजम करता है कि वो इस सरजमीन को नशे से पाक चाहता है, और इसीलिए हम देख रहे हैं जोश, जज्बा, वलवला और हर एक अपने तरीके से इस प्रोग्राम में अपनी जो है परसेप्शन जो है सामने रख रहा है, बैनर हाथ में लिए हुए, प्ले कार्ड हाथ में रखे हुए हैं कि जम्मू कश्मीर को, बिलखसूस इस कश्मीर वादी को जिसे जन्नत बेनजीर कहा जाता है, तो इसे इस नशा से पाक रखा जाए और एक साफ और एक बेहतर मुआशरे की तकमील दोबारा से हो।
1: इमरान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे कहना चाहेंगे कि जब ये पदयात्रा फ्लैग ऑफ होगी एलजी सर की तरफ से 9:30 बजे के करीब, हम आपको फिर से कॉल करेंगे, फिर आप जो लाइव वहां पे मनाजिर देखेंगे तो फिर आपसे बात करने की कोशिश करेंगे।
0: जरूर इंशाल्लाह।

0: जी दोस्तों, आपने गीत सुना जो उत्साह से भरपूर था, और उम्मीद करते हैं ये जो 100 दिन की मुहिम है नशा मुक्त कश्मीर को करना है, पूरे भारत को करना है, उसमें हमें कामयाबी मिले।
1: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं मीडियम वेव 268.1 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। समीन, सुबह के 9:20 होने वाले हैं, थोड़ी ही देर में कश्मीरी उर्दू में खबरें आप सुनेंगे।

0: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं बसारत गुल। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि दहशत पसंदी और मुनशियात एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और इसकी सप्लाई चेन तोड़ने, लोगों में बेदारी पैदा करने और ड्रग एडिक्ट्स की बाजाबादकारी और इलाज मुआलजे के लिए खातिर ख्वाह इकदाम किए जा रहे हैं। एक खबर एजेंसी से बात करते हुए उन्होंने लोगों से अपील की कि वह आज फुटबॉल स्टेडियम TRC श्रीनगर से मुनक़िद होने वाली पदयात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें।
1: इसकी व्यापक रणनीति बना करके 100 दिन का अभियान जम्मू कश्मीर में 11 अप्रैल को जम्मू के MS स्टेडियम से हमने प्रारंभ किया था। सभी लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि 21 दिन में इसका व्यापक असर दिखाई पड़ रहा है। रिहेबिलिटेशन का भी एक विस्तृत प्लान हम बना रहे हैं ताकि अगर कोई नशे की गिरफ्त में आ गया है तो एक बार उससे बाहर निकले तो उसको 3 साल तक हम ट्रैक कर सके, उसके रिहेबिलिटेशन का मुकम्मल इंतजाम कर सके।
0: वाज़ेह है कि इस पदयात्रा में शरीक होने के लिए लोग सुबह सवेरे से ही पहुंच रहे हैं, जहां LG मनोज सिन्हा अब से थोड़ी देर में यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं। इस पदयात्रा के लिए तमाम जरूरी इंतजाम किए गए हैं और आवाम की सहूलत के लिए एक ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है। सीनियर BJP लीडर और वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने राजपुरा पुलवामा में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक जलसे से खिताब करते हुए कहा कि पूरे समाज के नौजवानों को मुनशियात से दूर रखने में हमें अपना कलीदी रोल अदा करना चाहिए। डॉक्टर अंद्राबी ने कहा कि जमीनी सतह पर बेदारी पैदा करने से इस बिद्दत का कलाकमा किया जा सकता है।
2: जिस तरह से नशा मुक्त J&K ये प्रोग्राम है, इस

0: इसके लिए यूथ को अवेयर करना है, क्योंकि हमारे यूथ आज नशे में बहुत हमारी जाने जाया हो रही है। हमारी जो नौजवान नस्ल है वो गलत राह पे जा रही है, उसको अवेयर करना ये हमारा मनसब है और हमारा मंशूर भी यही होना चाहिए हर एक का।
1: इम्तिहानात से मुतलिक कौमी एजेंसी NTA की तरफ से आज साल 2026 का नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट मुनाकिद किया जा रहा है। इस इम्तिहान में मुल्की सतह पर 22 लाख से ज्यादा तालब इलम शिरकत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से भी 1676 सीटों के लिए करीब 50,000 उम्मीदवार इस इम्तिहान में शरीक हो रहे हैं। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उर्दू जबान को नौकरी की अहलियत से ड्रॉप करने का कोई मंसूबा नहीं है। उन्होंने कहा है कि इस मसले के ताल्लुक से अवामी आरा तलब की गई है और इस तरह का कोई हुक्मनामा अभी तक लागू नहीं किया गया है। इस बारे में एक तकरीब के हाशिए पर मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा,
2: देयर इज नो ड्रॉपेज ऑफ उर्दू। हमने उनसे कहा ना, खुदारा हमें वो ऑर्डर दिखाइए जिसके तहत हमने उर्दू को ड्रॉप किया हो। आपने सिर्फ वो ऑर्डर दिखाया जिसमें हमने पब्लिक कमेंट्स मांगे। पब्लिक कमेंट्स और ड्रॉपेज में आपको फर्क नजर नहीं आता? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आस्किंग फॉर पब्लिक कमेंट्स एंड ड्रॉपिंग अ सब्जेक्ट। डिपार्टमेंट की तरफ से प्रपोजल आया है, उस प्रपोजल को मैंने मंजूरी नहीं दी है, ना देने का कोई इरादा है।
1: जंगलात व माहौलियात और कबाली उमूर के वजीर जावेद अहमद राना ने तरक्याती मंसूबों को लोगों की हकीकी जरूरियात के मुताबिक तरतीब देने की जरूरत उजागर करते हुए पीने के पानी की फराहमी, सड़क राबते, तबी सहूलियात और तालीम की खिदमात के बुनियादी ढांचा को बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज करने पर जोर दिया है। पुंछ जिले के लिए माली साल 2026-27 के सालाना एक्शन प्लान का जायजा लेते हुए उन्होंने मुतल्लिका महकमों से कहा कि वो टाइम लाइन्स पर सख्ती से अमल करने के लिए आपसी तालमेल बनाए रखें। आज सहाफत की आज़ादी का आलमी दिन है। आज के दिन दुनिया भर में आज़ाद सहाफत को यकीनी बनाने के लिए किए जा रहे इकदाम को उजागर किया गया। साथ ही मीडिया के उन अपराध को भी याद किया जाता है जिन्होंने पूरी दुनिया में अपने पेशवाराना फराइज के अंजामदही के दौरान अपनी जानों का नजराना पेश किया है। वाजह रहे कि एक पुरमन समाज वजूद में लाने में आज़ाद सहाफत और सहाफी की काफ़ी सारी जिम्मेदारियां होती है। मुतदी समाजी और सियासी शख्सियात नीज इंतजामिया के आला अहदेदारों ने प्रेस डे के मौके पर समाज की बेहतरी के लिए काम करने वाले सहाफियों को मुबारकबाद पेश की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस दिन के मौके पर अपने एक पैगाम में कहा है कि सहाफी बरादरी पिछड़े तबकों की आवाज़ बनकर उनके मयारी हयात में बेहतरी लाने में अहम रोल अदा करती है। नायब वज़ीर आला सुरिंदर चौधरी ने जम्मू में नए असम्बली कम्प्लेक्स और कई दीगर तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मुतलिक अफसरों को हिदायत दी कि वो नए असम्बली कम्प्लेक्स समेत बुनियादी ढांचे के दीगर तरक्याती प्रोजेक्टों के मयार को बरकरार रखते हुए उनकी बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। जल शक्ति के वजीर जावेद अहमद राना ने जम्मू में कई वफूद मुलाकी हुए और उन्हें अपनी अपनी मसाइल से रोशनास कराया। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि उजागर किए गए तमाम मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल किया जाएगा। और अब दर्जे हरारत, श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जे हरारत 11.6 डिग्री जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जे हरारत 20.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन दिन में 12:30 पर उर्दू में नश्र होगा। खुदा हाफिज।
3: آکاشوانی سری نگر پہ ونکس پروگرام بوزان پیام صبح بس تہ میزبان سکینہ تو مے
4: سرویز میر تو سکینہ جی بوزن والن ون کہ اتنی ٹرانسمیشن من کنٹرول رومس من ستھی نصیر احمد تو آئی پی سنگھ
3: تو کشر بد بوزو یت کی بی کرو کوشش فونس پہ کت ترچ محکمہ موسمیات کس ڈائریکٹرس ست تو بیس پد یاترا ونکس سپدن واجن فلیگ آف گھر کل پتہ تمچ کت ترو
4: بالکل
3: پنس نمائندہ عمران نائک وس ست مگر غزل برو ون بہ یہ کہ یم سات کشر شعری مز غزلچ کت کران اخ ڈیک بورڈ ناؤ اس سر فہرست رسول میر صوبن
4: سکینہ جی بوزن والن ونو یہ رسول میر زائے لگ بھگ 1430 عیسوی من شہابا ڈور گامس من تو اتی پریتھے تہ
3: بالکل صحیح تو یہ ونو پن بوزن والن کہ کم کس ماحول میولک تعلیم ہند مگر اس تار لوکھ سہ پور داستان نظر گھان
4: نمون رنگ کرو کلام رسول میر پیش فنکار چی وادی کشمیر مشہور تو بہل پائے گلوکار غلام حسن صوب صاحب

0: बहुत बहुत शुक्रिया
1: जी। बताइए, ये जो आज और कल के लिए मौसमी अलर्ट जारी किया गया है मौसम के बारे में, तो क्या तफसीलात हैं?
0: हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी देखो, मौसम थोड़ा सा अबरालूद रहा। कल दोपहर के बाद बारिशें हुई और तेज हवाएं भी चली, तो इसी तरह आज भी, खासकर अभी दोपहर होते होते, कुछ जगहों पे दोपहर से पहले भी बारिशें शुरू होंगी। तो एक स्पेल बारिशों का हो सकता है टिल टुडे इवनिंग, लेट इवनिंग आवर्स तक। और इस बीच थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग, गस्टी विंड के भी चांसेस हैं। और इसी तरह कल भी जो है मौसम जो है खराब रहेगा, और दोपहर के आसपास जो है फिर से बारिशों के चांसेस हैं, और ज्यादातर एक्टिविटी जम्मू डिवीजन और चिनाब वैली के अंदर रहने के चांसेस हैं। तेज बारिशें भी हो सकती है बिल्कुल शॉर्ट पीरियड के लिए जम्मू डिवीजन के अंदर, और यहाँ वैली के अंदर भी जो है इंटरमीटेंट एक दो स्पेल कल भी रहेंगे।
1: जी।
0: कल भी मौसम जो है थोड़ा खराब रहने के चांसेस हैं, गस्टी विंड फिर से चलने के इम्कान हैं, और इसी तरह थंडर स्टॉर्म, लाइटिंग और कुछ एक जगहों पर हेल स्टॉर्म की भी पॉसिबिलिटी है, खासकर आज और कल भी। तो मौसम थोड़ा इंक्लीमेंट रहेगा, फिर फिफ्थ दोपहर के आसपास एक लाइट स्पेल होगा दोपहर के बाद, जो दो तीन घंटों के लिए हो सकता है, कुछ एक डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा रहेगा, तीन घंटे से ज्यादा भी। फ्रॉम सिक्स ऑनवर्ड मौसम जो है पूरी तरह ड्राई है टिल टेंथ, फिर भी कुछ एक डिस्ट्रिक्ट में बाद दोपहर उसको रूल आउट नहीं किया जाता, लेकिन जनरली वार्म एंड सनी डेज रहेंगे आगे, खासकर छह से लेकर 10 मई के आसपास।
1: चलिए मुख्तार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट देने के लिए मौसम के बारे में। और ये भी दोस्तों से कहना चाहेंगे, जब आप थंडर स्टॉर्म की बात करते हैं, बुरी बुरी खबरें आती है, कितनी जानें तल्फ हो जाती हैं, तो डल का जो रुख कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए, हमारे दोस्तों से कहना चाहेंगे कि जब हवा चले, तेज हवा चले, तो कश्तियों में बैठने से परहेज किया जाए, क्योंकि आपकी जान बहुत कीमती है। सैर सपाटा, घूमना फिरना होता रहेगा।

0: समीन त्यसो यो बथन बोझौँ उम्मेद करो या आस्ते जरूर पसन्द आमुत विजय कुमार मला सबने मुद्रित मेट हाइट तो बोझ तही बत
1: मुनीर सराय बलसुन लुकमोती बहुत होस
0: तो यह आकाशवाणी श्रीनगर मीडिया वेव्स आठ अशार्य अठ मीटर तो एफ एम अख अशार्य पांच मेगा हर्ट्ज़न पे तो नौ बजे तो पांच तजी मिनट सपदे वोल बोझो सपानसठ प्रोग्राम
2: ऑल इंडिया रेडियो के श्रीनगर जम्मू और लेह स्टेशनों से पेश होता है हफ्तावार प्रोग्राम जेके बैंक डायरी।

0: 3 मई इतवार और जेके बैंक के ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट जेके बैंक डायरी का ताजा शुमारा लेकर हम हाजिर।
1: प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल और हार्दिक अभिनंदन।
0: आज की रेडियो डायरी में भी शामिल रहेंगे कई सारे मौजूदात, लेकिन शुरुआत हज़्मे मामूल इदारिया से।
2: दोस्तों, एक अंग्रेजी कहावत है, ले बाय समथिंग फॉर अ रेनी डे, यानी आने वाले वक्त के लिए कुछ बचाना जरूर चाहिए। इंसान की जिंदगी जिस कदर बेहतर और खूबसूरत है, उसी कदर इसकी बेसबाती और वक्त के चाल चलन का अंदाजा लगाना मुश्किल है। वक्त कब कौन सी करवट बदले कोई नहीं बता सकता, इसीलिए तो हम समझते हैं कि ऐसे वक्त का सामना करने के लिए थोड़ी थोड़ी तैयारियां अभी से करनी चाहिए। वो वक्त जो एक आजमाइश की सूरत या एक मौका लेकर हमारे सामने खड़ा हो जाए। बचत की आदत एक आदमी को आने वाले अच्छे और बुरे वक्त में सहारा देती है। वक्त बुरा हो तो उससे निकलने में मदद मिलती है और अच्छा हो तो उसकी खुशियों को दुबला करने में मावन साबित होती है। हर दिन, हर हफ्ते या हर महीने अगर हम थोड़ा थोड़ा पैसा अपने सेविंग्स अकाउंट में या रेकरिंग अकाउंट में या किसी दूसरी स्कीम में इन्वेस्ट करें तो वो पैसा ना सिर्फ महफूज रहेगा बल्कि जमा होकर एक बड़ी रकम भी बनेगा और उस पर इजाफी 4 पैसे बैंक भी अदा करेगा। जब भी आपको जरूरत महसूस हो तो आसानी से आपके पैसा हासिल कर सकते हैं। वक्त के तकाजे पूछ कर नहीं।

0: ऑथेंटिक सोर्स से ना हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए। इसमें ये भी बताना चाहता हूँ, जैसे सोशल इंजीनियरिंग होती है, वीडियो कॉल्स होती हैं, वॉइस कॉल्स होती हैं, आपको फेक ईमेल्स आते हैं, आपको फेक व्हाट्सएप मैसेजेस
1: या
0: आती
1: डिजिटल
0: हैं,
1: अरेस्ट वगैरह।
0: डिजिटल डिजिटल अरेस्ट आ जाता है, जहां पे कि आपको एक कॉल आती है, आप उस कॉल में, आपने कभी देखा होगा कि पुलिस से कॉल होती है अपना पार्सल छुड़ाने के लिए, आपको इतना पैसा देना है, फिर ये एक साइकिल बनता है और ये साइकिल तोड़ना फिर बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि फ्रॉडस्टर को समझ आता है कि आप अब फंस
1: फंस
0: गए,
1: गए।
0: आप फंस गए। और जब तक कि आपको ऐसा महसूस हो जाए कि मैं डिजिटल अरेस्ट में फंस गया हूं और मैं पुलिस को आप ये रिपोर्ट करूंगा, तब तक आपका बहुत पैसा
1: जा चुका
0: जा
1: होता है।
0: चुका होता है। तो हमको ये इंश्योर करना है कि जो भी हमारे पासवर्ड्स हो, पिन्स हो, ओटीपीस हो, हम किसी भी ऐसे शख्स के साथ ना शेयर करें जो इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए ऑथराइज नहीं है। एक डिजिटल ट्रांजैक्शन, चाहे अगर मुझे फैमिली विद इन फैमिली भी ये ट्रांजैक्शन करनी है, बट मेरे को अपने ओटीपीस अपने बच्चों या अपनी फैमिली में किसी भी फर्द के साथ शेयर नहीं करने हैं।
1: अच्छा आमिर साहब, एक चीज़ जानना चाहेंगे आपसे, वो ये कि इन केस ये सब जो आपने एहतियात कहे, मैक्सिमम लोग जो हैं वो इन पे अमल पैरा भी होते हैं, लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है कि इंसान किसी लालच में या किसी धोखे में आ जाता है और डिजिटल फ्रॉड का शिकार हो जाता है। अक्सर हमने बात सुनी है कि गोल्डन आर होता है, तो डिजिटल फ्रॉड्स अगर हो जाएं तो ये गोल्डन आर क्या है और इसको हम कैसे, इस ये जो पैसा हमारा नुकसान हुआ हो उसको हम कैसे रिट्रीव कर सकते हैं?
0: जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा, एहतियात बरतने के बाद भी डिजिटल फ्रॉड के चांसेस रहते हैं। अब अगर खुदा ना खास्ता डिजिटल फ्रॉड हो
1: हो
0: गया,
1: गया
0: तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मैं इस डिजिटल फ्रॉड को कितना जल्दी रिपोर्ट
1: रिपोर्ट
0: करूँ।
1: करूं।
0: ये रिपोर्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये रिपोर्टिंग इम्पोर्टेंट है कि मैं किसी एलईए लीगल एंटिटी के साथ शेयर करूँ, ताकि इस पे एक्शन लिया
1: ले
0: जाए।
1: जाए
0: अब मुझे पता चलता है कि मेरा फ्रॉड 10 बजे हो गया, कि मैं फ्रॉडस्टर का
1: शिकार
0: शिकार
1: हो
0: हो
1: चुका।
0: गया, इसके लिए इसमें इंपॉर्टेंट है कि मैं इस कंप्लेंट को कितनी जल्दी रजिस्टर करूं। अब कुछ डिफरेंट मोड्स हैं जहां मैं इसको रजिस्टर कर सकता
1: वो
0: हूं।
1: भी बता दीजिएगा।
0: एक तो हमारा रहा 1930 नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस नंबर पे रजिस्टर करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पोर्टल पे सब बैंक्स ऑनबोर्डेड होते हैं, और जब मैं यहां पे इस पोर्टल पे कंप्लेंट करता हूं, अगर मैं एक विक्टिम हूं और मेरा पैसा 10 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ और डिफरेंट बैंक्स में हुआ, ये सब बैंक्स वहां पे ऑनबोर्डेड है, और इमीडिएटली इन सब बैंक्स को मैसेज जाता है कि ये फ्रॉड हुआ है, इस अकाउंट के अगेंस्ट जो भी एक्शन लेना है उस एक्शन को लिया जाए। अब जब एक फ्रॉड होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी अमाउंट को रिकवर करने के लिए होती, वो होती है कि जिस बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसा गया उसको लीन मार्क करना, ताकि वो फ्रॉडस्टर उस पैसे का इस्तेमाल
1: इस्तेमाल ना
0: ना
1: कर
0: करे।
1: पाए।
0: एक बार वो अकाउंट लीन हुआ, उसके बाद जो भी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है, उस फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद जो साइबर पुलिस जहां पे आपकी कंप्लेंट दर्ज होती है, वो एक एनओसी बैंक को भेजता है, जो कि बैंक उस एनओसी पे काम करने के बाद जो भी उस एनओसी में जो भी कोर्ट के डायरेक्शंस होंगे, हम उन डायरेक्शंस को फॉलो करते हैं अपने लीगल डिपार्टमेंट से सलाह मशवरा करने के बाद।
1: आमिर साहब, ये जो आपने नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल का जो टोल फ्री नंबर है 1930, इस पे कॉल करने के अलावा एक जो विक्टिम है वो कौन कौन से मोड्स अपना सकता है ताकि इसकी जो रिपोर्टिंग है वो प्रॉम्प्टली हो जाए और इमिजिएटली हो जाए?
0: हमारे पास डिफरेंट टच पॉइंट्स हैं विद इन द बैंक, जैसे आपके मोबाइल बैंकिंग के थ्रू
1: एम
0: आप
1: पे
0: एमपे
1: प्लस
0: डिलाइट प्लस में आप रिपोर्ट कर सकते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट सेंटर में कॉल करके रिपोर्ट कर सकते हैं अपनी फ्रॉड को, और जब भी हमारे पास कोई फ्रॉड हमारे कॉन्टैक्ट सेंटर के थ्रू रिपोर्ट होता है, हमारे रिसोर्सेज जो यहाँ 24 घंटे अवेलेबल होते हैं, वो उस पर इमिजिएटली ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर एक्शन इनिशिएट करते हैं, ताकि अगर कोई पैसा उस वक्त उनका निकल गया हो, उसके बाद और फ्रॉड ना हो जाए, ताकि उनका पैसा बच जाए।
1: से ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप इस सेल को हेड कर रहे हैं, तो आपके मुशाहिदे में क्या जल्दी रिपोर्ट करने से लोगों का पैसा वापस आया है?
0: देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि जितना जल्दी ये रिपोर्ट हो जाए, उतना जल्दी बेनिफिशियरी अकाउंट्स में अमाउंट लीन होता है। अमाउंट लीन का मतलब यहाँ पे ये है कि दूसरे बैंक में इतने सारे अमाउंट को वहाँ पे रोका जाता है,
1: ब्लॉक किया जाता
0: लॉक
1: है।
0: किया जाता है। जाता है ताकि वो जो बेनिफिशियरी है जिसको वो पैसा मिलता है वो उसको फर्दर यूज ना कर सके। तो हमने

0: ऐसे केसेस में देखा है कि हमने खुद भी देखा है कि बहुत सारे दूसरे बैंक्स का जहाँ की गोल्डन आवर में ये कंप्लेंट रजिस्टर होती है, वहाँ के जो कोर्ट ऑर्डर्स हमारे पास आते हैं उस पैसा को वापस करने के लिए हमको उनको ओब्लाइज करना होता है। बिल्कुल, जितना जल्दी कंप्लेंट रजिस्टर हो उतना ज़्यादा
1: ज्यादा चांसेस
0: रिकवरी के
1: रहते हैं।
0: चांसेस बढ़ जाते हैं। अपने क्रेडेंशियल्स, चाहे आपके OTPs हो, पिन्स हो, पासवर्ड हो, जो एक डिजिटल ट्रांजैक्शन को ऑथराइज करने के लिए या अप्रूव करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो किसी भी फर्द, चाहे वो आपके फैमिली में हो या फैमिली में ना हो, किसी के साथ भी शेयर ना करें। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
1: आमिर फारूक मतो साहब, इस खास मुद्दे पे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: शुक्रिया डॉक्टर साहब।
1: एक ज़रूरी इतला, जम्मू कश्मीर बैंक के उन बुज़ुर्ग, माजूर और बीमार ग्राहकों से गुजारिश की जाती है जो किसी वजह से जम्मू कश्मीर बैंक की शाखों पर नहीं आ सकते हैं, कि वो जेके बैंक की डोर स्टेप बैंकिंग से फ़ायदा उठाएं, जहां बैंक के नुमाइंदे उनके घर आकर मुख्तलिफ बैंकिंग सहूलियात जैसे KYC डॉक्यूमेंट्स वसूल करना, लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना, कैश डिपॉजिट करना या अपने अकाउंट से कैश निकालने जैसी सहूलियात वगैरह शामिल हैं, नॉमिनल चार्जेस के एवज आपको घर बैठे मैसर होंगी। लिहाजा आज ही अपनी बैंक शाखा से राबता करें और इन सहूलियात से फ़ायदा उठाएं। और अब इनामी सवाल की बारी।
2: दोस्तों, पिछले हफ्ते के शुमारे में हमने आपसे पूछा था कि J&K बैंक ने हालिया दिनों किस नई डिजिटल सुविधा को लॉन्च किया।
1: इस सवाल का सही जवाब है वॉइस पॉड।
2: दोस्तों, इस हवाले से हमें कई सारे जवाब ईमेल के जरिए मौसूल हुए, जिनमें दिए गए बेशतर जवाब सही थे, लेकिन लकी ड्रॉ के जरिए चुने गए आज के हमारे 3 विनर्स हैं।
1: कश्मीर डिवीजन से करालपुरा कुपवाड़ा के सलीम यूसुफ बजाड़, जम्मू डिवीजन से सांबा जम्मू की निर्मल देवी और लद्दाख से खालसी के थिनलेस दोरजे।
2: इनाम जीतने वाले तीनों दोस्तों को हमारी तरफ से इनाम बहुत बहुत मुबारक।
1: और अब नोट करें आज का इनामी सवाल।
2: दोस्तों, आपको बताना होगा कि नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन का नंबर क्या है।
1: आपके जवाबात हमें 9 मई शनिवार शाम 5 बजे तक हमारे ऑफिशियल ईमेल आईडी jkbankdiary@jkbmail.com पर पहुंच जाने चाहिए।
2: तो लेते हैं आपसे रुख्सत अगली इतवार तक। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारी 24/7 बैंकिंग सर्विसेज के जरिए, और किसी भी मजीद जानकारी के लिए डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर
1: 1-800-890-2122
2: या विजिट करें हमारी ऑफिशियल वेबसाइट
1: www.jkb.bank.in।
3: अभी आप सुन रहे थे जेके बैंक डायरी, पेशकश कॉरपोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, J&K बैंक।
4: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं। मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर शो आप समाप्त कर रहे हैं प्याम सुबह। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10 बज चुके हैं
5: जी। अगला शो है रेडियो साथी।

आदाब सामईन, आप सुन रहे हैं रेडियो साथी, आकाशवाणी श्रीनगर का एक ऐसा हफ्तवार प्रोग्राम जो दिलों को जोड़ने, सोच को वसत देने और माशरे में मस्बत तब्दीली लाने के लिए पेश किया जाता है। मैं हूं आपका मेजबान

0: अगर हम ललदत्त की बात करें तो वो सिर्फ एक शायरा नहीं थी बल्कि एक ऐसी रूहानी रहनुमा थी जिन्होंने अपने वक्त के माशरे को झंझोड़ कर रख दिया। उनका कलाम सादा था मगर उसमें गहरी हिकमत पोशीदा थी।
1: उन्होंने लोगों को ये सिखाया कि असल इबादत इंसान के अंदर की

0: सच्चाई है। अगर दिल साफ हो, नीयत खालिस हो, तो इंसान हर हाल में कामयाब हो सकता है।
1: ललित का पैगाम आज भी उतना ही अहम है जितना सदियों पहले था, क्योंकि सच्चाई और इंसानियत कभी पुरानी नहीं होती।
0: इसी तरह नंदुरेशी, जिन्हें शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह के नाम से भी जाना जाता है, ने कश्मीर के लोगों को एक नया रास्ता दिखाया। उन्होंने अपनी जिंदगी सादगी, खिदमत और मोहब्बत के उसूलों पर गुजारी।
1: उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि इंसान को अपनी जात से ऊपर उठकर दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। यही वो सोच है जो एक माशरे को मजबूत बनाती है।
0: उनका पैगाम आज भी हमारे लिए एक रोशनी की तरह है, जो हमें अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जा सकता है।

0: रेडियो साथी,
1: दिल से दिल तक रोशनी और सच्चाई के सफर में
0: आपका हम सफर।
1: रेडियो साथी
0: सुना करें हर एतवार
1: सुबह 10 बजे से 10:30 बजे तक।
0: रेडियो साथी,
1: दिल से दिल तक।
2: रेडियो साथी में हम बात कर रहे हैं उस खूबसूरत विरसे की जो हमें मोहब्बत, अमन और इंसानियत का दर्ज देता है।
0: ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस विरसे को न सिर्फ महफूज रखें बल्कि इसे आने वाली नस्लों तक भी पहुंचाएं।
2: क्योंकि यही वो बुनियाद है जिस पर एक मजबूत और खुशहाल माशरा कायम होता है।
0: कश्मीर की असल खूबसूरती इसके लोगों के दिलों में है, उन दिलों में जो मोहब्बत से भरे हुए हैं।
2: और यही मोहब्बत हमें एक दूसरे से जोड़ती है, हमें एक बनाती है। सामीन अजीज, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए एक सवाल बार बार जहन में उभरता है, क्या हम वाकई उस हम आहंगी की गहराई को समझते हैं जिस पर हमें फख्र है, या हम उसे सिर्फ एक रवायत के तौर पर दोहराते चले जा रहे हैं। अक्सर हम लफ्जों में तो इत्तेहाद और भाईचारे की बात करते हैं, मगर जब अमली जिंदगी की बात आती है तो कहीं ना कहीं हम रुक जाते हैं। असल हम आहंगी तब पैदा होती है जब ये एहसास हमारे रवैयों, हमारे फैसलों और हमारी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन जाए।
0: बिल्कुल रशीद, और यही वो नुक्ता है जहां हमें रुक कर सोचने की जरूरत है। हम आहंगी कोई बड़ी और पेचीदा चीज नहीं बल्कि छोटे छोटे अमलों से जन्म लेती है। जब हम अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ खुलूस और एहतराम का बर्ताव करते हैं, जब हम दूसरों की बात सुनने की आदत अपनाते हैं, तब एक ऐसा माहौल बनता है जहां इख्तलाफ भी खूबसूरती बन जाता है, न कि तनाज़।
2: अगर हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी पर नजर डालें तो हमें कई ऐसे मौके मिलते हैं जहां हम इस हम आहंगी को फरोख दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक पड़ोसी का दूसरे के दुख में शरीक होना, एक दोस्त का मुश्किल वक्त में साथ देना, या मुख्तलिफ अकायद के लोगों का एक दूसरे की खुशियों में शामिल होना। ये सब वो छोटे लम्हे हैं जो एक मजबूत और खूबसूरत माशरे की बुनियाद रखते हैं।
0: और यही वो खूबसूरत अकदार हैं जो हमें सूफी तालीमात से मिलती हैं। सूफिया ने हमें खामोशी से खिदमत करने, बगैर किसी सिले के मोहब्बत बांटने और दूसरों के लिए आसानी पैदा करने का दरस दिया है। उनकी तालीमात हमें ये सिखाती हैं कि असल अजमत दूसरों को फायदा पहुंचाने में है, न कि खुद को बड़ा साबित करने में।
2: समय ये एक सादा सा मंजर है, मगर इसमें एक गहरा पैगाम छिपा है। यही वो अंदाज है जिससे अकदार नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती हैं। बच्चे वही सीखते हैं जो वह अपने बड़ों को करते हुए देखते हैं।

0: रेडियो साथी,
1: दिल से दिल तक रोशनी और सच्चाई के सफर में
0: आपका हम सफर
1: रेडियो साथी,
0: सुना करें हर एतवार
1: सुबह 10 बजे से 10:30 बजे तक।
0: रेडियो साथी,
1: दिल से दिल तक।
0: अगर हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्लें मोहब्बत, बर्दाश्त और रवादारी को अपनाएं, तो हमें खुद इन अकदार का अमली नमूना बनना होगा। सिर्फ नसीहत काफी नहीं होती, अमल ही असल तालीम होता है।
2: आज का नौजवान एक तेज रफ्तार दुनिया में जी रहा है, जहां मालूमात तो बहुत हैं, मगर गहराई कम होती जा रही है। सोशल मीडिया ने हमें एक दूसरे के करीब भी किया है और कहीं ना कहीं दूर भी।
0: इसीलिए ये और भी जरूरी हो जाता है कि नौजवान अपनी जड़ों से जुड़े रहें, अपनी सकाफत, अपनी जुबान और अपने बुजुर्गों की तालीमात को समझें, क्योंकि यही चीजें उन्हें एक मजबूत शनाख्त देती हैं।
2: ललदिद ने खुद शनासी पर जोर दिया, यानी इंसान पहले खुद को समझे, अपने अंदर की सच्चाई को पहचाने, क्योंकि जब इंसान खुद को समझ लेता है तो वो दूसरों को भी बेहतर अंदाज में समझने लगता है।
0: और नंद ऋषि ने हमें ये सिखाया है कि सादगी, आजजी और खिदमत ही असल रूहानियत है। उन्होंने अपनी जिंदगी के जरिए ये साबित किया कि बड़े काम करने के लिए बड़े वसाइल नहीं, बल्कि बड़ा दिल होना चाहिए।

समय नाप समाप्त कर रहे थे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम रेडियो साथी। हमारी आवाज आप तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर।

मीडियम वेव 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी श्रीनगर है। समय 10:29 और 50 सेकंड हुए हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे अपना मनपसंद प्रोग्राम सुनेंगे होनहार।

0: अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, एकदम टिप टॉप हूँ। और आज मुझे लगता है मैं टिप टॉप इसलिए हूँ कि हमारे स्टूडियोज़ में हरियाली ही हरियाली है। और हरियाली कब होती है?
1: जब बाहर आती है,
0: जब बच्चे होते हैं बहुत से। मुझे ऐसा लगता है कि सच में हरियाली है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपने देखा है ना कि जब कोई किसान जब फसल बोता है, बीज लगाता है, फिर उसमें जब फल निकलता है तो वो किसान कितना खुश हो जाता है। आप यकीन माने उस कदर मुझे खुशी होती है जब बच्चे बहुत से आते हैं। तो यहाँ बैठे और घर बैठे सभी बच्चों को हमारी तरफ से बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आदाब। तो चलें प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। एक हमारी गुड़िया हैं, क्या सुनाएंगी? पहले बताएं क्या नाम है आपका?
2: आयशा।
0: आयशा क्या सुनाएंगी आप?
2: तितली।
0: तितली सुनाइए।
2: तितली उड़ती उड़ती आई चितली, चितली बोली बाली पीती पानी नहर पर जाकर जीती, दिन भर है उसी पर दिल है इसका नाजुक इतना, हिरन हिरन का दिल है जितना, किसने इसके 3 महीने जिस पर इसके है पसीना।
0: क्या नाम है आपका?
3: फरीहा।
0: फरीहा जी, फरीहा आज बहुत दिन के बाद आप आई जी, सुनाइए क्या सुनाएंगी?
3: उस्ताद का हक है माँ बाप का पहला रुतबा बड़ा, जो बात

0: हक है तो उस्ताद का, वो तुमको सिखाता है इल्म व शौर, जहालत तबीयत से करता है दूर, जहाँ तक बने इसकी इज्जत करो, दिल व जान से इसकी खिदमत करो, न टालो कोई हुक्म इसका कभी, हमेशा रखो इसको राजी खुशी, ना हो इसकी खिदमत से हरगिज मलूल, करता इल्म वो व दौलत तुम्हें हो हसूल, जो तुम इसकी खिदमत बजा लोगे तो खादिम से मखदूम बन जाओगे।
1: बिल्कुल सही है कि आप अगर अपने उस्ताद की इज्जत और कदर करेंगे तो आप बहुत बुलंदियों पे पहुंच जाएंगे। कभी ऐसे होते हैं ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो मजाक बनाते हैं अपने उस्ताद का, तो बहुत बुरी बात है। अपने उस्ताद की हमेशा इज्जत करनी चाहिए। क्या नाम है आपका?
2: सिल्विया।
1: सिल्विया, क्या सुनाएंगी आप?
2: इंटरनेट काम कैसे करता है?
1: जी,
2: इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है जो करोड़ों कंप्यूटर्स, फोन्स और डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। इसकी हेल्प से हम मैसेजेस भेज सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं और ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। जब हम फ़ोन या कंप्यूटर पर कुछ सर्च करते हैं, हमारी रिक्वेस्ट डेटा की फॉर्म में सर्चेस तक जाता है। सर्चेस पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं जो इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, फिर सर्चेस हमें सेकंड्स में आंसर भेज देता है। इंटरनेट केबल्स, सैटेलाइट्स और वाईफाई के थ्रू काम करता है, इसीलिए हम दुनिया के किसी भी कोने से किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं। इंटरनेट ने हमारी लाइफ इजी और फास्ट बना दी है, बट हमें इंटरनेट का सेफ और स्मार्ट यूज़ करना चाहिए। शुक्रिया।
1: हमारे लिए सबसे ज़्यादा हमारी मेंटल हेल्थ के लिए और हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, एक बात, वो ये है खुश रहना। हम सब जानते हैं ना, खुश रहना बहुत ज़रूरी है, उससे हमारी मेंटल हेल्थ भी ठीक होती है और हमारी फिजिकल हेल्थ भी ठीक होती है। 3 मई को एक दिन आता है, ये हर मई के पहले संडे को मनाया जाता है। हाँ, ये है वर्ल्ड लाफ्टर डे। तो आप मुझे कोई बताएगा कि लाफ्टर का क्या मतलब है? हंसना है। और जरा एक कहकहा लगाइए, आपने देखा होगा एक्सरसाइज जब करते हैं, हाँ हाँ हाँ ऐसे ऐसे करते हैं, तो सब जरा जोर का एक कहकहा लगाइए। हंसी, जरा हंसी, हंसी जोर से, नहीं ऐसे नहीं, दिल बहुत खिलखिला के हंसी, और ज्यादा हंसी, और ज्यादा, और ज्यादा, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चों को मुझे गुदगुदी करनी पड़े। तो देखे, हंसने से, हंसने के बहुत फायदे हैं। हाँ, मुस्कुराहट एक सदका भी है। और अब देखे, छोटे छोटे बच्चे जो है वो हंसते ही रहेंगे, आप हंसते ऐसे ही खिलखिलाते रहिए, बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं ये कह रही थी कि मुस्कुराहट जो है वो सदका भी है, वो सदका भी है। आप अगर किसी की तरफ मुस्कुरा के देखते हैं तो वो आपके लिए सदका बन जाता है। इसी तरह से कहा जाता है कि आपने देखा होगा सुबह सुबह एक्सरसाइज होती है और उसमें जोर जोर से लोग कह कहे लगाते हैं, देखा है ना आपने?
3: जी,
1: तो उससे क्या होता है, उससे मेंटल स्ट्रेस कम होता है। और कहते हैं कि अगर आप हंसते रहेंगे तो आपके चेहरे पे ग्लो आएगा, अगर आप हंसते रहेंगे तो आपके चेहरे की झुर्रियां जो हैं वो भी कम होंगी। तो इसलिए हंसते रहिए और सबको हंसाते रहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि हंसने वालों के साथ तो सब रोते हैं, रोने वालों के साथ बहुत कम लोग होते हैं जो उनका साथ देते हैं। तो कोशिश ये करें कि हंसते रहें और दूसरों को भी हंसाते रहें। क्या नाम है आपका?
4: मुरसलीन।
1: मुरसलीन जी, मुरसलीन क्या सुनाएंगे?
4: ये माहौलियाती आलूदगी।
1: जी,
4: आए जरा अपने आस पास के माहौल पर नजर डालें, चारों तरफ किसी ना किसी किस्म की आलूदगी है। गली कोचे मुख्तलिफ किस्म की गंदगी से भरे पड़े हैं, गंदगी से किस्म किस्म की बीमारियां पैदा होती है। जरा सोचे इस सब के लिए कौन जिम्मेदार है? आप सड़क पर चल रहे हैं, आपके दाएं बाएं मोटर गाड़ियां धुआं उगलती दौड़ रही है, कहां कारखानों और फैक्ट्रियों की छन्नी से उड़ता हुआ धुआं, कहां दरिया
1: से
4: चिमनियों से उड़ता हुआ धुआं, कहां दरिया से गुजरते हुए साफ और शफाफ पानी की जगह मेला और बदबूदार पानी है।

0: देखिए, अगर हम लोग चाहें तो पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब गाड़ियों की एक उम्र हो जाती है, 15 साल जब हो जाते हैं, तो उनको भी रोड पे नहीं चलने दिया जाता है। और साथ साथ ये भी ख्याल रखा जाता है कि आपकी गाड़ियों के पास पोल्यूशन की सर्टिफिकेट है या नहीं। हाँ, बहुत जरूरी होती है वो। अगर आपके पास नहीं हो तो चालान हो जाता है। देखो बच्चों, ये इसलिए होता है कि हम ये चाहते हैं कि हमारा जो माहौल है वो आलूदगी से बच जाए। इसी तरह से हमारे यहाँ खैर इंडस्ट्रियल एरिया ज्यादा नहीं है, लेकिन जितने भी हैं साथ साथ जहाँ पे होटल्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, वहाँ पे साथ साथ इस बात का बहुत ख्याल रखा जाता है कि कहीं पे कोई पोल्यूशन ना हो। तो इसलिए हमें भी इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। आपने देखा होगा कि जब कभी कहीं कोई कूड़ा करकट जला देता है तो उसमें पॉलीथिन्स भी होते हैं। तो जब पॉलीथिन जलता है बच्चों, तो उसमें से टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत खराब है। तो इसलिए जब भी कोई कहीं पे आग लगाए किसी चीज को, किसी कूड़े को, तो आपकी एक जिम्मेदारी बनती है सब बच्चों की। जिस तरह से अपने लिए, अपने घर के लिए जिम्मेदारी बनती है, इसी तरह समाज के तई भी आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, आपको ये कहना चाहिए कि आप ये काम गलत कर रहे हैं, क्योंकि हमारी हवा जो है, हमारा माहौल जो है, वो पोल्यूटेड हो जाएगा। और उससे फिर क्या नुकसान होगा? हम सांस जो है वो पोल्यूशन में हम लेंगे, हमारी सेहत खराब होगी, हमारे पेड़ पौधे जो हैं वो खराब होंगे। तो इसलिए इस बात का हमें खास ख्याल रखना चाहिए। तो चलें, एक बहुत अहम बात मैं आपको बताने जा रही हूँ। जिस तरह से पोल्यूशन की अभी हमने बात की, उसी तरह से रोड सेफ्टी हमारे लिए बहुत जरूरी है। और 8 मई को दिन आता है ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक। पूरा हफ्ता मनाया जाता है, और देखते हैं कि आदिल मंजूर हमें इस बारे में क्या कहेंगे।
1: प्यारे बच्चों, आज मैं आपसे कुछ अहम चीजें शेयर करना चाहता हूं ट्रैफिक कवानीन के हवाले से। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इनको गौर से सुनेंगे और इन पर इंशाल्लाह अमल करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हमारी जान माल का सवाल है। तो आइए सुनते हैं कुछ इस हवाले से, ट्रैफिक कवानीन के हवाले से। ट्रैफिक कवानीन हमारी जान की हिफाजत के लिए बनाए गए हैं। सड़क पर चलते वक्त छोटी सी गलती भी बड़े हादसे का सबब बन सकती है, इसलिए हर बच्चे को इन असूलों को समझना और इन पर अमल करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपसे एक दिली बात शेयर करना चाहूंगा इन असूलों से पहले, वो ये है कि इसमें भी मोबाइल का अमल दखल है। कि जब हम रात देर तक मोबाइल को देखते हैं, चलाते हैं, तो हम देर से सोते हैं, फिर लेट उठते हैं। ये बड़ों के लिए भी है, खास तौर बच्चों के लिए, लड़कपन में जो है एडोलेसेंट्स, उनके लिए है। फिर जब लेट उठते हैं तो जब कहीं जाना होता है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑफिस, दुकान पर बड़ों को, तो साइकिल ले जाते हैं या हम बाइक्स, स्कूटीज, टू व्हीलर्स पे जाते हैं या गाड़ियां चलाते हैं, तो फास्ट ड्राइविंग करते हैं, जिसकी वजह से मेन रीजन यही होता है, जब फास्ट ड्राइविंग होती है तो हम ट्रैफिक कवानीन का ख्याल नहीं करते। हमको चाहिए कि हमें सबसे पहले रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें, और ताकि हम जहां पर भी हमें पहुंचना हो मकाम पे टाइम पे पहुंचे और अच्छे से ड्राइव कर पाए। अहम असूलों में से कुछ असूल ये हैं। पहला, हम ये कह सकते हैं कि हर हमेशा हमको चाहिए कि सड़क पार करने के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग या फुट ओवर ब्रिज इस्तेमाल करें। सड़क पार करने से पहले हमें दाएं बाएं और दोबारा दाएं देखना चाहिए। अक्सर हम दाएं बाएं देखते हैं और क्रॉस कर पाते हैं, कभी इंसान की नजर धोखा खा जाती है, कि जिससे इंसान को कभी दाएं तरफ से कोई गाड़ी आ रही होती है नजर नहीं आती है। तो हमें दोबारा चाहिए कि हम दाएं से दोबारा नजर दौड़ाएं। जैसे कि ट्रैफिक लाइट्स की बात करें, सुर्ख बत्ती पर हमको रुकना चाहिए रेड लाइट पे, पीली बत्ती, ऑरेंज बत्ती पर हमको रेडी रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, और सब्ज बत्ती जो ग्रीन लाइट होती है उस पर हमको आगे बढ़ना चाहिए, चलना चाहिए। और चलते वक्त हमेशा फुटपाथ का इस्तेमाल करें। हम अक्सर देखते हैं कि फुटपाथ होने के बावजूद हम सड़कों पर चलते हैं, इवन मॉर्निंग वॉक में भी देखा गया, शाम को इवनिंग वॉक, और उस टाइम भी कुछ लोग हादसे की शिकार होते हैं कि फुटपाथ होने के बावजूद सड़क पर चलते हैं, इसका ख्याल करना है हमें। सड़क पर खेलना या दौड़ना खतरनाक है, कभी कभार हम ऐसा देखते हैं, इससे हमको जरूर बचना चाहिए। साइकिल चलाते वक्त हेलमेट या स्कूटी हो, इवन साइकिल हो, आजकल तो ऐसे साइकिल आते हैं, उनके लिए भी हेलमेट जरूरी है, क्योंकि उनमें स्पीड भी होती है, कभी गियर्स होते हैं, तो हमको चाहिए कि

0: हेलमेट लगाएं, स्कूटी बाइक पे तो लगाना ही लगाना है, और पीछे जो आप हमारे यहाँ पैसेंजर होता है कोई, तो उसको भी हम लगाएं, और सड़क की बाईं तरफ चलें। जब हम गाड़ी चलाएं तो हमको चाहिए कि सीट बेल्ट लगाएं, जो ड्राइवर तो लगाते ही लगाते हैं, जो चलाने वाले होते हैं उनके बाईं जानिब जो होते हैं, हमको ये कानून समझने चाहिए और ये मुमकिन बनाएं हर हमेशा पहले से बच्चे को कि वो इन कवानीन पर अमल करें। जो बाईं से बैठे, बच्चा बैठे, बड़ा बैठे, तो वो भी सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, और खिड़कियों से न झांके न झुके। तो कभी कभार रॉन्ग साइड से कोई गाड़ी आती है जो हादसे का शिकार हो सकते हैं हमारे बच्चे हों, खुदा हिफाजत करे या बड़े हों, तो ट्रैफिक के इशारों और ट्रैफिक पुलिस की हिदायत पर अमल करें, और मोबाइल फोन या दीगर चीजों में मसरूफ होकर सड़क पार न करें। ये भी आए दिन हम देखते हैं कि मोबाइल फोन चलाते हैं। और एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा बीच में कि हम देखते हैं कि सड़क के बीच में जो पेड़ लगाए हुए होते हैं, तो बीच में से कभी कभार अफराद निकल कर आते हैं अचानक से, तो वो हादसे का शिकार होते हैं। तो जब वो क्रॉस करें तो पहले दाएं बाएं देखिए और फिर नीचे उतरे और क्रॉस करें। रात के वक्त हल्के या चमकदार कपड़े पहने ताकि गाड़ी वाले आपकी आपको आसानी से देख सकें और आप खुदा न खौस्ता एक्सीडेंट की शिकार ना हो। और आखिर में यही हम आपसे शेयर करना चाहेंगे कि ट्रैफिक कानून पर अमल करना हर शहरी की जिम्मेदारी है। अगर बच्चे शुरू से ही इन असूलों की आदत डालें तो वो एक महफूज और जिम्मेदार शहरी बन सकते हैं। उम्मीद है आपने ये सारे उसूल गौर से सुने होंगे और इंशाल्लाह इन पर आप आइंदा हमेशा खुद भी अमल करेंगे और दूसरों तक भी ये बातें पहुंचाएंगे। खुदा हाफिज।
1: आदिल मंजूर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बातें हमें कही, और यकीनन बच्चे जो हैं वो इस सब पे अमल करेंगे। जब भी आपको रास्ते से चलना है तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जब आप क्रॉस करते हैं तो किसी बड़े का हाथ पकड़ के क्रॉस करें। आपने अगर चलना है तो आप किस तरह से चलें। अगर आपके पेरेंट्स कभी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो फौरन आपने उनको क्या कहना है, कानून को फॉलो कीजिए। आप उनको कहिए हमने सीखा है कि किस तरह से हमें ट्रैफिक रूल्स का जो है वो पालन करना होता है। तो चलिए अब बच्चों को एक नगमा सुनवाते हैं।

0: कैसा लगा आपको ये नगमा?
1: जी बाजी बहुत अच्छा।
0: चलिए ठीक है, क्या नाम है आपका?
2: अफसाना।
0: आज क्या सुनाएंगी हमें?
2: हम टॉपिक, तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, क्या जमीन बनाई, क्या आसमान बनाया, पांव तले बिछाया, क्या खूब फर्श खाके और सर पे लाजवारी दी, सेबान बनाया, मिट्टी से बेल बूटे, क्या खुश नमक उगाया, पहना के सब्ज खलत उनको जुआन बना, मेवे लगा क्या क्या खुश जायका रसील, खने से जिनके मुझको शरीन दयान बन, खुश रंग और खुशबू फूल है खिले, इस खाक के खंडर को क्या गुलस्तान।
0: क्या नाम है आपका?
3: बिस्मा। हामिद, क्या आप मेरे दोस्त बनोगे?
4: जी हाँ, क्यों नहीं।
3: तो फिर मेरी मदद करो।
4: मदद? कैसी मदद?
3: लोग हम पर जुल्म करते हैं, बड़े बड़ी बेदर्दी से काटते हैं, देखो मैं अभी छोटा हूँ, कुछ लोग मुझे भी काटने पर तुले हैं।
4: लोग ऐसा क्यों करते हैं?
3: कोई आग जलाने के लिए, कोई फर्नीचर बनाने के लिए, कोई मकान तामीर करने के लिए हमें काटता है।
4: तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ?
3: लोगों को बताए कि दरख्त बेदर्दी से ना काटे, जंगलों की हिफाजत करे।
4: लोगों को आग जलाने की भी लकड़ियाँ चाहिए, फर्नीचर बनाने की भी लकड़ियों की ज़रूरत है, मकान तजीद करने की भी लकड़ियाँ दरकार है, इंसान क्या लकड़ियाँ कहाँ से लाए?
3: इन कामों के लिए बड़े सूखे बोसीदा और ज़मीन पर गिरे हुए दरख्तों का इस्तेमाल किया जा सकता है, ना क्या मुझ जैसे छोटे दरख्त का।
4: तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन
3: सुनो हामिद, दरख्त काटने से इंसान अपना ही नुकसान करता है। तुम जानते हो कि जहाँ दरख्त ज्यादा हो वहाँ अच्छी खासी बारिश होती है, हवा साफ रहती है और दरख्त माहौल को आलूदगी से बचाते हैं।
4: तुम्हारी बात तो सही है, मास्टर जी ने भी क्लास में बताया था।
3: क्या अब हम दोस्त हैं?
4: हाँ, अब हम पक्के दोस्त हैं।
3: हामिद, अब क्या होगा? वो अपने दाएं बाएं देख कर एकदम दरख्त से लिपट जाता है और चिल्ला चिल्ला कर कहता है,
4: मेरे दोस्त, अब तुम्हें कोई भी नहीं काटेगा। हाँ, अगर कोई भी काटने की कोशिश करेगा उसको मैं ये कहूँगा, अगर आपको इस दरख्त को काटना है, पहले तुम्हें मुझे काटना होगा।
0: क्या नाम है आपका?
5: मेरा नाम मोहम्मद अली है।
0: क्या सुनाएंगे आप?
5: मैं माँ के बारे में कुछ सुनाना चाहता हूँ। माँ शफकत, खलूस, बेलूस, मोहब्बत और कुर्बानी का दूसरा नाम है। ये दुनिया की वो सबसे प्यारी हस्ती है, जिसका ख्याल जहन में आते ही एक लतीफ सा एहसास जागता है। इसका साया चिलचिलाती धूप घने पेड़ की छाँव जैसा है। इसका दस्त शफकत शजर साया दार की तरह साहिबा बनकर औलाद को सुकून का एहसास दिलाता है।
0: क्या नाम है आपका?
6: जी मेरा नाम यादविन यूनिस है। आज मैं आपके सामने खुश इखलाकी के बारे में कुछ सुनाना चाहता हूँ। हिंदुस्तान के मुसलमान बादशाहों में से एक का नाम नासिरुद्दीन था। वो बहुत ही नेक और सादा मिजाज बादशाह था। सरकारी खजाने से अपने जाती अखराजात के लिए एक पैसा भी नहीं लेता था। गुजर अवकात के लिए उसने खुश नवीसी इख्तियार की थी, कलाम पाक और दूसरी किताबें लिख कर उनकी आमदनी से अपने अखराजात पूरे करता। एक दफा का जिक्र है कि कोई रईस उससे मिलने आया, उसने उसे अपने हाथ का लिखा हुआ एक खुश खत कलाम पाक दिखाया। रईस उसे देख कर बहुत खुश हुआ, गौर से देखता रहा, फिर बोला, उसमें कुछ गलतियां हैं, उन्हें दुरुस्त फरमा लीजिएगा। रईस की निकाली हुई गलतियां हकीकत में गलतियां न थी, फिर भी नासिरुद्दीन ने बाल

0: बिल्कुल बुरा ना माना, बल्कि मुस्कुराकर उसका बहुत शुक्रिया अदा किया। जिन गलतियों की उसने निशानदेही की थी उनके घर हल्का बना दिया के बाद में दुरुस्त कर ली जाए। बाकी वस्सलाम।
1: क्या नाम है आपका?
2: बुशरा मोहम्मद
1: जी। बुशरा, क्या सुनाएंगी आप?
2: वक्त।
1: वक्त जी।
2: सात सेकंड का एक मिनट होता है, सात मिनट का एक घंटा होता है, रात दिन में 24 घंटे होते हैं, सात रात दिन का एक हफ्ता होता है, एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं, एक साल में 365 दिन होते हैं, एक सदी में 100 साल होता है। शुक्रिया।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कहा कि जो वक्त के बारे में आपने कहा। और बच्चों बताओ कि वक्त की पाबंदी कितनी जरूरी है, पंचुअलिटी जिसे हम कहते हैं, बहुत जरूरी। आप स्कूल सिर्फ देखिए, जब हम स्कूल जाना शुरू करते हैं ना, तो स्कूल जाना सिर्फ आपको पढ़ाई लिखाई सिखाना नहीं है, हाँ, बल्कि आपको एक डिसिप्लिन देना है। आप वक्त से स्कूल जाते हैं, उससे आप फिर हर आधे घंटे में आपका वक्त वहाँ पीरियड चेंज होता है या 45 मिनट्स में चेंज होता है, उससे क्या होता है कि आपको वक्त के बारे में बताया जाता है, हाँ, वक्त की पाबंदी के बारे में बताया जाता है। और जब आप वक्त की कदर करेंगे तो वक्त आपकी कदर करेगा। आप यूनिफॉर्म क्यों पहनते हैं, आप में से कोई बच्चा बता सकता है? आप यूनिफॉर्म पहन के क्यों जाते हैं स्कूल?
2: स्कूल की निशानी होती है।
1: हाँ, और तो आपके स्कूल की पहचान है। और यूनिफॉर्म पहनने का एक जो अहम मकसद वो ये है कि आप सभी बच्चे यकसां दिखें, हाँ, एक जैसे दिखें। जैसे वक्त की पाबंदी हमें स्कूल से मिलती है, ऐसे ये है कि किसी को कभी कमतर मत समझो। छोटा बड़ा, अमीर गरीब, ये जो सोच है ये हमें स्कूल से मिलती है कि सब यकसां हैं। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं इन्हें आप याद रखें, ठीक है? क्या नाम है आपका?
3: जी, मेरा नाम फरहान है।
1: जी, आप क्या सुनाएंगी आज?
3: सलाम अलैकुम प्यारे बच्चों।
4: वालेकुम सलाम।
3: उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, तवानाई का तहफ्फुज निहायत जरूरी है। इसके तहफ्फुज करने से ये वसाइल आइंदा की नस्लों के लिए ज्यादा अरसे तक कायम रह सकते हैं। तवानाई के तहफ्फुज से हम अपने पैसे बचा सकते हैं। क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है कि हम कैसे अपने पैसे बचा सकते हैं? इससे
1: बताइए जरा, कोई आप में से बता सकता है?
3: चलिए मैं आपको बताती हूँ। हम सब अपने घरों में गैर जरूरी लाइटें, पंखे, इलेक्ट्रॉनिक चीजें बंद करके हमारी बिजली का बिल कम आ सकता है। तो ये एक जरिया है जिससे तवानाई के तहफ्फुज की वजह से हम अपने पैसे बचा सकते हैं। आज मैं आप लोगों को कुछ बातें बताती हूँ जो आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी आदत बना लोगे। प्यारे बच्चों, सभी अपने कमरों से बाहर जाने के बाद अपने कमरों में लाइट्स और पंखे, इलेक्ट्रॉनिक चीजें बंद किया करें।
1: जी।
3: तवानाई के लिए हम अपने घरों में LED बल्ब्स का इस्तेमाल करें। जब भी मुमकिन हो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट सफर के लिए इस्तेमाल करें। हम ज्यादा से ज्यादा पैदल चलने या साइकिल का इस्तेमाल करें। आप सब मुझसे वादा करते हैं कि आप अपने घर में कमरों से बाहर जाने के बाद अपनी लाइटें बंद किया करेगी?
4: जी।
3: चलो शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।
1: देखिए कितनी अच्छी इन्होंने बात बताई कि हम खुद अगर चाहें तो अपनी बिजली बचा सकते हैं, अपनी लाइट्स ऑफ करके, पंखे बंद करके। अगर आपके घरों में ब्लोअर्स, ACs हैं, तो जब जरूरत ना हो बेहतर है कि हम उन चीजों को बंद करते हैं। और उन लोगों तक फिर ये बिजली जाएगी जो इसके मुस्तैक हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि लंबे लंबे पावर कट्स रहते हैं ना, तो जब पावर का जब लोड कम होगा तो हमारे पावर कट्स भी कम होंगे, क्योंकि फिर बिजली बच जाएगी ना। आप ये समझे, ये एक जखीरा है, इसमें से आप जितना जितना कंज्यूम करेंगे उतना खर्च होगा, फिर बाकी तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इसका सही इस्तेमाल करें। जी, क्या नाम है आपका?
5: खालिद हुसैन।
1: खालिद हुसैन, कहाँ से आए हैं?
5: अरगाम।
1: अरगाम से आए हैं जी, क्या सुनाएंगे?
5: मेरा गांव।
1: मेरा गांव।
5: मेरा गांव। मेरे गांव का नाम गोजरपति अरगाम बांडीपोरा है। ये इलाका कश्मीर का मशहूर गांव अरगाम का एक बलाई इलाका है। यहाँ के लोग मेहनती और जफाकश हैं। ज्यादातर लोग माल मवेशी पाल कर अपना गुजारा करते हैं। मेरे गांव तक सरकार ने अगरचा एक पख्ता सड़क भी पहुँचाई है, मगर यहाँ के लोग जिंदगी की बुनियादी सहूलियात से बिल्कुल महरूम है। इलाके में एक प्राइमरी और एक मिडिल स्कूल है।

0: इलाज मुआवजा के लिए मरीजों को तकरीबन 3 किलोमीटर पैदल नीचे लाना पड़ता है। मेरे गांव की कुदरती खूबसूरती देखने के लायक है। यहां की खूबसूरत मर्ग जिनमें लंग मर्ग, मोहन मर्ग और लाल मर्ग शामिल है को अगर सहजती नशके पर लाया जाए तो यहां सैलानियों का भारी रश रहने का अमकान है। मेरे गाँव को ये खसूसियत भी हासिल है कि ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बुक विलेज है जहाँ हर घर में एक एक लाइब्रेरी मौजूद है। हमारे गाँव में मशहूर पहाड़ी गायिका बेगम जान और गायक यकूब चेची को जन्म दिया है जिनकी मीठी आवाज़ सीधे दिल में उतर जाती है। मेरे गांव में सेब, अखरोट, गिलास और अंगूर भी अच्छी तादाद में उगाए जाते हैं।
1: आज मैं वाकई बहुत खुश हुई क्योंकि अक्सर मैं सभी बच्चों से कहती हूँ कि जहाँ आप रहते हैं वहाँ के बारे में आप कुछ लिख के लाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आज आपने लिख के लाया आपने गांव के बारे में, सभी बच्चों ने सुना और जो घर पे बैठे बच्चे हैं ये कल्चर एक्सचेंज, हाँ आपने अपने गांव के बारे में बताया और हमने ये भी सुना वहाँ 3 मर्ग हैं, अगर ये सियाहती नक्शे पे आ जाए तो ये एक टूरिस्ट प्लेस बन सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और कुछ और भी जो इन्फॉर्मेशन होगी अपने गाँव के बारे में आप ज़रूर लाएँ, हमें बहुत अच्छा लगेगा। क्या नाम है आपका?
2: कुरैबा मुदस्सर।
1: जी कुरैबा, क्या सुनाएंगी आप?
2: कहना पढ़ूंगा माँ।
1: जी।
2: माँ बाप दाद सब हैं खुदा की रहमत है, रोक टोक उनकी हक में तुम्हारी नियामत, कड़वी नसीहतों में उनकी बरा है अमृत, जाओ अगर बड़ाई कहना पढ़ूंगा मानो, माँ बाप का अजीजो माना न जिसने कहना, दुश्वार है जहाँ में इज्जत से उसका रहना, डर है पड़े न सदमा जिल्लत का उसको सहना, जाओ अगर बढ़ाई कहना बड़ों का मानो, तुमको नहीं खबर कुछ अपने बुरे भले की, जितनी है उम्र छोटी उतनी है अक्ल छोटी, है बेहतरी उसी में जो है बड़ों की मर्जी, जाओ अगर बढ़ाई कहना बड़ों का मानो। शुक्रिया।
1: इसके साथ ही हमारे आज के इस प्रोग्राम का वक्त जो है वो मुकम्मल हुआ जाता है, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबरक तआला आपको उम्र नू और शान ज़ुल्करनैन अता फरमाए। आज बस इतना ही, अगला प्रोग्राम लेकर होंगे फिर आपकी खिदमत में हाजिर। जब तक के लिए
3: खुदा हाफिज़।

नन्हे मुन्ने बच्चे अपना मनपसंद प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे होनहार। हमारी आवाज़ आप तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: زمین تو سو کشن موسیقی بوزان تو یوس کلام سمد میر فنکار غلام احمد صوفی تہند ستھی ہماری آواز آپ تک آکاشوانی سری نگر سے پہنچ رہی ہے. میڈیم ویو 268.81 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر. زمین 12 بج رہے ہیں. اب ہم آکاشوانی دلی سے ہندی اور انگریزی خبروں کے بلٹن نشر کریں گے. ذرا سا انتظار کیجیے.
1: नमस्कार. आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा. पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा. मतगणना 24 मई को की जाएगी. निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है. पर्यवेक्षकों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराने धमकाने और मतदान नियमों का उल्लंघन जैसी गंभीर अनियमितताओं की सूचना दी है. कई केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बटन पर जानबूझकर काला टेप लगाया गया था. अनधिकृत लोगों का मतदान केंद्रों में प्रवेश और दूसरों का वोट डालने की घटनाएं भी सामने आई हैं. पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी. निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां कर ली हैं. पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती कल कड़ी सुरक्षा के बीच 77 मतगणना केंद्रों पर होगी. तमिलनाडु में 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं. मतगणना के लिए 10,545 कर्मी तैनात किए जाएंगे. 4,624 सहायक पर्यवेक्षक भी तैनात रहेंगे. प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक एक पर्यवेक्षक सहित कुल 234 मतगणना पर्यवेक्षक पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और आयोग के वर्तमान निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे.
2: जनादेश 2026.
3: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ.
2: मतगणना की पल पल की खबर, संवाददाताओं से ताज़ा हाल और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का सटीक विश्लेषण.
3: कल सुबह 8:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए

0: जनादेश 2026।
1: संसदीय कार्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया है कि विपक्षी दल सरकारी एजेंसियों, निर्वाचन आयोग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और मीडिया पर लगातार हमले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष अब न्यायपालिका को भी निशाना बना रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि इन दलों को ये एहसास नहीं है कि वे देश के लोकतंत्र की नींव पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की जनता इन दलों को ऐसा सबक सिखाएगी जो वे कभी नहीं भूल सकेंगे। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। आग लगने की घटना की जानकारी मिलने के बाद आग बुझाने के लिए 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सुबह 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया।
2: इमीडिएटली हमारी गाड़ियां यहां पे पहुंची और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और फायर फाइटिंग ऑपरेशन साइमल्टेनियसली हमने स्टार्ट करा। फ्रंट साइड से हमने अपने स्पेशलाइज्ड व्हीकल, लैडर्स, फायर इक्विपमेंट्स, कटर्स वगैरह डिप्लॉय करके आगे से टोटल जो है 15 व्यक्तियों को यहां से रेस्क्यू करा। टोटल 9 इसमें चार्ड बॉडीज रिकवर करी जो कि दिल्ली पुलिस को हैंड ओवर कर दी गई।
1: उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आग लगने की दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार इस मुश्किल घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ है। उन्होंने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है। स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG आज आयोजित की जा रही है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू होगी और शाम 5 बजे तक चलेगी। परीक्षा केंद्र में अंतिम प्रवेश दोपहर 1:30 बजे तक होगा। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मूल के विद्यार्थी भी आज स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। दुबई और शारजाह में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा की निगरानी दुबई में भारत का महावाणिज्य दूतावास कर रहा है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच ओपेक प्लस समूह के 7 देश जून में तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, अल्जीरिया, कजाकिस्तान, रूस और ओमान अगले महीने प्रतिदिन लगभग 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाएंगे। भू राजनीतिक संकट और संयुक्त अरब अमीरात के समूह से अलग होने के बाद ये लगातार 3रा महीना होगा जब ओपेक प्लस देश तेल का अधिक उत्पादन करेंगे। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। ये प्रेस की स्वतंत्रता के प्रयासों को प्रोत्साहित करने और विकसित करने तथा विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन करने का अवसर है। इस वर्ष का विषय है शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Abhishek Mukhopadhyay. Counting of votes for the assembly elections held in West Bengal, Kerala, Tamil Nadu, Assam and the Union Territory of Puducherry will be taken up tomorrow morning. In Tamil Nadu, a total of 10,545 counting personnel will be deployed for counting duty, supported by 4,624 micro-observers. A correspondent reports that 234 counting observers, one for each assembly constituency, will oversee the proceedings and ensure strict adherence to extant instructions of the commission. In West Bengal, election officials said that all arrangements are in place at 77 counting centres across the state, with multi-layered security in place to ensure transparency. Union Parliamentary Affairs Minister and Senior BJP leader Kiran Riju alleged that the all opposition parties have continuously attacked the government agencies, election commission, electronic voting machines, media, and now targeting the judiciary. In a social media post, Mr. Riju said, these parties don't realize that they are attacking the core of the country's democracy. He further added that people of the country will give them a befitting reply and teach them a lifetime lesson. The Supreme Court of India has declined to interfere with the Election Commission's decision to appoint only central government employees as counting supervisors in West Bengal elections. A bench comprising Justice P.S. Narasimha and Justice Joymalia Bakchi directed that the Commission's guidelines must be strictly followed. The ruling comes as a setback for the Trinamool Congress, which had challenged the move. Union Civil Aviation Minister K. Ram Mohan Naidu today visited the Uday Aqua Industry at Moolapalem village in Sompeta Mandal of Srikakulam district, where projects have been implemented under the National Fisheries Development Board.

जी दोस्तों, आप गज़लें समाप्त कर रहे हैं और ये गज़ल आपने सुनी सुरेश वाडकर की आवाज़ में। ये था रविंद्र जैन का कलाम। और आइए अब सुनते हैं अनूप जलोटा की आवाज़ में ये गज़ल।

जी दोस्तों, आप गज़लें समाप्त कर रहे हैं और ये था इसरार अंसारी का कलाम अनूप जलोटा की आवाज़ में। अब अगली गज़ल आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ों में। ये है दानिश अलीगढ़ी का कलाम।

0: लगता है कि तुम हो। जी समीन, ये थे जानिसार अख्तर के बोल। भूपेंद्र की आवाज़ थी। हमारी आवाज़ आप तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है, मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर। अब हमारे यहाँ से खबरें नष्ट होंगी।
1: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। 12:30 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं बसारत गुल। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मुनशियात के खिलाफ लड़ाई में नौजवानों, सिविल सोसाइटी और मकामी रहनुमाओं के इज्तिमाही और सरगर्म शिरकत पर जोर दिया है। आज TRC ग्राउंड से नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत एक बड़ी पदयात्रा की क्यादत करते हुए मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर से इस बिद्दत का खात्मा करने के लिए इंतजामिया के अजम का यादा किया। उन्होंने कहा कि मुनशियात के गैर कानूनी कारोबार और इस्तेमाल में मुलविस किसी भी शख्स के खिलाफ कतन बर्दाश्त न करने की पॉलिसी इख्तियार की गई है।
2: नशे को जड़ से समाप्त करने की कसम, ये सिर्फ सरकारी ताकत की घोषणा नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर वासियों की अधिक इच्छा शक्ति से उत्पन्न हुई है, जिन्होंने अब ऐलान कर दिया है कि अब बहुत हो चुका, अब नहीं होगा। और आज मैं श्रीनगर की इस मिट्टी से कश्मीर संभाग के लिए भी यही कहने आया हूँ कि हम इसे किसी कीमत पर वापस ले करके रहेंगे। अवाम के दुश्मनों ने नार्को टेररिज्म के द्वारा नागरिकों पर जो प्रहार किया है, उसका मुकाबला करने के लिए जहां हमारी पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस प्रशासन है, उसमें सबसे अचूक हथियार अवाम की भागीदारी साबित होगी।
1: इस पदयात्रा में तालिबे इल्मों से लेकर सरकारी मुलाजमीन और आम लोगों ने बड़ी तादाद में अपनी सरगर्म शिरकत दिखाई। सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंचल गर्ग ने पदयात्रा में अपनी सरगर्म शिरकत दिखाने पर तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए आम लोगों से लेकर सलामती एजेंसियों तक सबका रोल अपनी अपनी जगह पर अहम है।
3: जो मेगा पदयात्रा थी, ऑनरेबल LG साहब ने जिसको लीड किया, उसमें आने के लिए मैं हमारे कश्मीर के सभी जिलों से जो पार्टिसिपेंट्स आए थे, हमारे मीडिया के साथ ही आए थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। आज कश्मीर में भी ऑनरेबल LG साहब ने श्रीनगर में आइकॉनिक जो हमारा घंटा घर है लाल चौक पे, वहां पर सिग्नेचर कैंपेन में शिरकत की है और आज से आगे पूरे वादी में भी डिफरेंट जिलों में इवेंट्स होंगे। और मेरी आप सबसे यही अपील रहेगी और आपकी जानिब से आवाम को भी यही अपील रहेगी कि सभी लोग इस मुहिम का, नशा मुक्त अभियान का हिस्सा बने।
1: पदयात्रा में शिरकत करने वाले नौजवानों ने भी मुनशियात के खिलाफ अपना किरदार अदा करने का अहद करते हुए अपने तासुरात का इजहार कुछ इस तरह से किया।
4: पुराने करीम के अंदर भी जो है नशे की ममानियत आई है और ये एक ऐसी चीज है कि ये नस्लों को खत्म कर देती है, लिहाजा हर इंसान को चाहिए कि वो यहाँ से इसको अपने माशरे से निकाल दे ताकि माशरा पाक और साफ हो जाए।
5: हम सब के लिए और नौजवान यूथ के लिए ये बहुत ही अच्छा कदम है और मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस के साथ साथ हम सबको यूनाइट होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए हम सबको कि इस जहर के खिलाफ हमें लड़ना चाहिए।
1: इम्तिहानात से मुतल्लिक कौमी एजेंसी NTA की तरफ से आज साल

0: 2026 का नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट मुनाकिद किया जा रहा है। इस इम्तिहान में मुल्की सतह पर 22 लाख से ज्यादा तालब इल्म शिरकत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से भी 1676 सीटों के लिए करीब 50,000 उम्मीदवार इस इम्तिहान में शरीक हो रहे हैं। इस मकसद के लिए मुनासिब तादाद में इम्तिहानी मराकज कायम किए गए हैं, जहां इम्तिहान का ऐसा इनेकाद यकीनी बनाने के लिए तमाम जरूरी तैयारियां और इंतजाम किए गए हैं। वाजह रहे कि इम्तिहान तिबी ताली में अंडर ग्रेजुएट कोर्स में दाखिला लेने के लिए 2019 से हर साल मुनाकिद किया जाता है। ये इम्तिहान दिन में 2 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे इख्तिताम पजीर होगा। इत्तला-ओ नशरियात की वजारत ने एक मकबूल नगमा निगार, अदीब और माहिर मुअस्सलात प्रसन्न जोशी को प्रसार भारती का चेयरमैन मुकर्रर किया है। उनकी तकरीरी पर इत्तला-ओ नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि जोशी एक ऐसे मुनफरिद तख्लीकी शख्सियत हैं जो एडवर्टाइजिंग, अदब, फन और सिनेमा से तजुर्बा याफ्ता है। वजीर मौसम ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि उनकी ज़ेर क़यादत प्रसार भारती में एक नई तवानाई पैदा होगी। आज सहाफत की आज़ादी का आलमी दिन है। आज के दिन दुनिया भर में आज़ाद सहाफत को यकीनी बनाने के लिए किए जा रहे इकदाम को उजागर किया जाता है। साथ ही मीडिया के उन अफराध को भी याद किया जाता है जिन्होंने पूरी दुनिया में अपने पेशेवराना फराइज की अंजामदही के दौरान अपनी जानों का नजराना पेश किया है। वाजह रहे कि एक पुरअमन समाज वजूद में लाने में आज़ाद सहाफत और सहाफी की काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। वर्ल्ड प्रेस डे के सिलसिले में आज जम्मू कश्मीर में भी मुख्तलिफ सहाफती अंजुमनों की तरफ से कई प्रोग्रामों का अहतमाम है। जिला इंतजामिया भांडीपुरा ने आवाम से अपील की है कि वो मर्दमशुमारी 2027 में भरपूर हिस्सा लें और मुलगीर मर्दमशुमारी के हमवार और कामयाबी निकात के लिए सेल्फ एनोमिनेशन सहूलत का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।
1: आदाब आकाशवाणी श्रीनगर खबरन हुन बुलेटिन है चिज रऊफ अहमद। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा नशस खिलाफ लड़ाई में नौजवानों, सिविल सोसाइटी के मकामी रहनुमान इज्तिमाई सरगर्म शिरकत पर जोर दियुतमुत। आज टीआरसी ग्राउंड श्रीनगर पे नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान तहत अके बज पदयात्राई हज क्यादत कर दु मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर पे आम बितुक नियाल गालने बापत इंतजामिया किस अजमस फ्यूर। तमो वो नश किस गैर कानूनी कारोबार इस्तेमाल मज मुलवस कंस तख्स खिलाफ हरगिज त बर्दाश्त न कर पॉलिसी पान आम
2: नशे को जड़ से समाप्त करने की कसम। ये सिर्फ सरकारी ताकत की घोषणा नहीं है बल्कि जम्मू कश्मीर वासियों की अधिक इच्छा शक्ति से उत्पन्न हुई है, जिन्होंने अब ऐलान कर दिया है कि अब बहुत हो चुका, अब नहीं होगा। और आज मैं श्रीनगर की इस मिट्टी से कश्मीर संभाग के लिए भी यही कहने आया हूँ कि हम इसे किसी कीमत पर वापस ले करके रहेंगे। आवाम के दुश्मनों ने नार्को टेररिज्म के द्वारा नागरिकों पर जो प्रहार किया है उसका मुकाबला करने के लिए जहां हमारी पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस प्रशासन है उसमें सबसे अचूक हथियार आवाम की भागीदारी साबित होगी।
1: अथ पदयात्राई मज तलब इलमों सरकारी मुलाजमों तो आम लूको बड़ी तदाद में शिरकत। सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्गन पदयात्राई मज पे सरगर्म शिरकत हावस पर तमाम लोकन हुन शुक्रिया करान वोन यह मुहिम कामयाब बनान बापत आम लूकन पे सलामती एजेंसियन तम सारे हुन रोल पन्नी पन्नी जाए अहम।
3: जो मेगा पदयात्रा थी ऑनरेबल एलजी साहब ने जिसको लीड किया उसमें आने के लिए मैं हमारे कश्मीर के सभी जिलों से जो पार्टिसिपेंट्स आए थे हमारे मीडिया के साथ ही आए थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। आज कश्मीर में भी ऑनरेबल एलजी साहब ने श्रीनगर में आइकॉनिक जो हमारा घंटा घर है लाल चौक पे वहाँ पर सिग्नेचर कैंपेन में शिरकत की है और आज से आगे पूरे वादी में भी डिफरेंट जिलों में इवेंट्स होंगे और मेरी आप सबसे यही अपील रहेगी और आपकी जानिब से आवाम को भी यही अपील रहेगी कि सभी लोग इस मुहिम का नशा मुक्त अभियान का हिस्सा बने।
1: पदयात्राई में शिरकत करने वाले नौजवानों के बई नशस खिलाफ पन किरदार नखवालन का अहद करान पन तोसरात यमे आई।
4: कुरान करीम के अंदर भी जो है नशे की ममानियत आई है और ये एक ऐसी चीज है कि ये नस्लों को खत्म कर देती है, लिहाजा हर इंसान को चाहिए कि वो यहाँ से इसको अपने माशरे से निकाल दे ताकि माशरा पाक और साफ हो जाए।
5: हम सब के लिए और नौजवान यूथ के लिए ये बहुत ही अच्छा कदम है और मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस के साथ साथ हम सबको यूनाइट होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए हम सबको कि इस जहर के खिलाफ हमें लड़ना चाहिए।
1: امتحان متعلق قومی ایجنسی این ٹی اے طرف از وری زساشتوک نیٹ یعنی نیشنل ایلیجبلٹی کم اینٹرنس ٹیسٹ منعقد کرنا ات امتحان مجھے ملکی سطرس پر زتو لچھ کھت زیادہ طالب علم شرکت کران جموں کشمیر پہ سپدن اکثر شاہ تو شست

0: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
1: स्टेट इलेक्शन कमीशन जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से जरूरी सूचना। अगर आप 1 अप्रैल 2026 को 18 साल के हो चुके हैं मगर अभी तक पंचायत इलेक्टोरल रोल्स में रजिस्टर नहीं हुए हैं, या फिर आपका नाम या आपसे जुड़ी कोई भी जरूरी जानकारी दर्ज नहीं है या उसमें बदलाव की जरूरत है, तो आज ही अपने पंचायत सेक्रेटरी यानी ग्राम सेवक से संपर्क करें।
2: नई एनरोलमेंट के लिए फॉर्म PER2A, मौजूदा नाम हटवाने के लिए फॉर्म PER2B, करेक्शन के लिए फॉर्म PER2C और किसी भी पंचायत हल्के में ट्रांसपोज के लिए फॉर्म 2D का इस्तेमाल करें। आप स्टेट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट secgk.nic.in पर जाकर भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। अपना फॉर्म और अपने जरूरी दस्तावेज अपने ग्राम सेवक के पास दर्ज करवाएं।
1: पंचायत इलेक्टोरल रोल का ड्राफ्ट पब्लिश होने की तारीख 27 मार्च 2026 है और 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 और 26 अप्रैल को सभी पोलिंग बूथ लोकेशन पर स्पेशल कैंप्स लगाए जाएंगे, जिसके माध्यम से पंचायत रोल में एनरोलमेंट के लिए आपकी पूरी सहायता की जाएगी।
2: ERO यानी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर द्वारा किसी भी क्लेम या ऑब्जेक्शन की सुनवाई 8 मई तक एवं फाइनल पंचायत इलेक्टोरल रोल 2026 15 मई 2026 को पब्लिश किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर की वेबसाइट पर विजिट करें।
1: इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
3: سمن تو شو کشر موسیقی بوزان تو ولو کلام پی این کال سائل بوزو فنکارا چھ راج بیگم

0: मीडियम वेव 200 हर्ट्ज़ मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी श्रीनगर है। समीन एक बजा चाहता है। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी और अंग्रेजी खबरों के बुलेटिन नष्ट करेंगे, जरा सा इंतजार कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। पर्यवेक्षकों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़, मतदाताओं को डराने धमकाने और मतदान नियमों का उल्लंघन जैसी गंभीर अनियमितताओं की सूचना दी है। कई केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बटन पर जानबूझकर काला टेप लगाया गया था। अनधिकृत लोगों का मतदान केंद्रों में प्रवेश और दूसरों का वोट डालने की भी घटनाएं सामने आई हैं। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां कर ली हैं। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती कल कड़ी सुरक्षा के बीच 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। तमिलनाडु में 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना के लिए 10,545 कर्मी तैनात किए जाएंगे।
2: जनादेश 2026।
3: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ।
2: मतगणना की पल पल की खबर, संवाददाताओं से ताज़ा हाल और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का सटीक विश्लेषण।
3: कल सुबह 8:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
2: जनादेश 2026।
1: दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद आग बुझाने के लिए 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सुबह 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया।
4: इमीडिएटली हमारी गाड़ियां यहां पे पहुंची और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और फायर फाइटिंग ऑपरेशन साइमल्टेनियसली हमने स्टार्ट करा। फ्रंट साइड से हमने अपने स्पेशलाइज व्हीकल, लैडर्स, फायर इक्विपमेंट्स, कटर्स वगैरह डिप्लॉय करके आगे से टोटल जो है 15 व्यक्तियों को यहां से रेस्क्यू करा। टोटल 9 इसमें चार्ड बॉडीज रिकवर करी जो कि दिल्ली पुलिस को हैंड ओवर कर दी गई।
1: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आग लगने की दुखद घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधु ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार इस मुश्किल घड़ी

में प्रभावित परिवारों के साथ है। उन्होंने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जा रही है। संसदीय कार्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया है कि विपक्षी दल सरकारी एजेंसियों, निर्वाचन आयोग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और मीडिया पर लगातार हमले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष अब न्यायपालिका को भी निशाना बना रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि इन दलों को ये एहसास नहीं है कि वे देश के लोकतंत्र की नींव पर हमला कर रहे हैं। श्री रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में 1975 में देश पर इमरजेंसी थोपी गई। कांग्रेस सरकार में संवैधानिक पदों और एजेंसियों के शीर्ष पद पर सीधे सरकार के स्तर से नियुक्ति की जाती थी, जबकि अब ये नियुक्तियां समितियों द्वारा की जाती हैं। श्री रिजिजू ने कहा कि देश की जनता कांग्रेस पार्टी की हकीकत जानती है और इन दलों को ऐसा सबक सिखाएगी जो वे कभी नहीं भूलेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्री से विकसित बिहार के लक्ष्य को साकार करने पर चर्चा हुई। श्री चौधरी ने बताया कि रेल मंत्री से मुलाकात में रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, बेहतर रेल संपर्क और बिहार के समग्र विकास में तेजी लाने पर विचार विमर्श हुआ। स्नातक चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी आज आयोजित की जा रही है। परीक्षा दोपहर 2 बजे शुरू होगी और शाम 5 बजे समाप्त होगी। परीक्षा केंद्र में अंतिम प्रवेश दोपहर 1:30 बजे तक होगा। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मूल के विद्यार्थी भी आज नीट परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। दुबई और शारजाह में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा की निगरानी दुबई में भारत का महावाणिज्य दूतावास कर रहा है। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। ये प्रेस की स्वतंत्रता के प्रयासों को प्रोत्साहित करने और विकसित करने तथा विश्व स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन करने का अवसर है। इस वर्ष का विषय है शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।

0: समय ना आप समाप्त कर रहे थे मगरबी मौसीकी का प्रोग्राम संडे रिक्वेस्ट शो। हमारी आवाज़ आप तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। समय 1:50 हो रहे हैं। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू और अंग्रेजी खबरों के बुलेटिन नष्ट करेंगे, जरा सा इंतज़ार कीजिए।
1: ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं असदुल्ला। चार रियासती असेंबलियों और मरकज के जेर इंतजाम एक इलाके के लिए कल होने वाली वोटों की गिनती के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चुनाव कमीशन ने मगरबी बंगाल में फाल्टा असेंबली हलके के सभी 285 पोलिंग स्टेशनों में दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया है। पोलिंग इस माह की 21 तारीख को होगी। दिल्ली के विवेक विहार में भयानक आग लगने के वाकये में 9 अफराद हलाक हो गए। मगरबी एशिया में जारी लड़ाई के दौरान ओपेक प्लस ममालिक जून में तेल की पैदावार से मुतालिक अपने निशानों में इजाफा करने पर उसूली तौर पर रजामंद हो गए हैं। आज दुनिया भर में प्रेस का आलमी दिन मनाया जा रहा है और IPL क्रिकेट में आज से पहर सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब खबरें तफसील से। मगरबी बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, आसाम और मरकज के जेर इंतजाम इलाके पुदुचेरी में हुए असेंबली चुनाव के लिए वोटों की गिनती कल सुबह शुरू होगी। आसाम में असेंबली चुनाव के लिए वोटों की गिनती के सिलसिले में सभी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। सभी 126 नशिस्तों के लिए वोटों की गिनती सुबह 35 अजला के 40 गिनती मराकज में होगी और इसके लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। कुल 59 खवातीन समेत 722 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। आसाम में 9 अप्रैल को वोट डाले गए थे और वहां 85.96% पोलिंग हुई थी। मगरबी बंगाल में असेंबली चुनाव के लिए वोटों की गिनती 77 मराकज में होगी। तमिलनाडु में गिनती के फराइज अंजाम देने के लिए 10,545 गिनती के अमले को तैनात किया जाएगा, जिन्हें 4,624 माइक्रो मुशाहिदीन का ताआवुन हासिल होगा। हमारे नामा निगार ने इत्तला दी है कि 234 में से हरेक असेंबली हलके के लिए एक मुशाहिद इस कार्रवाई का निगरानी करेगा और कमीशन की हिदायत पर सख्ती से अमल को यकीनी बनाएगा। पुदुचेरी में असेंबली चुनाव की गिनती के लिए सभी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं और सिक्योरिटी और निगरानी के लिए मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। केरलम में असेंबली चुनाव के लिए वोटों की गिनती के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सीनियर अहलकारों ने केरलम में 140 गिनती मराकज में तैयारियों का हतमी दौर का जायजा लिया। वोटों की गिनती बिला रुकावट अमल को यकीनी बनाने के लिए गिनती मराकज के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। चुनाव कमीशन ने जुनूबी 24 परगना जिले फाल्टा असेंबली हलके में वोटिंग के तमाम अमल को मनसूख करने के गैर मामूली इकदाम किए हैं। मुआविन बूथों समेत सभी 285 पोलिंग बूथों में इस माह की 21 तारीख को दोबारा चुनाव कराए जाएंगे। वोटों की गिनती 24 मई को होगी।

0: दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर तरनजीत सिंह संधू और वजीरे आला रेखा गुप्ता ने आज सुबह विवेक विहार में आग लगने के अफसोसनाक वाकये में हुए जानी नुकसान पर रंजो गम का इजहार किया है। कौमी राजधानी में आग लगने के इस वाकये में 9 अफराद हलाक हुए हैं। मीडिया के अफराद से बातचीत करते हुए फायर ब्रिगेड के अफसर मुकेश वर्मा ने बताया कि आग लगने का वाकया एक 4 मंजिला इमारत के कुछ फ्लोर में पेश आया। उन्होंने कहा कि बचाव और आग बुझाने की कार्रवाई के दौरान इमारत से 15 अफराद को बचा लिया गया है।
1: इमीडिएटली हमारी गाड़ियां यहां पे पहुंची और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन और फायर फाइटिंग ऑपरेशन साइमल्टेनियसली हमने स्टार्ट करा। फ्रंट साइड से हमने अपने स्पेशलाइज व्हीकल, लैडर्स, फायर इक्विपमेंट्स, कटर्स वगैरह डिप्लॉय करके आगे से टोटल जो है 15 व्यक्तियों को यहां से रेस्क्यू करा। टोटल 9 इसमें चार्ड बॉडीज रिकवर करी जो कि दिल्ली पुलिस को हैंड ओवर कर दी गई।
0: मगरबी एशिया में जारी लड़ाई के दौरान ओपेक प्लस ममालिक जून में तेल की पैदावार से मुतालिक अपने अहदाफ में इजाफा करने पर उसूली तौर पर रजामंद हो गए हैं। खबरों से मालूम होता है कि 7 ओपेक प्लस मुल्कों ने अगले माह तेल की पैदावार के अहदाफ में तकरीबन 1,88,000 बैरल योमिया तक का इजाफा करने से इत्तेफाक कर लिया है। मुत्तहिदा अरब इमारात UAE के ओपेक से अलायदा होने और मगरबी एशिया में जारी बहरान के दौरान ये मुसलसल तीसरा माहाना इजाफा किया गया है। UAE के ओपेक ग्रुप से अलग होने के बाद अब ओपेक प्लस में ईरान समेत कुल 21 रुकन ममालिक हैं। पिछले हफ्ते UAE ने ओपेक से अलायदा होने का ऐलान किया था। आज दुनिया भर में प्रेस की आज़ादी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन प्रेस की आज़ादी के हक में इकदामात की हौसला अफजाई और फरोग देने के साथ साथ दुनिया भर में प्रेस की आज़ादी की सूरत हाल का जायजा लेने का मौका फराहम करता है। इस साल प्रेस की आज़ादी के आलमी दिन का मौजू है पुरअमन मुस्तकबिल की तशकील। इस साल ये दिन इजहार राय की आज़ादी की दोबारा तौसीक करने और सहाफत, टेक्नोलॉजी, खुसूसन मसनूई ज़हानत AI और इंसानी हकूक से वाबस्ता इदारों को ऐसे अमली तरीक़ेकार पर यकजा करने का अहम मौका फराहम करता है जिनके ज़रिए मुस्तकबिल में मालूमाती निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाया जा सके। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पार्लियामानी उमूर के मरकजी वजीर और BJP के सीनियर लीडर किरण रिजिजू ने इल्ज़ाम लगाया है कि अपोजिशन की सभी पार्टियां सरकारी एजेंसियों, चुनाव कमीशन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और मीडिया को लगातार तनकीद का निशाना बनाने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं और वो अब अदलिया को भी निशाना बना रही हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब रिजिजू ने कहा कि इन पार्टियों ने ये नहीं सोचा कि वो मुल्क की जमहूरियत के अहम इदारों को तनकीद का निशाना बना रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क के अवाम इन्हें करारा जवाब देंगे और ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो उम्र भर याद रखेंगे। मुत्तहिदा अरब इमारात में भारतीय तलबा आज दुबई और शारजा के इम्तिहानात के मराकज में नीट UG 2026 कौमी अहलियती और दाखिले के इम्तिहानात दे रहे हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जरिए पेन और पेपर का ये इम्तिहान मुत्तहिदा अरब इमारात के वक्त के मुताबिक दोपहर 12:30 बजे से 3:30 बजे तक चलेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दुनिया भर में बदतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले एक्सचेंज के तौर पर उभरा है। ऐसा दरामदशुदा तवानाई हर मुल्क के जबरदस्त इन्हिसार के सबब हुआ है। आसमान को छूती लागत और दरामदात में दरपेश मुश्किलात की वजह से मुल्क की नाजुक बैरूनी हालत नाकाबिले बर्दाश्त दबाव पड़ रहा है। मगरबी एशिया बहरान के दौरान अगर तेल की आलमी कीमतों में इजाफा जारी रहता है तो पाकिस्तान की मुश्किलात से 2-4 मईशत दोहरे हिंदसे के इफरात जर की गिरफ्त में रहेगी। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इन बयान की मजम्मत की है जिसमें ईरानी जहाजों के जरिए मगरबी जहाजों को जब्त किए जाने को बहरी कज़ाकी करार दिया गया है। बकाई ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैन अल-अक़वामी समुद्री आमदोरफ्त के खिलाफ उनकी कार्रवाइयों की मुजरिमाना नौईयत का एक बराह रास्त और काबिल मजम्मत एतराफ़ है। इस्माइल ने बैन अल-अक़वामी बिरादरी, अक़वामे मुत्तहिदा के मेंबर मुल्कों और अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से अपील की है कि वो इस तरह के बैन अल-अक़वामी कानून की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जियों को मामूल का बताने को सख्ती से मुस्तरद करें। सुप्रीम कोर्ट ने مغربی بنگال کے چناؤں میں ووٹوں کی گنتی کے سپروائزرز کے طور پر صرف مرکزی حکومت کے ملازمین کو تقرر کرنے کے چناؤ کمیشن کے فیصلے میں مداخلت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ جسٹس پی ایس نرسمہا اور جسٹس جوائے مالیا باغچی پر مشتمل ایک بینچ نے ہدایت دی ہے کہ کمیشن کے رہنما خطوط پر سختی سے عمل درآمد کیا جانا چاہیے۔ اس فیصلے کو ترنمول کانگریس کے لیے ایک دھچکے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جس نے اس قدم کو چیلنج کیا ہے۔ آئی پی ایل کرکٹ میں آج دو میچز کھیلے جائیں گے۔ سہپہر 3:30 بجے حیدرآباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں سن رائزرز حیدرآباد کا مقابلہ کولکاتہ نائٹ رائڈرز سے ہوگا، جبکہ دوسرے میچ میں شام 7:30 بجے احمدآباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں میزبان گجرات ٹائٹنز کا سامنا پنجاب کنگز سے ہوگا۔ کل رات چنئی کے ایم اے چدمبرم اسٹیڈیم میں چنئی سپر کنگز نے ممبئی انڈینز کو 8 وکٹ سے ہرا دیا۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ 4 ریاستی اسمبلیوں اور مرکز کے زیر انتظام ایک علاقے کے لیے کل ہونے والی ووٹوں کی گنتی کے لیے سبھی تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں۔ چناؤ کمیشن نے مغربی بنگال میں فالٹا اسمبلی حلقے کے سبھی 285 پولنگ اسٹیشنوں میں دوبارہ پولنگ کا حکم دیا ہے۔ پولنگ اس ماہ کی 21 تاریخ کو ہوگی۔ دلی کے وویک وہار میں بھیانک آگ لگنے کے واقعے میں 9 افراد ہلاک ہو گئے۔ مغربی ایشیا میں جاری لڑائی کے دوران اوپیک پلس ممالک جون میں تیل کی پیداوار سے متعلق اپنے اہداف میں اضافہ کرنے پر اصولی طور پر رضامند ہو گئے ہیں۔ آج دنیا بھر میں پریس کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج سے پہر سن رائزرز حیدرآباد کا مقابلہ کولکاتہ نائٹ رائڈر سے ہوگا۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔

दोस्तों, ये था दो रास्ते फिल्म का नगमा। आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मौसीकी थी और सदाबहार आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की थी। आइए अब आपको आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में मेरे सनम फिल्म का नगमा सुनवाते हैं। मजरू ने इसके बोल लिखे हैं और ओपी नायर की मौसीकी है।

0: दोस्तों आप फिल्मी नगमे समाप्त कर रहे थे। ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर। पेश है शोबे खबर की पेशकश, प्रोग्राम नई मंजिलें।
1: रीजनल न्यूज यूनिट आकाशवाणी श्रीनगर की पेशकश नई मंजिलें, जम्मू कश्मीर में जारी मरकजी फ्लैगशिप स्कीमों और तरक्याती प्रोग्रामों से मुतलिक रिपोर्ट्स और इंटरव्यूज पर मबनी प्रोग्राम नई मंजिलें।
2: प्रोग्राम नई मंजिलें का ताजा शुमारा लेकर आपका मेजबान शेख तजम्मुल हाजिर है। समीन, हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी NIT श्रीनगर की ग्रीनोवेटर इनक्यूबेशन फाउंडेशन की जानिब से जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले 10 स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग को मंजूरी दे दी गई। ग्रीनोवेटर इनक्यूबेशन फाउंडेशन दरअसल टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप्स को अपने आइडियाज को हकीकी रूप देने की खातिर माली इमदाद फराहम करती है और इस फाउंडेशन की जानिब से अब तक कई स्टार्टअप्स को इस तरह का माली सपोर्ट फराहम किया जा चुका है। इस फाउंडेशन के कामकाज और इसके स्टार्टअप्स को फराहम किए जाने वाले माली सपोर्ट से मुतल्लिक शोबे खबर आकाशवाणी श्रीनगर के सरबरा तारिक राथर ने फाउंडेशन के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर साद परवेज के साथ खुसूसी बातचीत की। आइए सुनते हैं।
3: डॉक्टर साद परवेज साहब, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर में NIT में जो ग्रीनोवेटर इनक्यूबेशन फाउंडेशन जो है, इसकी तरफ से आज की तारीख में जो हम देखते हैं 10 इमर्जिंग स्टार्टअप्स को उनके लिए फंडिंग दिया गया या उनकी एनकरेजमेंट के लिए, किस तरह का प्रोग्राम आपकी तरफ से GIF की तरफ से शुरू किया गया है?
4: ये जो अभी हमने 10 स्टार्टअप्स को इग्निशन ग्रांट दिया है, इसका बेसिक पर्पस ये है कि जो आइडिया जनरेटर्स हैं, जिनके पास बहुत ही अच्छा प्रॉमिसिंग आइडियाज हैं, उन आइडिया जनरेटर्स को हम एक स्टार्टअप का एक रास्ता दिखाएं और वी हैव टेकन देम एज स्टार्टअप्स एट GIF NIT श्रीनगर। इनकी जर्नी शुरू हो गई है। जनरली हम इसको जर्नी फ्रॉम माइंड टू मार्केट कहते हैं, बिकॉज दे हैव आइडियाज, इनके अपने आइडियाज हैं, वो आइडियाज जिनमें हमको बिजनेस का एक स्कोप लगता है। इफ यू डेवलप दोस आइडियाज, बेसिकली ITBI में हम जो आइडियाज डेवलप करते हैं अंडर दिस स्कीम, वो टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड हैं। सो इनके पास छोटी मोटी टेक्नोलॉजीज हैं जो कल सक्सेसफुली एक प्रोडक्ट की शेप में मार्केट में आएंगी और वी विल लुक दैट दीज प्रोडक्ट्स, दीज न्यू प्रोडक्ट्स कॉज सम डिसरप्शन इन द मार्केट। तो इस डिसरप्शन से एक बिजनेस क्रिएट होगी, रेवेन्यू जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और ये पर्पज है हमारा इन स्टार्टअप को सपोर्ट करने का। तो GIF एक इंक्यूबेशन सेंटर है जो एक स्टार्टअप्स को एक फंडिंग प्रोवाइड करता है, नंबर वन। नंबर टू, इट प्रोवाइड्स देम विद सम नेटवर्किंग, जो भी एक्सपर्ट्स इस एरिया में हैं उनके साथ नेटवर्क करके आइडियाज को रिफाइन करके कंबाइन करके एक फर्दर डेवलप किया जाए, एक शेप दी जाए और ताकि ये स्टार्टअप्स जो हैं ये कल जाकर अपनी बिजनेस एस्टैब्लिश कर सके। नंबर तीन, हम इनको जो टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए होती है, बिकॉज दे हैव द आइडियाज, ये एक रॉ फॉर्म में आइडियाज होते हैं, तो इसको एक टेक्निकल शेप चाहिए होती है। टेक्नोलॉजिकली दीज आइडियाज शुड बी वेरी फिजिबल, उनकी फिजिबल स्टडी करते हैं हम, उनको हैंड होल्ड करते हैं, जो इनको उस आइडिया को या उस प्रोडक्ट को डेवलप करने में टेक्नोलॉजीज चाहिए, मशीन चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, टूल्स चाहिए, वो तमाम हम प्रोवाइड करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है कि इन आइडियाज के लिए जो एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स, जो हमारा इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, विच इज इट्स अ टेक्निकल एकेडमिक यूनिवर्सिटी, इसमें जो एक्सपर्ट्स हैं, से फॉर एग्जांपल कुछ आइडियाज AI रिलेटेड हैं, सो हमारी जो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स हैं वो उनको थोड़ा सा टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड कर सके। और इसमें बहुत अच्छी चीज है कि बिकॉज यू नो हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स के,

0: उनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो वी वुड लाइक टू यू नो एसोसिएट दो स्टूडेंट्स विद दीज स्टार्टअप्स. तो एक यू नो स्टूडेंट अपना जो बीटेक प्रोजेक्ट्स है वो कर सकते हैं और इनका स्टार्टअप का जो प्रोजेक्ट डेवलप करना है वो उनको एक आसानी हो जाएगी. उनको एक जब चार लोग व्हेन फोर माइंड कंबाइन टुगेदर, सो इट्स ऑलवेज अ विन विन सिचुएशन फॉर दैट प्रोडक्ट विच नीड टू बी डेवलप्ड इन द मार्केट. और उसके बाद मार्केटिंग जो सबसे चैलेंजिंग किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए जो सबसे ज्यादा चैलेंज होता है कि मार्केटिंग कैसे करें इसकी. सो वो फैसिलिटी भी हम प्रोवाइड करते हैं. जब आपका एक टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल आ जाती है, वी स्टार्ट अभी जितने भी स्टार्टअप्स हैं इनका टी आर लेवल 2, 3, 4 में है, बट वी वॉन्ट टू टेक टू देम, वी वॉन्ट टू टेक दिस यू नो टी आर लेवल टू द फाइनल लेवल लाइक टी आर 8 और टी आर 9. तो जो मार्केट चैलेंजेस हैं उन मार्केट चैलेंजेस को स्टडी करके हम इनको मार्केट एक्सपर्ट जो हैं हमारे उनके साथ कनेक्ट कराकर ताकि अपनी बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स आराम से अच्छी तरह कर सकें. तो ये इंक्यूबेशन सेंटर इसीलिए होते हैं. वी हैव सो मेनी इंक्यूबेशन सेंटर्स इन द नेशन, और हमारी नेशन में आजकल जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें बहुत से इंक्यूबेशन सेंटर्स काम कर रहे हैं. तो हमारा भी नेशनल इंस्टीट्यूट, हमारा भी ये एक रोल बनता है कि हम कैसे इन स्टार्टअप इकोसिस्टम को एक फर्दर डेवलप करें, जो इनोवेटर्स हैं, आइडिया जनरेटर्स हैं, उनको सपोर्ट करें ताकि यू नो दे बिकम द बीकन ऑफ बिजनेस. ये जो जॉब सीकर्स हैं, इंस्टेड ऑफ जॉब सीकर्स वी वांट टू मेक पीपल जॉब क्रिएटर्स एंड जॉब गिवर्स. सो ये हमारा पर्पस है.
1: समीन, हुकूमत जम्मू कश्मीर सियाहत के शोबे को फरोग देने की गरज से गुज़श्ता चंद बरसों से कुछ नए और इख्तिराई इकदामात करती आ रही है. इन इकदामात के तहत जहां सियाहती मकामात को जाज़िब नज़र बनाया जा रहा है, वहीं इन मकामात पर बुनियादी ढांचे के मैयार को बेहतर करने की तरफ भी खुसूसी तवज्जो दी जा रही है. मानसबल झील, जो कि हमारी सियाहती अहमियत की झीलों में एक अहम मकाम रखता है, के रख रखाव का काम संभालने वाली मानसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी भी इस सिमत में काबिल कदर कोशिशें कर रही है. और अथॉरिटी जहां झील और इसके गिर्दोनवा को जाज़िब नज़र बनाने पर तवज्जो दे रही है, वहीं यहां पर सयाहों के लिए बाकी सहूलियात का भी इंतजाम इंसराम किया जा रहा है. डायरेक्टर न्यूज आकाशवाणी श्रीनगर तारिक रातर ने मानसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी के कामकाज और झील की सैर के लिए आने वाले सयाहों की खातिर दस्तियाब रखी जा रही सहूलियात के ताल्लुक से मानसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर एहसान चश्ती के साथ एक मुफस्सल इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था, जिसका कुछ हिस्सा हम गुज़श्ता प्रोग्रामों में पेश कर चुके हैं. आइए सुनते हैं इस इंटरव्यू का बाकी हिस्सा.
2: तो एहसान साहब, मान लीजिए बाहर से हमारा विजिटर आएगा, टूरिस्ट आएगा, कंट्री से आएगा, इवन फॉरेनर भी आएगा, तो वो जो कम्युनिकेशन पार्ट है उसका, मान लीजिए हमारे पास बुक्स हैं, हमारे पास जो कुछ भी टूल होंगे, ऑडियो विजुअल होगा, ऑडियो रिसोर्स होगा, तो किस तरह से उनको समझाने के लिए, उन तक पहुंचाने के लिए हमारे पास क्या मीडियम है, उनको हम बताएं कि ये है.
3: देखिए, इसके दीज आर एंसिलरी एक्टिविटीज. डेफिनेटली जब कोई एक्टिविटी कहीं पे शुरू होती है तो बाकी जो एंसिलरी एक्टिविटीज भी उसके साथ साथ टेक ऑफ करती हैं. मैं समझ गया आपका इशारा कि इंटरप्रेटर्स हों, टूरिस्ट गाइड्स हों, ट्रांसलेटर्स हों. सर्टनली जब एक एक्टिविटी हो तो फिर उनकी भी जरूरत पड़ती है. और
2: ये हर जगह देखते हैं, ताजमहल जाए वहां भी वैसे ही है.
3: एग्जैक्टली,
2: किसी भी जगह हम जाए.
3: बिल्कुल बिल्कुल. फिर उनका भी एक नीड निकल आता, उनकी जरूरत निकल आती है. और माशाल्लाह यहाँ पर टूरिस्ट गाइड कश्मीर में अच्छे खासे हैं, अच्छे इंटेलिजेंट टूरिस्ट गाइड्स हैं, तो उनकी भी जरूरत निकल आती है. और यही है कि एक चेन रिएक्शन फिर जॉब क्रिएशन का हो जाता है.
2: कोई फिगर हम ले सकते हैं आपसे कि कितने पिछले कई महीनों के अंदर, जब से आपने चार्ज संभाला है या इससे पहले भी, क्या कोई ऐसे फिगर है हमारे पास, कितने विजिटर्स होंगे, फुटफॉल रहा होगा कितना?
3: रफली करीब पिछले साल 2024-25 में करीब करीब 2 लाख के लोग आए. और इस साल हम उम्मीद करते हैं जो फाइनेंशियल ईयर है जो 25-26 में, 2,15,000 से 2,20,000 के करीब.
2: एहसान साहब, लेक का जो जैसे आपने कहा कि कई स्टेप्स ले रहे हैं, मेजर्स ले रहे हैं इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन एक और चीज है जो एक्टिविटी वहां पे होंगी, जो वाटर बेस्ड एक्टिविटी होंगी, जो भी होगा, तो क्या उसके लिए जो हमें जैसे सेफ्टी मेजर्स होते हैं, इसमें हमारे पास वो प्रोफेशनल्स होने चाहिए, खुदा ना खासा कभी कोई हादसा हो जाए या कभी कोई जैसे somebody would drown या somebody would you know इस तरह की चीजें, क्योंकि पानी है, पानी में कोई डूब गया या इस तरह के कोई किश्ती उलट गई, कुछ और हो गया, इसमें किन एजेंसीज के साथ डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक राबिता है या एक तरह का, मतलब यू आर इन सिनर्जी विद दैट अथॉरिटी या विद दैट इंस्टीट्यूशन?
3: देखिए, वाटर बेस्ड टूरिज्म रिक्रिएशनल एक्टिविटीज जो हैं उनका एक स्टैंडर्ड, एक प्रोटोकॉल रहता है
2: जी.
3: एक इंटर डिपार्टमेंटल एसओपी रहता है. इसमें फायर एंड इमरजेंसी सर्विस आता है, इसमें आपका ये एसडीआरएफ आता है, इसमें टूरिज्म का रिक्रिएशन विंग आता है, पुलिस आता है या दूसरे वॉलंटियर ग्रुप्स होते हैं. तो ये एक इंटर डिपार्टमेंटल एक एसओपी

0: एक वुलर विंटेज पार्क है जो कि काफी ज्यादा इन डिमांड और मशहूर है, और इसी तरह से वटलब है, तो वहां पर भी हमारा एक एसेट है, तो वो चीज है। बिसाइड्स हमारे पास अठवतु नाम की एक जगह पे एक हमारा गेस्ट हाउस चलता है जो कि
1: वो आपकी अथॉरिटी में ज्यूरिसडिक्शन
0: में आता है
1: जी,
0: तो जो कि काफी,
1: तो ये भी बड़े नाम है, मतलब, अच्छे नाम है जो टूरिज्म के हवाले से बहुत,
0: जो कि नाले मधुमती के किनारे पे वाकया है, तो उसका भी एक अच्छा खासा फुटफॉल रहता है। तो उस हवाले से जो बांडीपोरा का पोटेंशियल है वो भी काफी ज्यादा है, इल्म अदब और आब के हवाले से वो काफी पुरानी जगह है, मशहूर जगह है, तो उसका भी एक ठीक ठाक पोटेंशियल रहता है जिसको हम और ज्यादा कंसोलिडेट करना चाहें।
1: क्या है आपके वुलर मैनेजमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी में आपकी एज ऑन डेट, व्हाट इज इन योर माइंड, या आपने किस तरह का प्लान शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इस अथॉरिटी के हवाले से, इसकी डेवलपमेंट, यू नो, इसका जो कुछ भी आगे करना होगा, क्या है आपके पे मोटे मोटे तौर बताना चाहेंगे सर?
0: देखिए, लॉन्ग टर्म में ये देखता हूँ कि इट्स ओनली अ विश कि दैट आई वांट टू सी मानसबल एज द एडवेंचर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसमें एक पोटेंशियल है।
1: इसका मतलब क्या है?
0: इसका मतलब है कि ये एक अच्छी जगह बन सकती है जहां पर जो भी टूरिज्म रिक्रिएशनल एक्टिविटी है उनके लिए काफी जरखेज जगह है। यहां बन सकते वाटर एक्टिविटीज भी हैं और माउंटेनियस एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। प्लस इसका जो ऑन द कस्प ऑफ कश्मीर वैली एंड गुरेज जाने वाला जो भी मतलब बंदा होगा वो उसका स्टॉप ओवर बन सकता है। ये जो भी गुरेज का जो ट्रैफिक होगा, टूरिस्ट ट्रैफिक होगा, वो यहाँ उसको हम रोक सकते हैं एक आध दिन के लिए। सोनमर्ग जाने वाले का जो टूरिस्ट का, उसको हम यहाँ हॉल्ट कर सकते हैं। प्लस इसका जो अभी तो एरिया जो है, इसके बियॉन्ड में एक जगह है, अहमसर है, वो भी एक छोटा मोटा लेक है, अच्छा है, साकिन पानी का,
1: पहली बार शायद मैंने भी सुना, बिल्कुल
0: एक अच्छा एक लेक है, छोटा सा ही लेक है, अगेन उसके चश्मे फूटते हैं, तो वो है एक अच्छी जगह जो आप मतलब विजिट कर सकते हैं। प्लस इसके इसके बगल में है मोहंदमर्ग और लालमर्ग, ये शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि जहां ओरल स्टेन आया था और जहां पर एक वक्त के प्राइम मिनिस्टर छुट्टियां गुजारने के लिए आया करते थे, तो ये बिल्कुल इसके बगल में वाकई है। और हम चाहेंगे कि इस अथॉरिटी के तवसुत से और इसके प्लेटफॉर्म के जरिए इसको ग्रेजुअली मुस्तकबिल में उसके जेर असर लाया जाए, और उन दो मुकामात जो कि काफी पहाड़ी मतलब मुकामात दो हैं मगर जिनका हिस्टोरिकली टूरिज्म का बड़ा एक स्कोप रहा है, उनको भी इस मैप पे लाया जाए और उसको भी ताकि तो जो लोगों को उससे मुतारिफ किया जाए और इसका एक टूरिज्म पोटेंशियल इस पूरे इलाके का जो है वो इम्प्रूव हो जाए।
1: एसन साहब, इमीडिएट या हम कहेंगे शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स क्या आपके जहन में, क्या आपने असेसमेंट किया है इस अथॉरिटी के हवाले से?
0: शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स जो भी हैं, वी आर गवर्नमेंट इज टेकिंग केयर ऑफ दैट। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि लेक की सफाई सुथराई जो है वो एक इमीडिएट
1: बहुत इंपॉर्टेंट
0: चैलेंज है, इमीडिएट मेजर टास्क है जिसमें कोई चूक हम नहीं आने दे देंगे, वो तो करेंगे ही करेंगे। लॉन्ग टर्म बेसिस पे फॉर एग्जाम्पल एक इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक प्लान किया हुआ है, हमारे जो इंजीनियरिंग विंग है उन्होंने, और वो हमें बताते हैं कि जो वो मनसूबा है उसमें 2047 तक की नीड्स को भी उन्होंने मतलब कवर किया हुआ है। उसके लिए हम प्रोसेस में हम थे मतलब लैंड एलोकेशन के लिए, और मैं शुक्रगुजार हूँ वहाँ गांधरबल जिला इंतजामिया का, उन्होंने बहुत प्रॉम्प्टली उसके लिए एक तैयाराजी जो है उसको मुशकस किया और वो हैंड ओवर टेक ओवर के प्रोसेस में है। और जो ही ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्लांट कमीशन होगा तो जो सॉलिड वेस्ट का जो भी इशू है मानसबल के गिर्द नावा में वो खत्म हो जाएगा।
1: क्या आप समझते हैं कि रोड कनेक्टिविटी के हवाले से क्या इसमें हम मुतमईन होंगे या मुतमईन हैं कि उसमें कितनी जरूरत है रोड कनेक्टिविटी की, ऑन साइड रोड फैसिलिटीज भी जो डिफरेंट एमिनिटीज होनी चाहिए, क्या वो समझते हैं कि वो हमारी जरूरत है वहां पे?
0: तो मानसबल की एक अच्छी चीज ये है कि ये कनेक्टेड है, इसके जमीनी रास्ते बहुत सारे हैं गांधरबल के थ्रू भी, सुंबल के थ्रू भी, प्लस अब तो बाईपास भी एक दो आए हैं जो कि एक सोनमर्ग को जाता है, जो श्रीनगर बांडीपोर रोड है वो भी वाइडनिंग प्रोसेस में है, और भी जो रास्ते हैं श्रीनगर से गांधरबल तक के तो वो अच्छे हैं, बहुत सारे हैं और वाइडन अप हो रहे हैं, तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत है, बल्कि ये एडवांटेज। एक ही रास्ता नहीं है कि ब्लॉक हो जाए तो क्या करेंगे, एक रास्ता बंद हो दूसरे से जा सकते हैं, दूसरा बंद हो तीसरे से जा सकते हैं, एक तो ये है। जहां तक हमारे एरिया की बात है, वहां हम रिव्यू कर रहे हैं अपने एरिया में हम क्या जो वे साइड फैसिलिटीज है उनको कितना हम इम्प्रूव कर सकते हैं, मगर अभी तक जो हमने प्रिलिमिनरी देखा है रुडिमेंट्री लेवल पे जो हम कहेंगे वो तो ठीक ठाक है, बट हम चाहते हैं कि उसको और ज्यादा इम्प्रूव किया जाए। और हाईवेज में जो चूंकि अब दो जगहों से दो साइड्स पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी रोड वाइडन कर रहे हैं तो हम उसके साथ मतलब टाई अप करके कि वो उनका एरिया कितना आता है वो कब कम्प्लीट करते हैं, तो जो ही वो हाईवेज का प्रोजेक्ट एडवांस स्टेज में आ जाए तो फिर इंशाल्लाह

0: उसके साथ वे साइड फैसिलिटीज भी इन्हांस होंगी और कोई ताकि जो आने वाले सयाह है उनको कोई दिक्कत ना हो।
1: समीन 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आलमी सतह पर इम्यूनाइजेशन या टीकाकारी का हफ्ता मनाया गया। इस हफ्ते के मनाने का मकसद आम लोगों में टीकाकारी की अहमियत को उजागर करके इस हवाले से उनमें बेदारी पैदा करना होता है। पूरे हफ्ते के दौरान जम्मू कश्मीर में भी तरह तरह की सरगर्मियां अंजाम दी गयी। शोबे खबर के सरबरा तारिक राथर ने इस हफ्ते के ताल्लुक से डायरेक्टरेट ऑफ फैमिली वेलफेयर जम्मू कश्मीर में स्टेट इम्यूनाइजेशन अफसर डॉक्टर शाहिद हुसैन के साथ बात की। आइए सुनते हैं।
2: डॉक्टर शाहिद साहब, इम्यूनाइजेशन किन किन डिजीज के लिए 0 से लेकर 14 ईयर्स रखते हैं, 16 ईयर्स रखते हैं, 18 ईयर्स रखते हैं, क्योंकि बच्चों का एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टाइम होता है, इसका जो पीरियड होता है, तो इसमें आप कौन से इम्पोर्टेंट ये जो इम्यूनाइजेशन की जाती है, कौन से डिजीजेज के अगेंस्ट और कौन कौन से वैक्सीन ऐसे होते हैं जो बहुत मैंडेटरी बन जाते हैं आज की तारीख?
3: जैसे पैदाइश से ही ना शुरू, पहली वैक्सीन हम बच्चे को देते हैं वो ओपीवी के ड्रॉप्स होते हैं, बीसीजी की उसको इंजेक्शन लगता है, और सबसे जरूरी जो वक्त के हिसाब से 24 घंटे के बीच में ही देना है, जैसे पैदाइश हुई उसके 24 घंटे में वो हेपेटाइटिस बी है, उससे हम क्या प्रिवेंट कर रहे हैं, जो खुदा ना खास्ता कोई एक जो औरत की हामला औरत उसको अगर हेपेटाइटिस बी की इन्फेक्शन भी होगी तो उस बच्चे को हम उस 24 घंटे के दौरान अगर इंजेक्शन लगाते हैं तो फ्यूचर के लिए, आइंदा के लिए हम उसको प्रिवेंट करेंगे हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन से। दूसरा, हमारा जो ये बीसीजी देने का मकसद ये होता है कि आइंदा उसको आगे की जिंदगी में ट्यूबरक्लोसिस से हम बचाते हैं उसको, टीबी। तीसरा, जो ओपीवी के ड्रॉप्स हैं अभी भी हम शुरू में जो देते हैं और साथ साथ आगे 5 साल तक हम उसको एज अप्रोप्रिएट वो आने वाले वक्त के लिए पोलियो से बचा के रखता है। अब देखिए, पोलियो बेशक मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी कंट्री में तो अब बिल्कुल हम पोलियो फ्री हैं, 2014 से सर्टिफाइड है, लेकिन फिर भी हमारा बिल्कुल जोर है इसके ऊपर। पिछले दिसंबर में 2025 को भी हमने एक कैंपेन करी थी 3 दिन की, आपके थ्रू फिर बताऊं कि अब जून 28 को फिर हम ये कैंपेन करने जा रहे हैं, मतलब हमने अपना गार्ड लोअर नहीं किया है। हम इस चीज को मद्देनजर रखते हैं कि हमारे जो देश है उसके कहीं बॉर्डरिंग कंट्रीज में कहीं ना अभी भी पोलियो के कुछ केसेस पाए जाते हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, या दूर कहीं नाइजीरिया में, तो इस वजह से ट्रैवल इतना ज्यादा कॉमन है, उसको बचाने के लिए अभी भी हम इस मुहिम को चलाए जा रहे हैं और बच्चों को ये ड्रॉप्स वगैरह पिलाते हैं। बाकी रही और बीमारियां, जैसे हमारा डायरिया, जिससे कि जानलेवा पहले ना डायरिया होता, दस्त लगते थे, तो उसके वजह से हमने क्या किया कि रोटा वायरस एक ना वैक्सीन तैयार हुई है वो देते हैं। उसके बाद से अभी तक अभी भी अगर फिगर्स देखी जाती हैं हॉस्पिटल्स में, जो अब एडमिशन्स हैं उस डायरिया की वजह से बिल्कुल ऑलमोस्ट नील हो चुकी है, नहीं हो रही है, वो जानलेवा था बच्चों में। दूसरा, हमारी मीजल्स सबसे इम्पोर्टेंट जो वैक्सीन मीजल्स की है, तो वो हम दे रहे हैं इसको, 9 महीने पे हम वो लगाते हैं, मीजल्स है, रुबेला है, ये वायरल डिजीजेज के लिए हम देते हैं। फिर कुछ बैक्टीरियल डिजीजेज है, डिप्थीरिया है, जैसे गल गोटू हम अपनी जुबान में बोलते हैं, टैटनस हम देते हैं, निमोनिया से बचाव के लिए है, तो सारी की सारी वैक्सीन जो है हमने उसमें हेपेटाइटिस बी हमने बताया आपको, रोटा बताया, निमोकोकल पीसीबी वो वैक्सीन है जो पहले ना अगर प्राइवेट में लगती थी तो काफी महंगी थी, आम तबका उसको अफोर्ड नहीं कर सकता था। आज हमारा अगर वो स्लम में भी स्लम डवेलर है, कोई मजदूर है, उसके बच्चे को भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट लग रही है, और हमने निमोनिया से भी काफी ज्यादा अभी जो हम देखते हैं स्टडीज में कि काफी ज्यादा कम केसेस हुए। तो हमारा हर एक वैक्सीन का एज पर एज अप्रोप्रिएट हमारा फोकस है, हम टाइम टू टाइम हम उसको लगाने की कोशिश करते हैं। आपके मैं एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ अपनी पब्लिक को भी, अब हम जो ट्रैक करने का तरीका है वो भी अब डिजिटल तरीका है। पहले क्या होता था, अभी भी जो है मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड लेके आती थी मदर, और उस पर हम एंट्री करते थे, चली जाते, खुदा ना खास्ता वो कार्ड गुम जाता है, कुछ होता है तो पता नहीं लगता था। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, उसको बोलते हैं यूविन ऐप। उससे क्या होगा, जो बच्चा ड्यू है हमारे सिस्टम में एंटर हुआ है तो उसके पेरेंट्स को SMS जाएगा कि आपका बच्चा फलानी डेट को ड्यू है, काइंडली अपने नियरेस्ट हेल्थ सेंटर में आए लगाएं। जब वो बच्चा आता है, वैक्सीन लगती है, तब भी उसको मैसेज आता है कि आपके बच्चे को लग गया है, नेक्स्ट ड्यू है। तो इससे ये फायदा हुआ कि जो आम मेरी अगर जो ज्यादा पढ़ी लिखी पॉपुलेशन नहीं भी है, उनको भी टाइमली पता लग जाता है कब किसको कौन सी वैक्सीन लगानी है और कहाँ से सर्टिफिकेट भी डाउनलोड करना है। ये बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है, भारत सरकार का भी है और जम्मू कश्मीर सरकार का भी है।
2: डॉक्टर साहब, गर्ल्स के लिए क्या खुसूसी जो है स्पेशल वैक्सीनेशन होती है, कुछ HPV के बारे में जैसे हमने सुना ये

0: इम्पॉर्टेंट इस पे फोकस किया जा रहा है, किस तरह की जो इसमें डिजीजेज हैं जो इन ग्रोन अप गर्ल्स जो एडोलिसेंस की तरफ जा रही हैं, तो उनके लिए किस तरह का सेपरेट एक प्रोटोकॉल बना हुआ है?
1: बहुत अच्छा, ये अपने एक टॉपिक लाया है, एचपीवी वैक्सीन 28 फरवरी को पूरी कंट्री में लॉन्च हुआ था और उसके साथ साथ हमारे जम्मू एंड कश्मीर में भी ये वैक्सीन लॉन्च हुई है। एचपीवी है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये वो वायरस है जो कि बच्चेदानी के मुंह का एक कैंसर करता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट रखी है। ये पहले तो लोग प्राइवेट में लगवाते थे, 10,000 8,000 रुपए की ये वैक्सीन थी प्राइवेट में, ठीक है, लेकिन अब फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे हर एक फैसिलिटी में है। हर उस लड़की को लगेगी जिसकी उम्र 14 साल हो चुकी है और 15 साल के बीच बीच में, 14 और 15 साल के बीच वाली जो लड़कियां हैं, हम उसको ये वैक्सीन वन सिंगल डोज लगा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसको लगाने का ये फायदा है, जो आज हमारे देश में हम जब फिगर्स देखते हैं तो जो लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर जो है ये सेकेंड नंबर पे आता है, पहला ब्रेस्ट कैंसर से है और सेकेंड जो है सर्वाइकल कैंसर है। तो अब सर्वाइकल कैंसर यही एक ऐसा कैंसर है जिसके लिए वैक्सीन बनी हुई है, जिसको लगाने से प्रिवेंट किया जा सकता है। होपफुली वक्त आने के बाद हम देखेंगे हमारी बच्चियों में ये वाले जो कैंसर है इसका इंसिडेंस खत्म हो जाएगा। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट लग रही है, हमारे हर फैसिलिटी पे है। तो मेरी अपील है आपके थ्रू कि वो जो पेरेंट्स जिनकी बच्चियां हैं 14 साल हो चुके हैं, 15वां अभी बर्थडे नहीं सेलिब्रेट किया हुआ है, वो प्लीज आए अपने आंगनवाड़ी सेंटर से रابطہ करें, हमारे हेल्थ सेंटर से रابطہ करें, हमारी आशा वर्कर से रابطہ करें, हम इनको वो वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट लगाएंगे पूरी जेएनके में। 44,612 डोज हम दे चुके हैं और अभी तक एक भी कोई ऐसा ना इंसिडेंट नहीं रिपोर्ट हुआ जिससे पता लगे कि कोई तकलीफ है इस वजह से। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कितना सेफ वैक्सीन है ये, तो इसलिए सेफ है तो लगाना भी जरूरी है। हमारा जो टारगेट है, हम अच्छी स्पीड में चल रहे हैं, आपके थ्रू से मुझे यकीन है कि थोड़ा और आगे तक मैसेज आएगा तो ये हमारी बच्चियां जो है इस वैक्सीन को लगाने से फ्यूचर के लिए सर्वाइकल कैंसर से बच पाएंगी।
0: डॉक्टर साहब, अभी तक जिन लड़कियों ने नहीं लगाया होगा और उनकी उम्र 15 से ऊपर हो गई होगी, दे आर नाउ बियॉन्ड 15 ईयर्स, तो इसका किस तरह से आप उनको सेफ जोन में कैसे ला सकते हैं ताकि उनको इस चीज की जरूरत पड़ सकती है या उनको क्या जरूरत नहीं होगी?
1: देखिए, ये जो बीमारी है ना, ये हर एक जो लड़की है वो बेसिकली इसके डर से रहना चाहिए कि किसी को भी हो सकती है, कॉन्टेक्ट से होगा। अब लेकिन हमारा जो सिस्टम सरकारी गवर्नमेंट ऑर्डर के हिसाब से जो अभी तक है वो सिर्फ और सिर्फ 14 साल और 15 साल के बीच प्लस 3 मंथ का ग्रेस पीरियड है जब तक हम इसको कैंपेन पीरियड में चला रहे हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो रखा है ना, वो देखिए पीछे हम चले, फॉर एग्जांपल 10 साल की, 11 साल की, 12 13 साल की लड़की है, वो तो आती आती आगे आ जाएगी, इस एज ग्रुप में आती जाएगी, लगता जाएगा। लेकिन आप कह रहे हो जो कि लड़कियां इस एज ग्रुप को क्रॉस कर चुकी हैं और उनको किसी वजह से वैक्सीन नहीं लगा पाए, हमारे जो हिदायत हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, जो एसओपीज हैं, उसके मुताबिक गवर्नमेंट सेटअप में तो नहीं लगेगा ये वाली वैक्सीन, लेकिन ये प्राइवेट में कहीं ना कहीं अवेलेबल है। तो मैं तो उन पेरेंट्स को ये बताऊंगा, अगर आपकी बच्ची तो उस एज को क्रॉस कर चुकी है लॉन्च होने से पहले हमारी वैक्सीन, फिर भी आप इसको वैक्सीन लगवाएं किसी नियरेस्ट हॉस्पिटल में या प्राइवेट में कहीं लगता है, प्रोटेक्शन के लिए बहुत जरूरी। आज हम वो जो कहते हैं ना, स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, तो आज हमने ये एफर्ट किया होगा तो हमारी बच्चियां उसे फ्यूचर के लिए बहुत बड़ी, मैं कह रहा हूँ जैसे कि 7 मिनट में हर एवरी 7 मिनट्स एक डेथ हो रही है उस एक फीमेल की, उसको बचाने के लिए हम क्यों ना थोड़ा सा अपना इस तरह से फोकस करें और सेफ्टी प्रोफाइल देखते हुए इस वैक्सीन को लगाएं।
0: डॉक्टर साहब, क्या इससे ये नुकता उभरता है कि ये एचपीवी जो वैक्सीन है ये जरूरी है, मैंडेटरी है, क्या इसके लिए कोई इस तरह के कोई टेस्ट्स होते हैं, इस तरह की इन्वेस्टिगेशंस पहले होंगी उसके बाद ये लगेगा बियॉन्ड 15 ईयर्स में, कह रहा हूँ?
1: अभी तक जो हमारी एज ग्रुप है उसमें भी कोई टेस्ट नहीं करेंगे, जो आगे वाली 15 16 17 की अगर आप बात करें उसमें भी कोई टेस्ट की जरूरत नहीं होती है कि वैक्सीन लगाने के लिए जरूरी है। सिर्फ ये था, ये जो एज ग्रुप रखी है ना, छोटी एज ग्रुप, ये बेसिकली प्री प्यूबर्टल प्यूबर्टल एज ग्रुप है जिसमें इस वैक्सीन का ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। आइंदा जो दूसरे लोग हैं, 20 साल वाले भी लोग प्राइवेट में लगा रहे हैं, 25 साल वाली भी औरत लगा रही है, 30 साल वाले भी लगा रहे हैं, उस स्टेज में वो जो आगे की एज ग्रुप चाहती है फिर उनको आता है स्क्रीनिंग मोड पे जाना है, फिर उनको अपनी स्क्रीनिंग करानी है नियरेस्ट जो अपने सेंटर में गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरा लेना है। तो अपना अगर स्क्रीनिंग कराएंगे, रेगुलर अपना स्क्रीनिंग होती रहेगी, तो उससे भी हमारा काफी हद तक हमें पहले प्रिवेंटिव एस्पेक्ट से पता लगता है कि हम सेफ साइड पे चल रहे हैं। तो मेरी यही है, सब पेरेंट्स से गुजारिश है उन उनके लिए जो कि इस एज ग्रुप है वो तो एटलीस्ट 100% अपने बच्चों को करा ले।

0: उसी एज ग्रुप में है, और जो आप कह रहे हैं कि इससे ऊपर वाले हैं वो अपने आपके जो गायनोकोलॉजिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो आपके फैमिली डॉक्टर्स हैं, उनसे मशवरा लें, तो वो उनसे मशवरा लें सो दैट कि आगे जो फर्दर एज ग्रुप है उसमें मनाही तो कहीं नहीं है। हो सकता है उसमें डोज जो हम सिंगल डोज दे रहे हैं उसमें डबल डोज लगती होगी, उसमें स्क्रीनिंग का इफेक्ट आ जाएगा। अभी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो टोटल प्रिवेंटिव पार्ट में सिर्फ वैक्सीन ही नहीं है, उसमें स्क्रीनिंग भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। फिर एक स्क्रीनिंग होता है, हम टाइमली पहले उस चीज को ढूंढ लेते हैं, पता कर लेते हैं कोई ऐसे साइन सिम्टम्स हैं या कोई ऐसी चीज दिखती है जिसमें हमारा ज्यादा अलर्ट होके थोड़ा अग्रेसिव हमने अप्रोच करके उस चीज को लड़ना है उसके साथ और ट्रीट करना है।
1: इसके साथ ही नई मंजिलें प्रोग्राम का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। निगरान आला तारिक राथर, तरतीब व तहजीब अशफाक अहमद शाह और कौशिकी कश्यप, रिकॉर्डिंग व एडिटिंग मुख्तार अहमद शाह, तहरीर शेख तजम्मुल, पेशकश रीजनल न्यूज यूनिट आकाशवाणी श्रीनगर।
2: समय आप समाप्त कर रहे थे शोबे खबर की पेशकश प्रोग्राम नई मंजिलें। हमारी आवाज़ अब तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। पेश है प्रोग्राम फौजी भाइयों के लिए।

0: जय हिंद फौज भाइयों। फौज भाइयों, फिल्म संगीत के प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। फौज भाइयों, बॉलीवुड में ऋषि कपूर का नाम एक ऐसी शख्सियत के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने 4 दहाइयों तक अपनी सदाबहार अदाकारी से सिनेमा नाजरीन को दीवाना बनाया। 4 सितंबर 1952 को मुंबई में पैदा हुए ऋषि कपूर को अदाकारी का फन विरसे में मिला। इनके वालिद राज कपूर फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार और प्रोड्यूसर हैं। घर में फिल्मी माहौल मिला और फिल्मों की तरफ मायल हुए और वो भी अदाकार बनने के ख्वाब देखने लगे। ऋषि कपूर ने अपने फिल्मी करियर का आगाज अपने वालिद की फिल्म मेरा नाम जोकर से किया। साल 1970 में रिलीज होने वाली इस फिल्म में ऋषि कपूर ने एक 14 साल लड़के का किरदार अदा किया जो अपनी टीचर से मोहब्बत करता है। ऋषि कपूर ने इस किरदार को इस तरह निभाया कि शायकीन इनकी तरफ मुतवज्जह हुए और ऋषि कपूर को फिल्म मेरा नाम जोकर के लिए बेहतरीन चाइल्ड आर्टिस्ट का नेशनल अवार्ड मिला। फिल्म मेरा नाम जोकर को हिंदुस्तानी सिनेमा की तारीख में एक संग मेल समझा जाता है। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मुस्तरक कर दी गई थी, इस फिल्म को मुकम्मल करने में काफ़ी वक्त लगा और कहा जाता है कि राज कपूर को अपनी बीवी के जेवरात बेचने पड़े। राज कपूर पर बहुत कर्ज था और राज कपूर ने कर्ज से निकलने के लिए कम बजट की फिल्म बॉबी बनाने का फैसला किया। राज कपूर ने 1973 में रिलीज होने वाली फिल्म बॉबी के लिए अपने बेटे ऋषि कपूर और 16 साल डिम्पल कपाड़िया का इंतखाब किया जो एक नौ उम्र की मोहब्बत की कहानी पर मबनी थी। ये बतौर अदाकारा डिम्पल कपाड़िया की पहली फिल्म थी। बेहतरीन गानों, मौसीकी और अदाकारी से मज़ीन इस फिल्म को ज़बरदस्त कामयाबी हासिल हुई और न सिर्फ डिम्पल कपाड़िया बल्कि ऋषि कपूर को भी शोहरत मिली, बुलंदियों पर पहुंचाया और इस फिल्म के ज़रिए राज कपूर का कर्ज भी उतर गया।
1: बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके,

जी फौज भाइयों, इंडियन सिनेमा में ऋषि कपूर का नाम एक ऐसे अदाकार के तौर पर लिया जाता है जिन्होंने अपने सदाबहार अदाकारी से कई नस्लों को मुतासर किया। वो न सिर्फ रोमानवी हीरो के तौर पर मकबूल हुए बल्कि वक्त के साथ खुद को एक संजीदा और हमजहत फनकार के तौर पर भी मनवाया। इनका फिल्मी सफ़र तकरीबन 4 दहाइयों पर मुहित है जो हिंदुस्तानी सिनेमा के मुख्तलिफ अदवार की अक्कासी करता है। इब्तदाई कामयाबी के बाद कुछ फिल्में तवक्कात पर पूरी न उतरी, लेकिन 1975 में रिलीज होने वाली फिल्म खेल खेल में इनका करियर एक नई समत की तरफ बढ़ा। इस फिल्म में इनके साथ नीतू सिंह ने काम किया और दोनों की जोड़ी नाजरीन में बेहद मकबूल हुई। बादाज़ां ये जोड़ी कई कामयाब फिल्मों में नजर आई जिनमें कभी कभी और अमर अकबर एंथनी शामिल हैं।

जी फौज भाइयों, आप फिल्म संगीत का प्रोग्राम समाप्त कर रहे हैं और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं अदाकार ऋषि कपूर के बारे में और फिल्म अमर अकबर अंतरी में ऋषि कपूर ने अकबर का किरदार अदा किया था, जो आज भी इनके यादगार किरदारों में शुमार होता है। इनकी फिल्म की कव्वाली पर्दा है पर्दा आज भी बेहद मकबूल है। इसी तरह हम किसी से कम नहीं में भी इनकी परफॉर्मेंस और गाने भी नाज़रीन को बहुत पसंद आए हैं।

फौजी भाइयों, 1980 की दहाई में ऋषि कपूर ने अपने फन को मज़ीद निखारा। फिल्म कर्ज में इनकी अदाकारी और इनके गीतों ने नौजवानों में खासी मकबूलियत हासिल की। इसके बाद प्रेम रोग में उन्होंने संजीदा अदाकारी का मुजाहिरा किया और साबित किया कि वो सिर्फ रोमानवी किरदार तक महदूद नहीं हैं।

0: जी फौज भाइयों, आप इस वक्त आकाशवाणी श्रीनगर से फिल्म संगीत का प्रोग्राम सुन रहे हैं और हम आपको बता दें कि आप हमें सुन सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो की मोबाइल ऐप पर और डीटीएच पर भी। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे।
1: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
0: फौज भाइयों, ब्रेक के बाद आपका प्रोग्राम में एक बार फिर से खैर मकदम करते हैं और आपको सुनवाते हैं प्रोग्राम में अगले नगमे और आपको बताते चले कि आप इस वक्त आकाशवाणी श्रीनगर से फिल्म संगीत का प्रोग्राम सुन रहे हैं और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं अदाकार ऋषि कपूर के बारे में। और 1999 में रिलीज़ होने वाली फ़िल्म चांदनी में उन्होंने एक ऐसा किरदार अदा किया जिसमें रोमान और संजीदगी दोनों शामिल थे। इस फिल्म में इनकी कारकर्दगी को बहुत सराहा गया और 1990 की दहाई में उन्होंने फिल्म साजी में भी कदम रखा, लेकिन बतौर हिदायतकार उन्होंने खासी कामयाबी हासिल नहीं की।

जी फौजी भाइयों, ये था चांदनी फिल्म का नगमा। और आज हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम में अदाकार ऋषि कपूर के बारे में। और सन 2000 के बाद ऋषि कपूर ने अपने करियर का रुख बदला और किरदार निगार के तौर पर सामने आए। उन्होंने अपनी उम्र के मुताबिक किरदारों का इंतखाब किया और हर किरदार को भरपूर अंदाज में निभाया। फिल्म लव आजकल में इनकी अदाकारी को बेहद पसंद किया गया और इन्हें बेहतरीन मॉविन अदाकार का अवार्ड भी मिला।

फौज भाइयों, आप फिल्म संगीत का प्रोग्राम समाप्त कर रहे हैं और आज प्रोग्राम में बात हो रही है अदाकार ऋषि कपूर के बारे में। और ऋषि कपूर अपने तवील करियर में, तकरीबन उन्होंने अपने करियर में 150 फिल्मों में काम किया। इनकी नुमाया फिल्मों में दीवाना, दामिनी, अग्निपथ, मुल्क और दीगर कई फिल्में शामिल हैं। हर दौर में उन्होंने खुद को नए अंदाज में पेश किया, जो इनकी फनी सलाहियत और मेहनत का सबूत है। 23 अप्रैल 2020 को कैंसर के बायस इनका इंतकाल हो गया, लेकिन इनकी यादें, इनका फन आज भी जिंदा है। ऋषि कपूर न सिर्फ एक कामयाब अदाकार थे, बल्कि एक ऐसे फनकार थे जिन्होंने अपने काम के जरिए सिनेमा को एक नई जहत दी। इनकी अदाकारी, इनके किरदार और इनका अंदाज आज भी नाजरीन के दिलों में जिंदा है।

मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी श्रीनगर है। अब हमारे यहां से खबरें नष्ट होंगी।

0: की कल और सहाफत की आजादी का आलमी दिन आज। और अब खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मनुष्यत के खिलाफ लड़ाई में नौजवानों, सिविल सोसाइटी और मुकामी रहनुमाओं की इज्तिमाई और सरगर्म शिरकत पर जोर दिया है। आज टीआरसी ग्राउंड श्रीनगर से नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत एक पद यात्रा की क्यादत करते हुए मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर से इस बिदत का खात्मा करने के लिए इंतजामिया के अज़्म का इरादा किया। उन्होंने कहा कि मनुष्यत का कारोबार करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई गई है, ताहम इस वबा का शिकार हुए अफराद की बाज आबाद करने के लिए ठोस इकदाम किए जा रहे हैं।
1: नशे को जड़ से समाप्त करने की कसम, ये सिर्फ सरकारी ताकत की घोषणा नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर वासियों की अधिक इच्छा शक्ति से उत्पन्न हुई है, जिन्होंने अब ऐलान कर दिया है कि अब बहुत हो चुका, अब नहीं होगा। और आज मैं श्रीनगर की इस मिट्टी से कश्मीर संभाग के लिए भी यही कहने आया हूँ कि हम इसे किसी कीमत पर वापस ले करके रहेंगे। अवाम के दुश्मनों ने नार्को टेररिज्म के द्वारा नागरिकों पर जो प्रहार किया है, उसका मुकाबला करने के लिए जहां हमारी पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस प्रशासन है, उसमें सबसे अचूक हथियार अवाम की भागीदारी साबित होगी।
0: जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सईद दरख्शां अंद्राबी ने भी इस पदयात्रा में शिरकत की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त बनाने के लिए समाज के हर तबके को अपना रोल अदा करना होगा।
2: एडमिनिस्ट्रेशन ने जो नकेल इसमें कसी है, हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह रहमान यहाँ से ये बिदत बहुत जल्द खत्म किया जाएगा और जो दुश्मन देश हमारे पे, हमारे नौजवानों पे, हमारे फ्यूचर पे बुरी नजर रख रहा है, उनकी जो ये नार्को टेररिज्म यहाँ पे फैलाया गया है, इसको जल्द अज जल्द खत्म किया जाएगा और हमारे नौजवान को खुशहाली से यहाँ कलम और कागज लेके अपने फ्यूचर को संवारने में लगेंगे।
0: पदयात्रा में शिरकत करने के दौरान डायरेक्टर जनरल पुलिस नलिन प्रभात ने कहा कि पुलिस ने मनुष्यत के कारोबार करने वालों के खिलाफ अपनी सरगर्मियों में तेजी लाई है।
3: याद रहे जब बच्चे अपने वालदेन के साथ बैठ के रोज खाना खाते हैं, मोबाइल की स्क्रीन पे ही सीमित नहीं रहते हैं, अलग नहीं बैठते हैं, तो जो परिवार इकट्ठा होता है, दैट फैमिली जैसे द फैमिली विच ईट्स टुगेदर, प्रेस टुगेदर, स्टेज टुगेदर, दैट इज वेरी, जो भी आपके दोस्त उनमें तो कमीज करनी पड़ेगी ना, कौन अच्छे लोग हैं, कौन साफ नेक नियत वाले लोग हैं।
0: सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने पदयात्रा में अपनी सरगर्म शिरकत दिखाने पर तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए आम लोगों से लेकर सलामती एजेंसियों तक सबका रोल अपनी अपनी जगह पर अहम है।
4: जो मेगा पदयात्रा थी, ऑनरेबल एलजी साहब ने जिसको लीड किया, उसमें आने के लिए मैं हमारे कश्मीर के सभी जिलों से जो पार्टिसिपेंट्स आए थे, हमारे मीडिया के साथ ही आए थे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। आज कश्मीर में भी ऑनरेबल एलजी साहब ने श्रीनगर में आइकॉनिक जो हमारा घंटा घर है लाल चौक में, वहां पर सिग्नेचर कैंपेन में शिरकत की है और आज से आगे पूरे वादी में भी डिफरेंट जिलों में इवेंट्स होंगे और मेरी आप सबसे यही अपील रहेगी और आपकी जानिब से आवाम को भी यही अपील रहेगी कि सभी लोग इस मुहिम का, नशा मुक्त अभियान का हिस्सा बने।
0: पदयात्रा में शिरकत करने वाले नौजवानों ने भी मनुष्यत के खिलाफ अपना किरदार अदा करने का अहद करते हुए अपने तासुरात का इजहार कुछ इस तरह से किया।
5: पुलिस के साथ साथ हम सबको यूनाइट होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए हम सबको कि इस

0: शहर के खिलाफ हमें लड़ना चाहिए।
1: जिस 100 दिन का जो अभियान यहाँ पर एलजी साहब ने हमारे कश्मीर में जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा कदम है हमारे यूथ के लिए। हम भी ये चाहते हैं कि हमारे जो नौजवान हैं, जो इसमें मुलव्वस हैं या जो ऐसी चीज़ों में अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, तो अपने आप को कमज़ोर मत समझिए, ड्रग्स को हमेशा इनकार कीजिए।
2: अपनी फैमिली को बताइए कि नशे से दूर रहिए, आप सब नशे से दूर रहिए, बस अवेयर हो जाइए।
3: इस पदयात्रा में तालिबे इल्मों से लेकर सरकारी मुलाजमीन और आम लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। सरकार से तस्लीम शुदा शहलत फाउंडेशन और मोलमोज फाउंडेशन के एहतमाम से आज आकाशवाणी श्रीनगर के ऑडिटोरियम में एक तकरीब मुनाकद हुई, जिस दौरान इन तंजीमों ने मुश्तरका तौर मनशियात खिलाफ बुजुर्गों और खवातीन के हकूक और माहौलियात को आलूदगी से बचाने से मुतलिक मुहिमात का आगाज किया। तकरीब की सदारत साबिक गवर्नर के मुशीर खुर्शीद अहमद गनाई ने की, जबकि ऐवान सदारत में इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा के साबिक वाइस चांसलर प्रोफेसर मुश्ताक अहमद सिद्दीकी, नामवर फनकार और कल्चरल रजाकार वहीद जिलानी, शहलत फाउंडेशन के चेयरमैन रफीक अहमद लोन, वाइस चेयरमैन गुलाम अब्बास और बुजुर्गों के तिब्बी मसाइल के माहर और मोलमोज फाउंडेशन के बानी चेयरमैन डॉक्टर जुबैर सलीम भी मौजूद थे। मुकर्रीन ने जम्मू कश्मीर को मनशियात की लानत से पाक बनाने के लिए इज्तिमाई कोशिशों की जरूरत पर जोर दिया। प्रोग्राम के दौरान रफीक ताहिर काउचकी की उर्दू और कश्मीरी में लिखी गई मनशियात मुखालिफ नज़में पेश की गईं।

0: ग्रेजुएट कोर्स में दाखिला लेने के लिए 2019 से हर साल मुनाक़द किया जाता है। ये इम्तहान दिन में 2 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक इख्तिताम पज़ीर होगा। मगरबी बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, आसाम और मरकज़ के ज़ेर-ए-इंतज़ाम इलाके पुडुचेरी में हुए असेंबली चुनाव के लिए की गई वोटों की गिनती कल होगी। इन खतों में असेंबली चुनाव के लिए वोटों की गिनती के सिलसिले में सभी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। आज सहाफत की आज़ादी का आलमी दिन है। आज के दिन दुनिया भर में आज़ाद सहाफत को यकीनी बनाने के लिए किए जा रहे इकदाम को उजागर किया जाता है। साथ ही मीडिया के इन अफराद को भी याद किया जाता है जिन्होंने पूरी दुनिया में अपने पेशावराना फ़राइज़ की अंजामदेही के दौरान अपनी जानों का नजराना पेश किया। वर्ल्ड प्रेस डे के सिलसिले में जम्मू कश्मीर में भी मुख्तलिफ सहाफती अंजुमनों की तरफ से कई प्रोग्रामों का अहतमाम किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी श्रीनगर है। पेश है आज का पहाड़ी प्रोग्राम।

अस्ती आवाज तुसां तोणी पहुंच रही आकाशवाणी केंद्र श्रीनगर थी। मैं हादसा दा मेज़बान इम्तियाज अहमद मीर प्यार खलूस ते तज़ीम नाल अपने सारे सामीन को अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करदा ते प्रोग्राम विच जी आया आखदा। सामीन उम्मीद करदे हां कि तुसीं सारे बखैर वाफियत हो सो और हमेशा दी तरह अपने पसंदीदा पहाड़ी प्रोग्राम दिलचस्पी और कोर नाल सुन रहे हो सो। सामीन अज अतारे दी महफिल है, हालात वाका ते गीत संगीत दी महफिल कनके असीं तुसां दी खिदमत विच हाज़र हां। समीन प्रोग्राम के शुरू में इस गल का जिक्र करा कि प्रसार भारती के 90 साल जश्न का मौका रेडियो टेलीविजन के जरिए प्रसार भारती सुन न सिर्फ मुल्क के कोने कोने को जोड़िया बल्कि इसकी सकाफत जुबान और रवायत को भी फरोग दिता। इन्होंने 90 साल में इस दायरे सुन बेशुमार चैलेंजों का सामना करते हुए अपनी खिदमत को जारी रखते हुए आवाम का एतमाद हासिल किया। अज के इस तारीखी मौके पर असी प्रसार भारती की मजीद कामयाबियों और तरक्की वास्ते दुआ गोवा। उम्मीद है कि अदारा आइंदा भी इस जज्बे के नाल मुल्क हुकूम की खिदमत करता रहेगा। समय श्रीनगर में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत मेगा पद यात्रा अज मुनक्कद हुई। मनशा के आदि अफराद की बहाली वास्ते तय साल निगरानी प्रोग्राम पर काम जारी। लैफ्टिनेंट गवर्नर तफसीली बहाली मनसूबा भी तैयार किया गया। समगलर के खिलाफ सख्त इकदाम पर गौर, पासपोर्ट मनसूखी की सिफारिश भी शामिल। आओ असी सेहतमंद जम्मू कश्मीर वास्ते मिलकर काम करा। लैफ्टिनेंट गवर्नर समय 11 अप्रैल को जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम के ऐलान करदा 100 रोजा नशे थी पाक जम्मू कश्मीर मुहिम के तहत अज 3 मई को TRC फुटबाल स्टेडियम श्रीनगर में मनशियात की वबा के खिलाफ जामिया पदयात्रा का इनकाद होया जिसकी क्यादत लैफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सुन की। सूबा कश्मीर के सिविल और पुलिस इंतजाम सुन श्रीनगर मार्च को कामयाब बनाए वास्ते सारे इकदाम को हतमी शक्ल दी गया। समय इस पदयात्रा में LG मनोज सिन्हा के नाल हजारा लोगों सुन और स्कूली बच्चों सुन शिरकत की। आओ पहला प्रोग्राम के शुरू में तुसां वास्ते एक गीत पेश करा। आवाज़ है उब्दर रशीद कुरेशी दी ते कलाम है नूर अहमद कुरेशी होरां दा।

मास्टर करतार चंद ते संगी लोक गीत पेश कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि लोक गीत तुसां को पसंद आया उसी। सामीन इसते प्रोग्राम के बारे में राय ते मशवरे नाल असां को आगाह करते करो। तुसीं असां को खत लिख सकते हो। असदा पता है इंचार्ज पहाड़ी प्रोग्राम मार्फत स्टेशन डायरेक्टर आकाशवाणी केंद्र श्रीनगर। पिन कोड है 1900001। सामीन प्रोग्राम के आखिर भी तुसां नाल एक गल सांझी करते जुलां कि जिस तरह के लैफ्टिनेंट गवर्नर सुन अज दे पद यात्रा विच ऐलान किया कि सिर्फ एक हुकूमत दा आज़म नहीं बल्कि अरमा अरबा पुरा उस्ताद दा हद है और आवाम सुन ऐलान किया जाए कि मुझ होया हुण और ना उसीगा। मनोज सुना सुना आख्या कि उन्होंने जम्मू डिवीजन के 8 जिले का दौरा किया और पद यात्रा की क्यादत की जिथे लोगों से उन्होंने एक ही पैगाम दिता कि असं अपने बच्चों को वापस चाहते हैं।

यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा के सबक वाइस चांसलर प्रोफेसर मुश्ताक अहमद सदीकी, नामवर फनकार ते कल्चरल रजाकार वहीद जैलानी, शहरत फाउंडेशन के चेयरमैन रफीक अहमद लोन, वाइस चेयरमैन गुलाम अब्बास ते बुजुर्गों के तिबी मसलों के माहिर ते मोल मौज फाउंडेशन के बानी चेयरमैन डॉक्टर जुबैर सलीम भी मौजूद आसे। मुकर्रीन सुन जम्मू कश्मीर को मुनशियाती लानक थी पाक करने वास्ते इकट्ठी कोशिशों की लोड़ उत्ते जोर दिता। प्रोग्राम के दौरान रफीक ताहिर कावचकी दी उर्दू ते कश्मीरी विच लिखी गई मुनशियात मुखालफ नज़मां पेश कीतियां गईं।

हमारी आवाज अब तक आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से पहुंच रही है मीडियम में 268.81 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। 4:30 हो चुके हैं, नष्ट होता है पंजाबी प्रोग्राम।

साथियों, मन मारते मारते पता ही नहीं चलता जिंदगी कदों फीलिंगलैस हो जाती है। जिस उम्र विच जीन दी चाह हुंदी है उस उम्र विच नफरत हो जाती है। जरा सोचिए, जदों सोचिया सी ओ तां कदे होया ही नहीं। सारे ख्वाब, सारी ख्वाहिशां, सारे सपने अधूरे रह गए। सब्र करदे करदे अंधेरा बिखर गया। ओ वी वक्त सी जद मन चंचल होया करता सी, हर चीज़ नूं पाण दी हौसला ते ख्वाहिश सी। हुण तां इदां लगदा है जिवें जिंदगी नूं जी रहे हां, बस जिंदगी कट रहे हां। मुश्किलां दे अगे सारा सहना पैंदा है, दिल नूं पत्थर बनाउणा पैंदा है। जिंदगी ना जाने की करांदी है, ना चाहते हुए भी इस बेदर्द जमाने तो हारना पैंदा है। जो लोकी पसंद नहीं होंदे उन्हां नूं भी अपनाना पैंदा है, अपने नाल रोज़ समझौता करना पैंदा है। साथियों, लोकी अक्सर कहंदे ने जो हुंदा है चंगे लई हुंदा है। सुनने विच बड़ा सकून मिलता है, मगर सच तो यह है कि हर वार इस तरह नहीं हुंदा। जब जिंदगी सानू गिरा देंदी है, उम्मीद तोड़ देंदी है या मेहनत का फल नहीं देंदी, तद असी अपने मन नू दिलासा देंदे हाँ, तो यह लाइन बोलते हाँ कि जो हुंदा है चंगे लई हुंदा है, ते गल नू वक्त के हवाले कर देंदे हाँ। मगर सच्चाई तो यह है कि जो हुंदा है, जड़ा हुंदा है, उनू आप चंगा करना पैंदा है। वो आपे ही चंगा नहीं हो जाता, उनू चंगा सानू बनाना पैंदा है। हालात चंगे होण या बुरे या तकलीफ दे होण, सानू ही कुछ चंगा करना पैंदा है। जिंदगी आपे नहीं बदलती, उनू बदलना पैंदा है, ते बुरे वक्त नू चंगा बनाना पैंदा है। इसलिए हालात ते नहीं खुद ते भरोसा रखना पैंदा है। एहसास तो खाली लोग इत्थे शब्दां दा तीर चलांदे ने, एहसास तो खाली लोग इत्थे शब्दां दा तीर चलांदे ने, आपे विश्वास तोड़ के रिश्ता तोड़न दा इल्जाम दूसरे ते लांदे ने। साथियों, रिश्ते दे टुटन दी सब तो बड़ी वजह जड़ी है उहदे विच अक्सर एक तीसरा बंदा हुंदा है। सालां तो बने रिश्ते भरोसे ते मुहब्बत दी नींव एक पल विच टह जांदी है, क्योंकि कोई तीसरा विच आके जहर घोल जांदा है। यह सच बहुत ही दुख देता है कि जिस रिश्ते नूं बनाउण नूं सदियां लग जांदी ने, उहनूं तोड़न नूं सिर्फ एक तीसरा बंदा हुंदा है। मगर जेकर सोचिए, अगर इहो तीसरा बंदा रिश्ते नूं तोड़न दी जगह जेकर उहनूं जोड़न दा काम करे, वह किसी दा दर्द समझे, दोनों विच भरोसा जगाए, उस रिश्ते नूं मजबूत बनाए, तां किन्ना चंगा हो सकता है। मगर इस दुनिया विच इहो जे बंदियां दी कमी है। इत्थे झूठे, स्वार्थी, निर्दय बंदे मिलणगे। जेकर तुहानू ऐसे बंदे मिल जाण, ते उहनां नूं हमेशा गुजारिश करो, हाथ जोड़ के उहनां नूं कहो कि तोड़न दी बजाए इन्हां रिश्तियां नूं जोड़न दी कीमत जाणो, ते जोड़न दे लई हौसला रखो। सब झूठे रिश्ते नाते ने, सब दिल रखण दी गल्लां ने, सब झूठे रिश्ते नाते ने, सब दिल रखण दी गल्लां ने, कद कौन किसी दा हुंदा है, सारे असली रूप छुपांदे ने।

साथियों, कड़ी सानू इजाजत नहीं दे रही है कि प्रोग्राम नू अगे बढ़ाया जाए, ते अगले हफ्ते इसी वेले इसी वक्त तुहानू फिर मिलांगे। तद तक लई रब राखा।

0: समीन ये था पंजाबी प्रोग्राम पेशकश समीन आशा। हमारी आवाज़ आप तक आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से पहुंच रही है मीडियम वेव 268.81 और FM 103.5 MHz पर। इसके अलावा आप हमें सुन सकते हैं DTH और आकाशवाणी की लाइव मोबाइल ऐप पर। ठीक 5 बजे आप हमारे यहाँ से गोजरी प्रोग्राम समाप्त करेंगे एक वक्फे के फौरन बाद।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ।

बुलबाला गोणती जी आमना SMS करें राजवली परदेसी साहब और ते इनके नाल बाकी फरमाइशी नाए खुर्शीदा बेगम रवील अहमद कसाणा मुनीर अहमद कसाणा तुफैल अहमद कसाणा महनाज बानो मुमताज़ बानो रेहाना जान नसीबा जान ते जुबैदा जान और इनका बाकी संगी साथी तम सारा दोस्तों की पसंद पर अब्दुल मजीद जिंदा दिल की आवाज़ में पेश है युगीत।

लोड़े आज जड़ी ठंडी ठोक कोई ना, ठंडी ठोक ती आज महजूर चंगो, माल रोड ते चांदनी चौक कोई ना।

अग्गे जी गुलाम हसन तबसम की आवाज मां गीत सुन वास्ते आमना SMS की है नंदी मार्ग नूराबाद ते नजीर आमंद गुरसी उरा ने इनके नाल बाकी फरमाइशी नाए मोहम्मद रफीक गुरसी सबरीना रफीक तनवीर इस्लाम नहीम रफीक फैसल रफीक ते फुल्ला बेगम जब कुरहामा लोलाब ते शबीर आमन चाड़ मनान शबीर मोहम्मद इकबाल चाड़ जावेद आमन चाड़ मोहम्मद यासर चाड़ ते हाफिज जाकिर यारिखा DHपुरा ते निसार आमद गोरसी मोहम्मद इस्माइल गोरसी हाजरा बेगम सकीना अख्तर आसफा जान मिसबा जान अब्दुल रशीद खटाना यासमीन जान ते अलीजा जान तराल जरीहर ते शमीम आमद कुरेशी रफीक आमद कुरेशी अजमल शमीम कुरेशी आबिद शमीम रुखसाना जान परवीना जान ते जावेद आमद कुरेशी मशकिया वांगत ते मोहम्मद शरीफ खटाना राजा इम्तियाज खटाना सजाद आमद खटाना शहराज आमद जरीना बेगम ते नाजिया जान पेश है जी तम सारा दोस्तों की पसंद पर गुलाम हसन तबस्सम की आवाज़ मां यो गीत।

0: समीन आप गोजरी प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे, पेशकश वसीम फारूक, आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज।
1: काशिर छे नंदरिश्त लाल दिधी जबान पचेश ने वो कशुर बोलून तो समझून
0: समीन आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन मीडियम वेव 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। 5:50 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप गोजरी खबरों का बुलेटिन समाप्त करेंगे।

0: काल असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। तैयारियां पूरी कर ली हैं। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती कड़ी सुरक्षा के बीच 77 केंद्रों पर की जाएगी।
1: 294 सीटों में से पश्चिम बंगाल की 293 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती कल होगी। मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के 3 स्तरीय इंतजाम किए गए हैं, जिसमें जिला पुलिस, राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है। मतगणना स्थलों पर केंद्रीय बलों की कुल 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। ये पूरी प्रक्रिया रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के नियंत्रण में होगी। ये पहली बार है जब मतगणना प्रक्रिया के लिए वरिष्ठ IPS अधिकारियों को पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। मतगणना प्रक्रिया का प्रबंधन एक टीम करेगी। इसमें सुपरवाइजर, मतगणना सहायक और माइक्रो पर्यवेक्षक शामिल होंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमण।
0: केरलम में 140 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पुदुचेरी विधानसभा चुनावों की मतगणना के लिए सुरक्षा तथा निगरानी के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुदुचेरी के मुख्य चुनाव अधिकारी पी जवाहर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि पुदुचेरी की सभी 30 विधानसभा सीटों की मतगणना कराईकल, यानम और माहे में होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि तमिलनाडु में 62 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। असम में विधानसभा की सभी 126 सीटों के लिए 35 जिलों के 40 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती की जाएगी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर से मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी आई को दृष्टि मिशन के सफल प्रक्षेपण पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि ये मिशन भारत के निजी अंतरिक्ष नवाचार और आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती हुई ताकत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दुनिया के पहले ऑप्टोसार उपग्रह और भारत में निर्मित सबसे बड़े निजी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण युवाओं के नवाचार और राष्ट्र निर्माण के प्रति उनके जुनून का प्रमाण है। उन्होंने गैलेक्सी आई के संस्थापकों और पूरी टीम को बधाई दी है। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद आग बुझाने के लिए 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सवेरे 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के शाहदरा स्थित विवेक विहार इलाके में हुए अग्निकांड में जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2,00,000 रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है, जबकि घायलों को 50,000 रूपये दिए जाएंगे। सरकार ने बच्चों में मधुमेह पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश हाल ही में संपन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा वितरण से संबंधित एक राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में जारी किए गए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि ये दिशा निर्देश पहली बार बचपन में मधुमेह की जांच, निदान, उपचार और दीर्घकालिक प्रबंधन के लिए एक मानकीकृत राष्ट्रीय ढांचा उपलब्ध कराता है। ईरान ने शांति वार्ता में गतिरोध को समाप्त करने के प्रयास में आज अमरीका को एक नया प्रस्ताव भेजा। हालांकि अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए ईरान के इस नए प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि अमरीका द्वारा किसी भी ऐसे ढांचे को स्वीकार करने की संभावना नहीं है जिसमें ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने की ठोस गारंटी शामिल न हो। IPL क्रिकेट में हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 166 रन का लक्ष्य दिया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब मीडियम 268.1 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हमारा अगला ऐलान सुनिए।

خوشتی حکم سین پریت آم کیا پاشی

किज ना बुझै किज ना सुझै दुनिया गुजी पाए। साई मेरा चंगा कीता ना यहां पी द जाए। फरीदा जे जाना तिल थोड़ै संभल बुक परी, जे जाना सो नडड़ा ता थोड़ा मान करी। जे

को सब जग डिठा हंड। फरीदा जे तू अकल लतीफ काले लिख न लेख, आप नड़े गिरीवान मैं सिर नीवा कर देख। फरीदा जे तो मारन मुकिया तिना न मारे कुमा, आप नड़ै कर जाये पैर तिना दे चुमा। फरीदा जो तै मारन मुकिया तिना न मारे कुमा, आप नड़े कर जाये पैर तिना दे चुमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

0: Money Srinagar. अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे हैं।
1: प्रोग्राम शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए।
0: शेरबीन के समीन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौजूद हैं

0: मिशन दृष्टि मुल्क के खड़ाई सफर में एक नया संग मील, वजीर आजम नरेंद्र मोदी। श्रीनगर में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर की पद यात्रा, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की कयादत में। गांधरबल जिले में पीडीपी की रैली, हुकूमत पर तनकीद। और खेत खलियानों और बागात में जंगली सौरों की हड़बोंग। मौजूद की तफसील जरा देर बाद।
1: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
2: सुनो ना, सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ,
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,
4: 9018074333।
5: 9018074333।
1: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
6: होली का ना अलग ही मजा है। लोरी ना मिठाई खाओ।
7: वाह, इसका स्वाद तो बड़ा ही अच्छा है।
8: मैं जो मिठाई लेके आई उसमें ऐसा स्वाद क्यों नहीं आ रहा?
9: सावधान रहना रीना, त्योहारों के समय मिठाइयों में मिलावट की संभावना बहुत अधिक होती है, इससे हमारी और हमारी फैमिली की सेहत खराब हो सकती है।
8: अच्छा भाभी,
9: और हाँ, मिठाई खरीदने से पहले ये जरूर जांच ले कि दुकानदार के पास फूड लाइसेंस हो। अगर किसी भी खाद्य पदार्थ में मिलावट की शंका हो तो राज्य खाद्य संरक्षा आयुक्त के कार्यालय में शिकायत कर सकती हो। और अधिक जानकारी के लिए www.fssai.gov.in पे लॉगिन कर सकती हो। और हाँ, अगर आप चाहती हो तो वेबसाइट पर खाद्य मिलावट की जांच के आसान तरीकों की जानकारी भी ले सकती हो।
8: थैंक यू भाभी, आपने तो मेरी आँखें ही खोल दी।
10: याद रहे, सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
0: शेरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गैलेक्स आई का मिशन दृष्टि भारत के खड़ाई सफर में एक बड़ी कामयाबी है। उन्होंने दुनिया के पहले ऑप्टोसार सैटेलाइट और भारत के सबसे बड़े निजी तामीरशुदा सैटेलाइट की कामयाब लॉन्चिंग पर टीम को मुबारकबाद दी। वजीर आजम के बकौल गैलेक्स आई का मिशन दृष्टि भारत के खड़ाई सफर में एक अहम संग मील है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कि दुनिया के पहले ऑप्टोसार सैटेलाइट और भारत की सबसे बड़े निजी तामीरशुदा सैटेलाइट की कामयाब लॉन्चिंग नौजवानों के जज्बे जिद्दत और कौम साजी के अज़्म की अक्कासी करती है। मौसूफ ने गैलेक्स आई के बानियों और पूरी टीम को इस कामयाबी पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये लॉन्च भारत के खलाई शोबे में निजी इदारों की बढ़ती हुई शराकतदारी और सलाहियत का सबूत है। समय आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने TRC फुटबॉल ग्राउंड से मनशियात मुखालिफ मुहिम की पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वाजह रहे कि पदयात्रा में जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले हजारों अफराद ने शिरकत की, जिनमें तलबा व तालिबात, असातिजा, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे, खिलाड़ी, कलमकार, ताजिर और दीगर शोबों के सैकड़ों अफराद शामिल थे। पदयात्रा में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के अराकीन ने भी शिरकत की। याद रहे कि 11 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम से 100 दिन की नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम का आगाज किया था, जिसके बाद जम्मू कश्मीर यूटी के मुख्तलिफ जिलों में इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए LG मौसूफ मुतल्लिका तकारीब में बजाते खुद शरीक होते आए हैं। आज श्रीनगर में मुनाकिदा पदयात्रा के मौके पर इजहार ख्याल करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि मनशियात

0: सबसे क्रिएटिव और सबसे प्रोडक्टिव ताकत यानी हमारे नौजवानों को ही निशाना बनाया। 11 अप्रैल से 100 दिनों तक का ये अभियान शुरू किया गया ताकि इस आवाम में हर एक व्यक्ति को इस लड़ाई में शामिल किया जा सके। इस 100 दिन में अब हमारे पास 78 दिन बचे हैं। मैं समझता हूँ कि हर एक दिन का बहुत ही महत्व है, हर एक घंटे का हम सदुपयोग करें ऐसी रणनीति हमें बनानी है। हर एक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित हो इसका हमें प्रयास करना है। हमें मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि पूरे देश में जम्मू कश्मीर एक ऐसा उदाहरण बने जो नशे की बदुआ और नशे के बवाल से पूरी तरह मुक्त हो।
1: इस दौरान इंतजामिया की जानिब से रैली के दौरान वसी इंतजाम किए गए। शरका के लिए ट्रांसपोर्ट, पीने का पानी, तिब्बी सहूलियात, एम्बुलेंसेज, पिंडाल और दीगर जरूरी सहूलियात फराहम की गयी ताकि प्रोग्राम मुनज्जम अंदाज में मुनाकिद हो सके। ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर ने खुसूसी इंतजाम किए जिनके तहत मुख्तलिफ इलाकों से आने वाली गाड़ियों के लिए मखसूस पार्किंग मकाम मुकर्रर किए गए। जनूबी कश्मीर से आने वाली गाड़ियाँ राजबाग जबकि शुमाली और डाउन टाउन इलाकों से आने वाली गाड़ियाँ जहांगीर चौक में पार्क की गयी। इस दौरान नीट इम्तिहान के 22 तलबा के लिए भी खुसूसी सहूलियतें फराहम की गयी ताकि इम्तिहानी अमल मुतासिर न हो। इम्तिहानी मराकज तक रसाई के लिए रास्तों को तरजीही बुनियादों पर खुला रखा गया। इख्तिताम पर शुरका ने इस अजम का इजहार किया कि मनकियात के खिलाफ ये तहरीक जारी रहेगी और जम्मू कश्मीर को एक महफूज, सेहतमंद और मनशियात से पाक खित्ता बनाने के लिए इज्तिमाई कोशिशें मजीद तेज की जाएंगी।
2: नशामुक्त जम्मू कश्मीर के सिलसिले में श्रीनगर में एक बहुत बड़ी पदयात्रा का इनेकाद इमरान नायकू की रिपोर्ट आपने सुनी। गांधरबल से रहीम रिजवान ने खबर दी है कि आज पीडीपी की सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने जिला गांधरबल का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि यह हुकूमत नौजवानों को बाइज्जत रोजगार फराहम करने और उनका मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। पीडीपी सदर ने इल्जाम आयद किया कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने रिश्वतखोरी को बढ़ावा देते हुए पीछे के दरवाजे से तकरूरियां करने का अमल शुरू किया है जिसके नतीजे में मुस्तहक तालीम याफ्ता नौजवान अपने हक से महरूम कर दिए जाते हैं।
3: नाले सुनता है गरीब लोग जो है बाजरी निकालते थे और अपना गुजारा करते थे मगर अब बड़ी बड़ी मशीनें आके इन लोगों के पेट पे लात मार दी गई है और लोग जो है बेरोजगार हो गए हैं। नौकरियां तो देते नहीं, नौकरियां ये बैक चैनल से बैक डोर से कोई 30,000 लोग इन्होंने बैक डोर से लगाए हैं जो प्राइवेट कर रहे हैं। अपने एमएलए को 30-30, 40-40 नौकरियां देते हैं जिसमें पैसा जाता है, रिश्तेदारों को नौकरी मिलती है, आम लोगों को नहीं मिलती है। यानी इस वक्त फिर से लोग जो है जेवर और अपना देश के नौकरियां खरीदते जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की आदत रही है। तो यही मुश्किल आते हैं लोगों को जिसके बारे में हम जगह जगह वर्कर्स के साथ बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम लोगों की मुश्किल उसमें ये लिखा है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जब भर्ती होगी तो उसमें उर्दू जानना जरूरी है। 2026 में उमर साहब के रेवेन्यू डिपार्टमेंट से दूसरा ऑर्डर जो इल्तिजा ने लिखाया उसमें ये लिखा है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भर्ती के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है उर्दू का कहीं नामो निशान। उसके बावजूद भी उमर साहब झूठ बोले तो मैं क्या।
2: गांधरबल में पीडीपी की रैली जिससे पीडीपी के सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने खिताब किया। इधर जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने जम्मू श्रीनगर शाहरा पर स्लीपर बसों के आमदरफ्त पर पाबंदी आयद कर दी है। ये फैसला पहाड़ी रास्तों पर हिफाजती खदशात के पेश नजर लिया गया है और जम्मू स्लीपर बस एसोसिएशन ने इसकी हिमायत की है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने जम्मू श्रीनगर शाहरा पर स्लीपर कोच बसों की सर्विस खत्म करने का हुक्म जारी किया। हुक्म के मुताबिक ये इकदाम पहाड़ी रास्तों पर स्लीपर बसों के ऑपरेशन से जुड़े हिफाजती खतरात के पेश नजर किया गया है। इस फैसले के बाद मुसाफिरों को अब मेयारी बसों और दीगर जराय आमदरफ्त पर इनसार करना होगा। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा।
4: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
5: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ

0: रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
1: अपने सपनों को दो एक पावरफुल डायरेक्शन विद यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। प्रेस्टीजियस MBA प्रोग्राम्स के लिए एडमिशन्स अब ओपन हैं। CMAT स्कोर के बेसिस पर चूज फ्रॉम 4 करियर डिफाइनिंग ऑप्शंस: MBA, MBA इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, MBA इन क्राफ्ट मैनेजमेंट और एग्जीक्यूटिव MBA। यहां मिलेगी आपको क्वालिटी एजुकेशन, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी और रियल इंडस्ट्री एक्सपोजर जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी लीडर। याद रखें, सिलेक्शन होगा सिर्फ आपके CMAT स्कोर पर। लास्ट डेट एक्सटेंडेड है 4th मई तक, अभी भी वक्त है, लेकिन ज्यादा नहीं। अप्लाई नाउ और अपने मैनेजमेंट करियर को ले जाएं नेक्स्ट लेवल पर। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, शेपिंग लीडर्स ऑफ टुमारो।
2: जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहरबीन, आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं। बारामुल्ला से कलामत कयूम की तला है कि श्री नारवाव के गुलिस्तान बाला इलाके में आज मुदस्सिर अहमद जुनेजा नामी एक शख्स उस वक्त रीछ के हमले में शदीद जख्मी हुआ जब वह अपने माल मवेशियों को लेकर गुलिस्तान बाला इलाके से गुजर रहा था। मुदस्सिर अहमद जुनेजा को श्री नारवाव के अस्पताल में इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम किए जाने के बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल बारामुल्ला मुंतकिल किया गया है। उधर किश्तवाड़ से मुश्ताक देव की इतला है कि चनगाम किश्तवाड़ के कुछ देहात में पिछले 2 रोज से रीछों को दिन दहाड़े घूमते हुए पाया गया है। मुतल्लिका आबादी खौफजदा है और महकमे वाइल्ड लाइफ से मुतालबा करती है कि रीछों को काबू में लाने के लिए फौरी इकदाम किए जाएं। दरियासना उड़ी के लगामा इलाके में ताजा बारिशों के बाद जो लैंडस्लाइडिंग पेश आई थी और जिसकी वजह से उड़ी बारामुल्ला शाहरा बंद करना पड़ी थी, उससे मुतालिक अभी हमें इत्तला मिली है अपने नुमाइंदे जफर इकबाल की तरफ से कि शाहरा को कई घंटों की मशक्कत के बाद बहाल किया जा चुका है। समिल वादी के बेशतर इलाकों में रवा माह के दौरान धान की पनीरी लगाने का सिलसिला शुरू हो रहा है। इसी के साथ साथ मेवा बागात में जरासीम कुश अद्वियात का छिड़काव किया जा रहा है। बहसियत मजमू वादी भर में काश्तकारी का अमल गैर मामूली रफ्तार पकड़ चुका है। ताहम दूसरी तरफ काश्तकार पिछले कई हफ्तों से मुसलसल नाकिस आबपाशी सहूलियात की शिकायत करते आए हैं और उन्हें खदशा है कि अगर आबपाशी कोहलों और कनालों को मजीद ताखीर के बिना बहाल ना किया गया तो उन्हें न सिर्फ तरह तरह की दिक्कतें पेश आ सकती हैं बल्कि नुकसान भी झेलना पड़ सकते हैं। दरियासना वादी के कुछ जिलों में जरई अराजी के अंदर जंगली सोरों की मौजूदगी काश्तकारों को हद दर्जा परेशान कर रही है। बताया जाता है कि ये जंगली सोर न सिर्फ धान के खेतों और मेवा बागात को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि वहां सरगर्म काश्तकारों को खासा खौफजदा कर देते हैं। इसी तनाजुर में एक रिपोर्ट के साथ बड़गाम से यूनुस पर्रे।
3: वादी के मुख्तलिफ इलाकों में जंगली सोरों की वजह से किसानों की साल भर की मेहनत और दान सब्जियों व दीगर फसलों को बड़े पैमाने पर तबाह कर रहे हैं। वहीं वस्ती कश्मीर के बड़गाम जिले के कई इलाकों बशमूल चाडोरा, बीरवा, सुनूर, किलीपुरा, वागर और नारवल के कई इलाकों से जंगली जानवरों के घुसने के वसी वाकात की इतला शहरबीन को आए रोज मौसूल हो रही है, जिससे किसानों को परेशानी का सामना है क्योंकि धान और दीगर फसलें तबाह हो गई है। तफसलात के मुताबिक जिले के ब्लॉक एसकेपुरा और नारबल के मुतजिद गांव दात जिनमें काउसा, नारबल, नूपुरा, यारीगोट, हाजी लवईपुरा, चेरहार, बनगाम, पांचस, वाकलपुरा, रसू, राजवन, हरदुमलपुरा और ड्रगर माछामा व दीगर देहातों के मुताबिक जंगली सोर, बंदर और रीछ रात और सुबह के अवकात में जरी खेतों में तेजी से कदम जमा रहे हैं। बकौली किसान रातों रात धान के बीजों पर हमला करते हैं जिससे काश्तकारी की पूरी सरगर्मी खतरे में पड़ जाती है। लोगों ने शहरबीन को बताया कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों से जंगली सोरों की बढ़ती हुई मौजूदगी ने बड़े पैमाने पर धान के खेतों को तबाह किया है जबकि बंदर बस्ती के इलाकों के करीब फसलों को नुकसान पहुंचा रहे जिससे सूरत हाल मजीद खराब हो रही है। सूरतहाल पर गहरे तशवीश का इजहार करते हुए लोगों ने कहा कि फसलों की बार बार तबाही से जिले में किसानों की रोजी रोटी को शदीद खतरा लाहक है। तहसील नारबल और ब्लॉक एसकेपुरा के मकीनों खासतौर पर मुतासर देहातों ने इंतजामिया से अपील की है कि वो फसलों खासकर धान खेत की हिफाजत के लिए फौरी मुदाखलत करे और इस बात को यकीनी बनाए कि किसानों को मजीद नुकसान न पहुंचे। उधर चाडोरा डिवीजन के रूपुरा, गंजीबाग, बचूरा, लालगाम, आवलपुरा और वाहतोरा व दीगर इलाकों में भी जंगली सोरों की घूमने की वजह से मजकूरा इलाकों में ये सोर काफी दिनों से मौजूद है। बकौली लोग, अगरचे महकमा वाइल्ड लाइफ को कई बार इस बात से आगाह किया गया कि इलाके में जंगली सोर मौजूद है और ये सोर सेब के बाग में पना ली है, ताहम मुतल्लिका महकमे की तरफ से जंगली सोरों को काबू करने और लोगों को फिक्र तशवीश से

0: जात जलाने के लिए कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है। बाकी लोग दो हफ्ते पहले जो धान के बीच बोए थे, ये जंगली जानवर रात के वक्त धान की फसल पर हमला करते हैं और खेतों को तबाह कर देते हैं, जिसकी वजह से किसान मायूस नजर आ रहे हैं, क्योंकि रवा में ही शाली लगाने का सीजन भी है। यहाँ तक कि जिले के कई किसानों ने धान की पनीरी लगाने की तैयारी के लिए दो बार बीच बोए थे, क्योंकि जंगली सोरों ने उनकी पनीरी तबाह कर दी, जिसकी वजह से ये लोग जंगली सोरों के सामने बेबस दिखाई दे रहे हैं। किसानों ने इस हवाले से जिला इंतजामिया से पुरजोर मुतालबा किया है कि जंगली सोरों को काबू करने के लिए फौरी तौर पर मवसर इकदाम उठाए जाए, ताकि किसानों को मजीद नुकसान का सामना न करना पड़े।
1: बड़गाम से यूनुस परी की रिपोर्ट आपने सुनी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज आजादी सहाफत के आलम दिन के मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि जमहूरियत की बका के लिए आजादी सहाफत नागुजीर है और प्रेस की आजादी यकीनी बनाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की काविशें हमेशा काबिले सताइश रही हैं। उधर त्राल से शबीर भट्ट की इतला कि आज त्राल इलाके की

0: सोरों ने उनकी पनीरी तबाह कर दी, जिसकी वजह से ये लोग जंगली सोरों के सामने बेबस दिखाई दे रहे हैं। किसानों ने इस हवाले से जिला इंतजामिया से पुरजोर मुतालबा किया है कि जंगली सोरों को काबू करने के लिए फौरी तौर पर मवसर इकदाम उठाए जाए ताकि किसानों को मजीद नुकसान का सामना न करना पड़े।
1: बड़गाम से यूनुस परी की रिपोर्ट आपने सुनी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज आजादी सहाफत के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि जमहूरियत की बका के लिए आजादी सहाफत नागुजीर है और प्रेस की आजादी यकीनी बनाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की काविशें हमेशा काबिले सताइश रही हैं। उधर त्राल से शबीर भट्ट की इतला के आज त्राल इलाके की मारूफ सामाजिक कारकुन और साबिक ब्यूरोक्रेट मोहम्मद इकबाल रेगू ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस के सीनियर लीडर सुरेंद्र सिंह चन्नी और पार्टी के दीगर लीडर ने उनका खैर मकदम किया और कहा कि उनकी शमूलियत से पार्टी को मजीद तकवियत मिलेगी। समन वादी के मुख्तलिफ जिलों में इन दिनों मेवा बागात में दवा पाशी और खादों के छिड़काव का अमल जारी है। इस सिलसिले में अलबत्ता हॉर्टिकल्चर माहरीन का कहना है कि ग्रोवर्स अमूमन रिवायती तौर तरीका अपनाकर जरासीम कुछ अद्वियात और खादें छिड़कते हैं, इस बात से कत नजर के जमीन को हकीकी मानों में कौन सी अद्वियात और खादें कितनी मकदार और किस तनासुब में दरकार हैं। माहरीन के मुताबिक काश्तकारों का यह रवैया आगे चलकर फसलों को बड़े पैमाने पर मुतासिर करने का मौजे बनता है। इसी सिलसिले में एक रिपोर्ट के साथ शोपियां से फैयाज वानी।
2: जनूबी कश्मीर के जिला शोपियान में मेवा बागात बिलखसूस सेब के बागात में पॉलिनेशन का अमल इख्ताम को पहुंच चुका है और इस वक्त किसान फ्रूट सेट के मरहले के मुंतजर हैं। ताम मुख्तलिफ इलाकों से मौसूल हो रही इतलात के मुताबिक कई जिद्दा सतह पर कम पैदावार की शिकायत सामने आ रही है, जबकि बैज इलाकों में सूरत हाल को इत्मीनान बख्श करार दिया जा रहा है। माहरीन का कहना है कि 15 मई के बाद ही बागात में मेवा की हकीकी सूरत हाल वाजह हो पाएगी, जबकि जून के महीने में शुरू होने वाला फ्रूट ड्रॉप का अमल पैदावार की असल तस्वीर सामने लाता है। ताहम इन खदशात के बीच एक अहम मसला मुसलसल उभर कर सामने आ रहा है कि किसान मेवा बागात में खादों का बेहंगम और गैर साइंसी तरीकों का इस्तेमाल अमल में लाते हैं, जिसके बाद न सिर्फ दरख्तों की सेहत मुतासर हो रही है बल्कि जमीन की जरखेजी और मजमूई पैदावार पर भी मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। माहरीन के मुताबिक ग्रीन टिप से लेकर मेवा उतारने के आखिरी मरहले तक अक्सर किसान बगैर सॉइल टेस्टिंग के नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और दीगर खातों का हद से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से दरख्तों में गैर मुतवाजन नशनुमा होती है, शाखें ज्यादा बढ़ जाती है जबकि फूल और फल कम बनते हैं और बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। माहरीन ने मजीद बताया कि ज्यादा नाइट्रोजन के इस्तेमाल से वक्ती तौर पर दरख्त हरे भरे तो नजर आते हैं लेकिन तवील मुद्दत में पैदावार मुतासर होती है और फल का मियार भी गिर जाता है, और इसी तरह फास्फोरस वाली खादों खुसूसन डीएपी का बेजा इस्तेमाल मिट्टी में जमा होकर दीगर गजाई अनासर के तवाजुन को बिगाड़ देता है। जहरी माहरीन ने शायबीन को बताया कि सॉइल टेस्टिंग के बगैर खादों का इस्तेमाल न सिर्फ गैर जरूरी अखराजात का सबब बनता है बल्कि इसे मिट्टी की साख्त मुतासर होने और जेर जमीन पानी की आलूदगी जैसे मसाइल जन्म ले सकते हैं, इसलिए रवायती अंदाज में खाद डालने के बजाय जदीद साइंसी तरीकों को अपनाना वक्त की जरूरत है। माहरीन ने किसानों को मशवरा दिया कि वो हर 2 या 3 साल के बाद सॉइल टेस्टिंग करवाए, नामेती खादों का इस्तेमाल करें, नाइट्रोजन खादों को किस्तों में दे और फास्फोरस वाली खादों का इस्तेमाल जरूरत के मुताबिक करें, जबकि माइक्रोन्यूट्रिएंट स्प्रे और जदीद तरीके आपाशी जैसे इकदाम बागात की सेहत बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं। काबिल जिक्र बात है कि मौजूदा सूरतहाल के पेश नजर यह नहायत ही जरूरी है कि महकमा हॉर्टिकल्चर और इसे मुंसलिक इदारे जमीनी सतह पर फाल किरदार अदा करें, किसानों में साइंसी बुनियादों पर खादों के इस्तेमाल से मुतलिक बेदारी पैदा करने के लिए मौसर और मुनजम इकदाम उठाए और तभी बागात की पायदार तरक्की मुमकिन हो सकती है।
1: शुभियां से फैयाज वानी की रिपोर्ट आपने सुनी। हर गुजरने वाले दिन के साथ वादी कश्मीर में सियाहत के शोबे पर जोबन आता जा रहा है। इन दिनों वादी के मुख्तलिफ सियाहती मकामात पर मकामी और गैर मकामी सयाहों की आमद में नुमाया इजाफा हो रहा है और आने वाले महीनों में यह तादाद कई गुना बढ़ रही है। ताहम वस्ती कश्मीर के सियाहती मकाम सोनमर्ग की नस्बत से शिकायत पैदर पे मौसूल हो रही हैं कि मुतल्लिका हुकाम वहां सेहत और सफाई को यकीनी बनाने में हद दर्जा गैर संजीदा हैं। इसी सिलसिले में एक रिपोर्ट के साथ रहीम रिजवान।
3: शोर आफाक सोनमर्ग में डस्टबिन की अदम मौजूदगी, बैतुल खुलाओं और सोनमर्ग के ग्रीन बाउल एरिया में सफाई के फुकदान से यहां आने वाले सयाह अक्सर मायूस होकर वापस लौटते हैं।

0: तफरी के लिए यहाँ आने वाले सयाह पहले सोनमर्ग के ग्रीन बाउल एरिया में दाखिल होते हैं, जहाँ गैर मुल्की मुल्की और मकामी सयाह चादरें बिछाकर टोलियों में बैठते थे और मुख्तलिफ पकवान नोश किया करते थे। ताहम आज ग्रीन बाउल में गोबर के ढेर देखने को मिल रहे हैं और यहाँ सुबह शाम चारों ओर घोड़े घूमते नजर आ रहे हैं। इसी तरह शुतकड़ी से लेकर फिश पॉन्ड तक अगर कहीं पर बैतुल खुला तामीर किए गए हैं, वहां इस कदर गलाजत देखने को मिल रही है कि सयाह इनमें दाखिल नहीं हो पा रहे हैं। इस तरह यहाँ आने वाले सयाहों को हाजत बशरी के लिए या तो होटलों में जाना पड़ता है या नाले सिंध के किनारों पर बैठकर फारिग होना पड़ता है, जिसे उन्हें अक्सर शर्मंदगी का सामना करना पड़ता है। बेशतर सयाहों ने शहरबीन को बताया कि सोनमर्ग में बैतुल खुलाओं की सहूलियत न होना और सफाई का इस कदर फुकदान होना न सिर्फ लम्हे फिक्रिया है बल्कि बाइस हैरत भी है। हद तो यह है कि यहाँ जगह जगह रेडी वाले अपनी रेडियां लगाकर खाने पीने की चीजें खुले में फरोख्त कर रहे हैं और यहाँ भी सफाई सुथराई का कोई खास ख्याल नहीं रखा जाता है बल्कि इनकी चेकिंग भी नहीं हो पा रही है ताकि सयाहों को अनहाइजीनिक गजाएं फरोख्त नहीं की जाए। सितम जरीफी तो यह कि सोनमर्ग में डस्टबिन कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं, जिसके बाइस यहाँ सयाह कूड़ा करकट रस्ते में फेंक देते हैं। नतीजतन सोनमर्ग में सफाई का फुकदान चारों ओर देखने को मिल रहा है, जिससे सोनमर्ग की रानाई रोज बरोज मुतासिर होती जा रही है।
1: रहीम रिजान की रिपोर्ट आपने सुनी और प्रोग्राम के आखिर में एक खबर के आज नशा मुक्त भारत अभियान के तहत प्रताप पार्क श्रीनगर में जम्मू कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस की जानिब से एक खसूसी लाइव पेंटिंग डेमोन्स्ट्रेशन का इनका किया गया, जिसमें इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर और दीगर इदारों से वाबस्ता तलबा ने अपने फन का मुजाहिरा किया। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हो जाता है। प्रोग्राम के मेजबान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम की निगरान समीना शाह को इजाजत दें। खुदा हाफिज।
2: शहरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताबुन कर रहे थे खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए।
3: आप बिजनेस की तरक्की को लेकर है फिक्रमंद? अरे रेडियो पे दे इश्तिहार और बढ़ाएं अपना कारोबार। अब फिक्र की क्या बात जब है कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का साथ। जी हाँ, अपने कारोबार की उड़ान को दीजिए एक नई पहचान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, फोन नंबर 9419000025।
4: मून SWR पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत पायेदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स।
5: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
6: अरे ये सेवाराम की दुकान बंद क्यों है?
7: बंद नहीं, मिलावट करता था, किसी ग्राहक ने माल की जांच करवा दी।
8: जी हाँ, नए खाद्य कानून के तहत हर एक को अधिकार है मिलावटी खानपान वस्तुओं की लेबोरेटरी से टेस्ट करवाने का। पकड़े जाने पर मिलावटखोरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
9: याद रखें, सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.fssai.gov.in पर।
10: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
11: آداب، یہ آکاشوانی سرینگر شام چہ 7:30 خبرنامہ ہیت چھس بہ خالد حمید خاص خاص خبرن پہ گڑا نظر منشیات خلاف لڑائی من سارنی ہندس شرکت پہ لیفٹیننٹ گورنر سن زور سرینگر کر منشیات مخالف پد یاترائی من شرکت نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت درست یو ٹی ایس من سرگرمی جاری سرسی ملکس من نیٹ امتحان منعقد جموں کشمیر پہ 50,000 امیدوار ہند شرکت تاز منانا صحافت آزادی ہند عالمی دہ منچ پیش خبر ہند تفصیل لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن منشیات خلاف لڑائی مز نوجوان سول سوسائٹی تو مقامی لیڈرن ہز اجتماعی تو سرگرم شرکت پہ زور دیتمت آج ٹی آر سی گراؤنڈ سری نگر نشہ مکت

0: कॉलेज उनके लिए अवेलेबल है, वो नियर बाय कॉलेज में उनको बोल सकते हैं मुझे ये फॉर्म भर के दीजिए क्योंकि मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो वो कॉलेज उसको हैंड होल्डिंग करेगा।
1: ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। आज सहाफत की आजादी का आलमी दिन है। आज के दिन दुनिया भर में आजाद सहाफत को यकीनी बनाने के लिए किए जा रहे इकदाम को उजागर किया जाता है। साथ ही मीडिया के उन अफराद को भी याद किया जाता है जिन्होंने पूरी दुनिया में अपने पेशेवराना फराइज की अंजामदही के दौरान अपनी जानों का नजराना पेश किया। वर्ल्ड प्रेस डे के सिलसिले में आज जम्मू कश्मीर में भी मुख्तलिफ सहाफती अंजुमनों की तरफ से कई प्रोग्रामों का अहतमाम किया गया। मुतअद्दिद समाजी और सियासी शख्सियात नीज इंतजामिया के आला अहदेदारों ने प्रेस डे के मौके पर समाज की बेहतरी के लिए काम करने वाले सहाफियों को मुबारकबाद पेश की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस दिन के मौके पर एक पैगाम में कहा है कि सहाफी बरादरी पिछड़े तबकों की आवाज बनकर उनके मयार हयात में बेहतरी लाने में अहम रोल अदा करती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जमान आला तनवीर सादिक ने कहा है कि सहाफत जमहूरियत का चौथा सुतून है और सहाफत की आजादी मुल्क के आइन की रूह है। जमीयत हमदानिया के सरबरा मीरवाइज मौलवी रियाज अहमद हमदानी ने भी आज के दिन सहाफती बरादरी को मुबारकबाद दी है। ट्रांसपोर्ट के वजीर सतीश शर्मा ने बेहतर समाज की तश्कील में बेलोस खिदमत को अहम करार देते हुए ये काम अंजाम देने वाले अफराद की सराहना की है। वह जम्मू में आर्ट ऑफ लिविंग नामी तंजीम के अहतमाम से मुनाकदा अनसंग एवरीडे हीरोज अवार्ड की तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर मेंबर असेंबली चिनैनी बलवंत सिंह मनकोटिया और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर शांत मनु के अलावा दीगर कई शख्सियात मौजूद थी। अब पेश है मुख्तलिफ सियासी जमातों की सरगर्मियों से मुतल्लिक खबरें। गांधरबल में आज PDP की तरफ से एक आवामी जलसे का इनेकाद किया गया। इस मौके पर पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती ने नौजवानों को जम्मू कश्मीर की सियासत में भरपूर हिस्सा लेने की ताकीद की। धनियासना श्रीनगर में समाजी कारकुन और नामवर कारखानादार फातिमा नूर खानियारी ने पार्टी के खवातीन विंग की सदर अंजुम फाजले की मौजूदगी में PDP में शमूलियत इख्तियार की। श्रीनगर में आज कश्मीरी लैंग्वेज यूनियन और सागर कल्चरल फोरम चुगरपट्टन के एक मुश्तरक वफद ने MLA वहीद रहमान परास से मुलाकात की, जिस दौरान कश्मीरी जबान को दरपेश मुख्तलिफ चैलेंजेस और मसाइल पर तबादला ख्याल हुआ। MLA मौसूफ ने वफद को यकीन दिलाया कि कश्मीरी जबान से मुतलिक उनके खदशात को सरकार की नोटिस में लाया जाएगा। BJP के सीनियर लीडर रविंद्र रैना ने आज पुलवामा के दौरे के दौरान हंजला नामी मासूम बच्चे के लवाहकीन से ताजियत का इजहार किया जो हाल ही में दुबजन शुपया में खरकाब हुआ था। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के कारकुनों का एक इजलास आज बड़गाम जिले के करालवारी चाडोरा में मुनाकद हुआ, जिस दौरान पार्टी की सरगर्मियों और उसको मजीद मजबूत बनाने के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौरखोज किया गया। इजलास में पार्टी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी अबरार अहमद भट्ट के अलावा दीगर कई लीडरों ने शिरकत की। इस दौरान पार्टी के प्रदेश सदर GM शाहीन ने सड़क ट्रांसपोर्ट और शहरों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी से अपील की है कि वो बारामूला जिले में तापर बाबा ऋषि सड़क प्रोजेक्ट का तामीर का काम बहाल किया जाना चाहिए। अब रेल सर्विस से मुतल्लिक की खबर। श्रीनगर और जम्मू के दरमियान वंदे भारत एक्सप्रेस रेल सर्विस कामयाबी के साथ जारी है। यह बात काबिल जिक्र है कि सर्विस के जरिए श्रीनगर जम्मू के दरमियान सफर महज 4 घंटे 45 मिनट में बगैर तमाम 730 रुपए के एक तरफा किराए पर तय होता है। आम लोग इस सर्विस पर इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। श्रीनगर में आज ASR वेलफेयर ट्रस्ट के एहतमाम से एक तकरीब मुनाकद हुई। तकरीब के दौरान मारूफ महरी रियाजियात और कलमकार शहबाज हाकबरी की किताब कुरान शरीफ में मौजूद रियाजियाती हकाइक की रस्मी रोनमाई अंजाम दी गई। ये किताब अंग्रेजी से तर्जुमा की गई है। मगरबी बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, आसाम और मरकज के जेर इंतजाम इलाके पुडुचेरी में हुए असम्बली चुनाव के लिए वोटों की गिनती कल होगी। इन खितों में असम्बली चुनाव के लिए वोटों की गिनती के सिलसिले में सभी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। मगरबी एशिया में जारी कशीदगी के दौरान ओपेक प्लस ममालिक जून में तेल की पैदावार से मुतलिक अपने निशानों में इजाफा करने पर उसूली तौर रजामंद हो गए हैं। मुतहदा अरब अमारात, UAE के ओपेक से अलहदा होने और मगरबी एशिया में जारी बहरान के दौरान ये मुसलसल तीसरा माहाना इजाफा किया गया। ग्रुप से अलग होने के बाद अब ओपेक प्लस में ईरान समेत कुल 21 रुकन ममालिक हैं। खबरों के इख्तिताम से पहले मौसम पर एक नज़र। महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान दूर दूर तक हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा

0: 23.2 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 11.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 34.5 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 20.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलू आफ्ताब सुबह 5:39 और गुरूब आफ्ताब शाम 7:17 पर होगा। खबरों के खत्म से पहले सुर्खियों पर एक नजर फिर। मनशियात के खिलाफ लड़ाई में सभी की शिरकत पर लेफ्टिनेंट गवर्नर का जोर। श्रीनगर में की मनशियात मुखालिफ पदयात्रा में शिरकत। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत यूटी भर में सरगर्मियां जारी। मुल्क भर में नीट इम्तिहान का इनेकाद। जम्मू कश्मीर से 50,000 उम्मीदवारों की शिरकत और सहाफत की आजादी का आलमी दिन आज। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नशर होगा। खुदा हाफिज।
1: सामीन आदाब, आज का तबसरा लेकर मैं गुलजार अमीन। जम्मू कश्मीर को नशा से पाक करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से शुरू किए गए नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत आज टीआरसी ग्राउंड श्रीनगर से एलजी की कयादत में अब तक की सबसे बड़ी पद यात्रा निकाली गई और मनशात से पाक माशरे की तामीर को महवर बनाकर एक दस्तखती मुहिम का आगाज भी किया गया। आज की पैदल यात्रा की तकरीब में हजारों नौजवानों, खवातीन, सियासतदानों, सिविल सोसाइटी और माशरे के सभी तबकों और मुख्तलिफ मकातिब फिक्र से वाबस्ता लोगों ने शिरकत की। कसीर तादाद में शुरका ने इस बात को उजागर किया कि जम्मू कश्मीर की आवाम इज्तिमाई तौर पर मनशियात के खिलाफ यकसान मौकिफ रखते हैं। इस मौके पर एलजी ने लोगों से अपील की, आइए हम मुत्तहिद हों और आने वाली नस्लों के लिए एक महफूज और सेहतमंद जम्मू कश्मीर बनाने के लिए मिलकर काम करें। एलजी ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में मनशियात की स्मगलिंग का दहशतगर्दी से बराह रास्त ताल्लुक है और मनशियात फरोशों और दहशतगर्दों के दरमियान गठजोड़ मुल्क की अंदरूनी सलामती के लिए चैलेंज है। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान की हर तबके में पजीराई हासिल हो रही है और लोग बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि हालिया बरसों में जम्मू कश्मीर के नौजवान बुरी तरह मनशियात की लपेट में आ गए हैं और हर साल इनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। एक सरसरी अंदाजे के मुताबिक 7 लाख के करीब नौजवान नशावर अद्वियात और नशे के आदि हो चुके हैं। सूरत हाल इस कदर संगीन हो चुकी है कि अब हर जिले में डी एडिक्शन सेंटरों के कयाम की जरूरत पड़ गई है। अभी तक 10 अजला में इस मुहिम के तहत 60 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी शिरकत यकीनी बनाई है। जरूरत इस अमर की है कि ये तसलसल जारी रखा जाएगा ताकि बेहतर नतीजे की उम्मीद की जा सके। तबसरा खत्म हुआ, शब्बक है।
2: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
3: वादी की आवाज, पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सुनने वालों के लिए ये प्रोग्राम हर रोज हमारे वक्त के मुताबिक 8 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शाम नश होता है।

आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से इस वक्त वादी की आवाज पेश किया जा रहा है। और नखमे से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान में महंगाई का तूफान और हुकूमती तरजीहात के हवाले से। पाकिस्तान में ईरान अमरीका जंग की आड़ में गरीब आवाम की चमड़ी उधेड़ कर रख दी गई है। वहां आम आदमी की खामोश चीखें आसमान हिला रही हैं। बढ़ती हुई खुदकुशियां जराइम की शरह में होशरुबा इजाफा बता रहे हैं कि इन आलमी सरगर्मियों की छतरी तले पाकिस्तान का गरीब आदमी पिसकर रह गया है। ईरान और अमरीका के दरमियान हालिया कशीदगी और महदूद जंगी माहौल ने पूरे खित्ते की मईशत को हिला के रख दिया है। इस जंग के असरात सिर्फ खलीज तक महदूद नहीं रहे बल्कि जनूबी एशिया के ममालिक भी इसकी लपेट में आए हैं। मगर पाकिस्तान की सूरत हाल इन सब से मुख्तलिफ और कहीं ज्यादा तशवीशनाक नजर आती है। बांग्लादेश जो कभी पाकिस्तान से पीछे समझा जाता था आज महंगाई के बावजूद सन्नती तरक्की के बाइस अपने शहरियों को निस्बतन बेहतर मौके फरहम कर रहा है। श्रीलंका शदीद माशी बहरान से निकलने की कोशिश कर रहा है और वहां भी कीमतें बुलंद है मगर हुकूमती नज्म जब्त और आलमी इमदाद ने कुछ इस्तेकाम पैदा किया है। इसके बरक्स पाकिस्तान में महंगाई ने एक तूफान की शक्ल इख्तियार कर ली है जहां न सिर्फ कीमतें बेकाबू हैं बल्कि रियासती सतह पर कोई वाजिया हिकमत अमली भी दिखाई नहीं देती। पाकिस्तानी हुकूमत का सारा जोर तालीमी इदारों पर चलता है जहां जंग हो रही है वहां स्कूल खुले हैं जबकि पाकिस्तान में तालीम पर खुदकुश हमले करते हुए बचत के नाम पर स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। पाकिस्तान में महंगाई की सबसे बड़ी वजह तवानाई के शोबे में बेतहाशा इजाफा है। बिजली की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं और इसमें मुख्तलिफ टैक्सेस और लेवीज ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। वहां एक मुतवस्त तबके का फर्द जो बमुश्किल अपने घर का खर्च चलाता है अब बिजली का बिल देखकर परेशान हो जाता है। तेल की कीमतों में भी गुज़श्ता 3 माह के दौरान मुसलसल इजाफा देखा गया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हर 15 दिन बाद होने

वाला इजाफा वह आवाम के लिए एक नई आजमाइश बन चुका है, तो इसका असर सिर्फ गाड़ी चलाने तक महदूद नहीं रहता बल्कि अशियाई खुर्दनोश, ट्रांसपोर्ट और हर शोबे पर पड़ता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे ने किरायों को आसमान तक पहुंचा दिया है। गैस की कीमतों में इजाफा भी आवाम के लिए एक और बड़ा धचका है। वहां घरेलू सार्फीन के लिए गैस के बिल नाकाबिल बर्दाश्त हो चुके हैं, जबकि सर्दियों में गैस की अदम दस्तियाबी ने लोगों को मुतबादल ज़राए इस्तेमाल करने पर मजबूर किया है, जो मजीद महंगे साबित हुए। सन्नतों के लिए गैस की कीमतों में इजाफे ने पैदावारी लागत बढ़ा दी है, जिसके नतीजे में अशिया की कीमतें मजीद बढ़ गई हैं। इस तरह वहां महंगाई का एक ऐसा चक्कर शुरू हो चुका है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। समिन महंगाई और बेरोजगारी का बराह रास्त ताल्लुक जराइम के इजाफे से भी है। हालिया महीनों में पाकिस्तान में डकैतियों, चोरियों और दीगर जराइम में इजाफा देखने में आया है। लोग अपने घरों में भी महफूज महसूस नहीं करते। इस सूरत हाल ने माशरती अमन को शदीद खतरे में डाल दिया है। इन तमाम मसाइल के बावजूद अगर हम पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमती तर्ज अमल का जायजा लें तो एक अजीब तजाद नजर आता है। एक तरफ आवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं तो दूसरी तरफ हुकूमती अखराजात बढ़ रहे हैं। वुज़रा के प्रोटोकॉल, गैर जरूरी दौरे और सरकारी वसाइल का बेदरीग इस्तेमाल आवाम के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। हुकूमत की तरजीहात में आवामी रिलीफ कहीं नजर नहीं आता। बजाय इसके कि आवाम को सहूलत दी जाए, नए टैक्सेस और लेवीज लगाकर मजीद बोझ बढ़ा दिया जाता है। ये तर्ज हुकुमरानी न सिर्फ आवामी एतमाद को मजरू कर रहा है बल्कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर भी सवाल या निशान लगा रहा है। ये कहना बेजा न होगा कि पाकिस्तान इस वक्त एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है। महंगाई, बेरोजगारी और माशी बदहाली ने आवाम को मायूसी के अंधेरों में धकेल दिया है, लेकिन हुकुमरान आवाम के साथ खड़े नजर नहीं आ रहे। हुक्मरानों और आवाम के तर्ज जिंदगी में बढ़ती खलीज अशरफिया के साथ नफरत में इजाफा कर रही है, लेकिन हुकूमत इन हकाइक से आंखें चुरा रही है। यूं लग रहा है कि यह माशी बहरान एक बड़े समाजी बहरान में तब्दील हो सकता है, जिसके नताइज नहायत ही खतरनाक होंगे। समिन प्रोग्राम में और भी कुछ आया चाहता है। आप हमारे साथ बने रहिए और यह गजल सुनिए।

आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से इस वक्त वादी की आवाज पेश किया जा रहा है। समीन, इंसानी आबादी का निसफ हिस्सा खवातीन पर मुश्तमिल है। माशरे में आमतौर पर खातून को सिर्फ नाजुक कहा और समझा जाता है। समीन, पाकिस्तान जैसे मुल्क में घरेलू हालात, गुरबत, तंगदस्ती, महरूमियों और महंगाई के हाथों मजबूर औरत जब रोजगार की तलाश में बाहर निकलती है तो वहां इसे कई पीचीदा मसाइल का सामना रहता है। अव्वल तो मुलाजमत के हसूल के लिए भी 100 तरह के पापड़ बेलने पड़ते हैं, और फर्ज कीजिए कि मुलाजमत मिल भी जाए तो भी समाज में मर्दों की हाकिमियत के बाइस इसे हर वक्त जिंसी तफरीक का सामना करना पड़ता है। ख्वातीन के घर से निकलकर नौकरी करने की मुखालफत की जाती है, जबकि अगर यही ख्वातीन रोजमर्रा के घरेलू कामकाज में मसरूफ रहें तो खुशी का इजहार किया जाता है। जो औरत घर के काम खुश असलूबी से कर रही हो और बैक वक्त खानदारी से लेकर बच्चों की तालीम तक अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा रही हो, वो भला मुलाजमत करके मुस्बत तब्दीली क्यों नहीं ला सकती। पाकिस्तान में ज्यादातर गरीब और मुतवस्त घरानों के लिए हालत जिंदगी हर गुजरते दिन के साथ मुश्किल होते जा रहे हैं, जिसकी एक बड़ी वजह घरेलू माहौल का मजमूई तौर पर तनाव है, जबकि समाजी रिश्ते भी तेजी से टूट फूट का शिकार हैं। तलाकों और खुदकुशियों की शरह में पाकिस्तान में तेजी से इजाफा हो रहा है। दूसरी जानिब ख्वातीन के साथ जिंसी ज्यादती और इज्तिमाई ज्यादती जैसे वाकात में भी इजाफा हो रहा है, और पहले कम नजर आने वाले ये वाकात अब वहां मामूल का हिस्सा बनते जा रहे हैं। इस दरिंदगी से मासूम बच्चियां भी महफूज नहीं। पाकिस्तानी माशरे में एक औरत पर अगर तशद्दुद किया जाता है तो उनमें से अक्सर ख्वातीन सिर्फ जुल्म सहती हैं या फिर आखिरी हद तक खुदकुशी कर लेती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि ये माशरा मर्दों का है, इसकी कहीं सुनवाई नहीं होगी। पाकिस्तान में आज भी एक मजलूम औरत इंसाफ के हसूल के लिए थाने में अकेली दाखिल होने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती है। लिहाजा वहाँ औरतों पर होने वाले जुल्म और जबर के अक्सर वाकात रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। अगर पर्चा दर्ज हो भी जाए तो जिस अंदाज में तहकीकात होती हैं वो जिस्मानी तशद्दुद से कहीं ज्यादा अज़ियतनाक है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की 93% ख्वातीन जिंसी तशद्दुद का निशाना बनती है, जबकि सूबा सिंध और पंजाब में सिर्फ 10% केस

रिपोर्ट होते हैं। 21वीं सदी में भी पाकिस्तान में जाहिलाना रसूमात अरूज पर हैं। राह चलते औरतों पर आवाजें कसना, उन्हें बुरे नामों से पुकारना, मजाक उड़ाना, सोशल मीडिया पर उन्हें तजलील करना, उन्हें ब्लैकमेल करना और गैर मुहज्जब अल्फाज का इस्तेमाल करना रोजमर्रा का मामूल बन चुका है। यानी आज भी दौर जहालत के पैरोकार पाकिस्तान में मौजूद हैं। किसी की बहन के साथ अगर जिंसी ज्यादती हो जाए तो भाई उसे गैरत के नाम पर कत्ल कर देता है, बजाय ये कि अपनी बहन के साथ होने वाली ज्यादती पर मुजरिम को कानून के दायरे में लाएं। समीन, ये थी चंद बातें पाकिस्तान में ख्वातीन के हकूक के ताल्लुक से। अब प्रोग्राम के आखिर पर इस नगमे से महजूज हो जाते हैं।

0: इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का जो वक्त है अपने अख्तिताम को पहुंचता है। मेजबान को प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। आप खुश रहिए, सलामत रहिए, खुदा हाफिज।
1: वादी की आवाज। पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सुनने वालों के लिए ये प्रोग्राम हर रोज हमारे वक्त के मुताबिक 8 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शाम नश्र होता है।

आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर।

समीन फिल्मी नगमे आप आकाशवाणी श्रीनगर से समाप्त कर रहे हैं। 8:45 हो रहे हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी खबरों का बुलेटिन नशर होगा, जरा सा इंतजार फरमाएं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी। सुचारू मतगणना के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से दुनिया के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का सफल परीक्षण किया। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस प्रक्षेपण की उपलब्धि पर सराहना की है। पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान अस्थायी रुकावट के बाद संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के कई गंतव्यों के लिए सामान्य उड़ानों का संचालन फिर से शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। दूसरे मैच में गुजरात टाइटन्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सवेरे 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी, उसके

0: बाद ईवीएम के माध्यम से कई चरणों में मतगणना होगी। सभी केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और केंद्रीय बलों, राज्य पुलिस कर्मियों और चुनाव अधिकारियों को तैनात किया गया है ताकि मतगणना प्रक्रिया सुचारू और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सके। रिकॉर्ड तोड़ मतदाता भागीदारी के बाद अब सबकी निगाहें कल के नतीजे पर टिकी हैं, जो तय करेगा कि अगले 5 वर्षों तक पश्चिम बंगाल पर किसका शासन रहेगा। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष विशेष शुक्ला।
1: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर से मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद यह निर्णय लिया गया। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन, अन्नाद्रमुक के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस बार के चुनाव में राज्य के सियासी मैदान में कई नए चेहरे नजर आए हैं। इस बार सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि नई पीढ़ी ने राज्य की चुनावी राजनीति में गंभीरता से दिलचस्पी दिखाई है। वॉल राइटिंग, चित्रकारी, दीवारों पर पोस्टर लगाने की संस्कृति पर प्रतिबंध लगने के बाद राजनीतिक दलों ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भरपूर इस्तेमाल किया है। मतदान के दिन युवाओं की भागीदारी भी जबरदस्त रही और हर युवा वोटर की सोशल मीडिया प्रोफाइल और पर्सनल अकाउंट पर उंगली पर नीली स्याही वाली सेल्फी भी अपडेट होती रही। चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 14,59,039 मतदाता पहली बार के वोटर रहे। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
1: केरलम में मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: केरलम के 140 विधानसभा सीटों के लिए कल होने वाली मतगणना में 43 जगहों पर 32,000 से अधिक पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया है। जिला चुनाव अधिकारियों को आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त पाबंदियां लगाने का निर्देश भी दिया गया है। मतगणना की मेजों पर अधिकारियों की तैनाती और रैंडमाइजेशन का तीसरा दौर कल सुबह 5 बजे होगा। मतगणना शुरू होने में अब बस कुछ ही घंटे बचे हैं। ऐसे में सीपीएम के नेतृत्व वाले एलडीएफ, कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने इस बार बेहतर प्रदर्शन का पूरा भरोसा जताया है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं करिश्मा राय।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुदुचेरी में आम जनता और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
4: पुदुचेरी में राजनीतिक पार्टियां और आम जनता विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मतगणना कल सुबह 8 बजे शुरू होगी। 9:30 बजे से शुरुआती रुझानों के सामने आने की उम्मीद है। ईवीएम और वीवीपैट की गिनती के लिए कुल 166 टेबल लगाए गए हैं, साथ ही डाक मतपत्र के लिए 35 टेबल लगाए गए हैं। मतगणना के लिए कुल 859 अधिकारियों को तैनात किया गया है। मतगणना में 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसमें सिविल पुलिस, सशस्त्र पुलिस और केंद्रीय बल शामिल है। पुदुचेरी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी जवाहर ने सभी संबंधित पक्षों से गिनती की प्रक्रिया को सुचारू, शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने में पूरा सहयोग देने की अपील की है। पुदुचेरी से बिपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: उधर असम में विधानसभा की सभी 126 सीटों के लिए 126 पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना की जाएगी।
5: असम में मतगणना की प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए व्यापक और बहुस्तरीय सुरक्षा प्रबंध किया गया है। मतगणना राज्य के 35 जिलों में स्थापित 40 केंद्रों में होगी। अधिकांश जिलों में जिला मुख्यालय पर एक एक केंद्र बनाया गया है, जबकि कोकराझार, तिनसुकिया और जोरहाट में 2-2 केंद्र तथा नौगांव में 3 केंद्र स्थापित किए गए हैं। पूरी प्रक्रिया की निगरानी 126 काउंटिंग ऑब्जर्वर्स द्वारा की जाएगी। उनके सहयोग के लिए लगभग 6,000 काउंटिंग कर्मी और 2,300 से अधिक माइक्रो ऑब्जर्वर्स तैनात किए गए हैं। असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग गोयल ने 2026 के विधानसभा चुनाव को ऐतिहासिक बताया है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
6: जनादेश 2026।
7: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ।
6: मतगणना की पल पल की खबर, संवाददाताओं से ताजा हाल और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का सटीक विश्लेषण।
7: कल सुबह 8:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
6: जनादेश 2026।
1: भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने कैलिफोर्निया से स्पेसएक्स के फाल्कन 9

0: इन रॉकेट से विश्व के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी को बधाई देते हुए इसे भारत के अंतरिक्ष और नवाचार के सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि मिशन दृष्टि अपनी उन्नत हर मौसम में 2400 घंटे पृथ्वी को अवलोकन करने की क्षमता के साथ भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत में निर्मित सबसे बड़े निजी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण युवाओं के नवाचार और राष्ट्र निर्माण में उनके जुनून का प्रमाण है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के बारे में हमारी संवाददाता की एक रिपोर्ट।
1: आईआईटी मद्रास से शिक्षा प्राप्त करने के बाद 5 विद्यार्थियों द्वारा स्थापित गैलेक्स आई ने आज मिशन दृष्टि के द्वारा विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। सुयश सिंह, डेनिल चावड़ा, किशन ठक्कर और अन्य युवाओं द्वारा बेंगलुरु में 2021 में आरंभ किए गए इस स्टार्टअप ने आज भारत की क्षमता का परिचय दिया है। उनके द्वारा तैयार किए गए सैटेलाइट विश्व का एकमात्र ऐसा यान है जिसमें सिंथेटिक अपर्चर रेडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इमेजरी सेंसर का मिला जुला उपकरण डाला गया है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: दिल्ली के विवेक विहार इलाके में आज तड़के 4 मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से 9 लोगों की मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद आग बुझाने के लिए 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। अग्निशमन अधिकारी मुकेश वर्मा ने बताया कि सवेरे 6:25 तक आग पर काबू पा लिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने इस अग्निकांड में हुई जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा भी की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के बीच सरकार ने कहा है कि वो ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री संचालन और भारतीय नागरिकों को सहायता सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने 2 मई से देश के हवाई क्षेत्र में सामान्य हवाई यातायात को पूरी तरह से बहाल कर दिया है और क्षेत्रीय तनाव के कारण लगाए गए सभी अस्थायी सुरक्षा प्रतिबंध हटा दिए हैं। भारतीय और संयुक्त अरब अमीरात की विमान कंपनियां संयुक्त अरब अमीरात से भारत के विभिन्न गंतव्यों के लिए उड़ानों का संचालन कर रही हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने अब तक सड़क मार्ग के माध्यम से ईरान से 2,500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में सहायता की है। ईरान ने शांति वार्ता में गतिरोध को समाप्त करने के प्रयास में आज अमरीका को नया प्रस्ताव भेजा। हालांकि अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो पश्चिम एशिया संघर्ष को खत्म करने के लिए ईरान के इस नए प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि अमरीका द्वारा किसी भी ऐसे ढांचे को स्वीकार करने की संभावना नहीं है जिसमें ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने की ठोस गारंटी शामिल न हो। ईरान ने संकेत दिया है कि यदि अमरीका अपनी सैन्य उपस्थिति को कम करता है और ईरानी तेल निर्यात पर प्रतिबंध समेत आर्थिक दबाव में ढील देता है तो वो होर्मुज जल डमरू मध्य के आसपास तनाव को कम करने के लिए तैयार है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और विदर्भ में आंधी और ओलावृष्टि का भी अनुमान व्यक्त किया गया है। विभाग ने असम, मेघालय, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल गरज के साथ तेज बारिश की

0: आशंका जताई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार पुणे जिले के नासरापुर में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। आकाशवाणी समाचार के व्हाट्सएप चैनल ने 1,00,000 फॉलोअर्स का आंकड़ा हासिल कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस व्हाट्सएप चैनल के जरिए प्रतिदिन समाचार अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज और अलर्ट्स उपलब्ध कराए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उन खबरों और सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिनमें यह कहा गया था कि आधार कार्ड का स्वरूप इस साल के अंत तक बदलकर सिर्फ एक फोटो और एक QR कोड वाला हो जाएगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से कल से अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाएगा। इसका उद्देश्य देशभर के स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि संबंधी खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। IPL क्रिकेट में हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। हैदराबाद के 166 रन के लक्ष्य को कोलकाता ने 19वें ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। कोलकाता के वरुण चक्रवर्ती को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दिन के दूसरे मुकाबले में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब ने 17 ओवर में 6 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। सरकार ने बच्चों में मधुमेह पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश हाल ही में संपन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा वितरण से संबंधित एक राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में जारी किए गए। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी। सुचारू मतगणना के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट से दुनिया के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का सफल प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस उपलब्धि की सराहना की है। पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान अस्थायी रुकावट के बाद संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के कई गंतव्यों के लिए सामान्य उड़ानों का संचालन फिर से शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं मीडियम वेव 268.1 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारा अगला ऐलान सुनिए, ये आकाशवाणी श्रीनगर समीन रोज 9 बजे वीडियो बोजो प्रोग्राम शेष रंग।
2: شیش رنگ پروگرام تازہ شمارہ ہے چس بس ستیش ممل تہندس خدمت مز حاضر سمعین ابتدائی انسانن یلن ون خدائے سن عطا کرمتن نعمتن ہر تر تلن اس ہچمت سہ کیا زانہ ہے لر یا جائے لدن تو تس مز شیرت تو پورت بہن گفو تو گارو انسانی زندگی رچ کرم نتما آسے بے نیاز تو بیار فطرت تھرٹو طوفانو تو باقی ناگہانی اسمین بلایو انسان زندگی ہن نیال گولمت وق پکنس سیت سیت این انسانن فطرت لائی گف تراوین پہر بناوین پہر لہرین تو لہر بناوین گف باسیس پتکالو کرون تو پس پائی چیز بستی بساوین شہر کرین آباد تو سوک تھاران تھاران روو سوک یمکن سے سوکی زون اصلی تو ابدی پذر سووت بی گفی منز گفن تا غارن ہند تاکارت اشار پر ذکر چھو مقدس مذہبی کتابن مزد میلان غاری ہراس چھے اسلام اسمزہ کی علامت چھ حیثیت حاصل یتہ آ حضورن صلی اللہ علیہ وآلہ

0: अब पूरी हो गई हैं। आसाम में वोटों की गिनती के लिए सभी 35 जिलों में 40 मराकज कायम किए गए हैं। 59 खवातीन समेत 722 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला होगा। पेश है एक रिपोर्ट।
1: आसाम में वोटों की शफाफ और बिला रुकावट गिनती को यकीनी बनाने के लिए कसीर जहती हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। गिनती के पूरे अमल पर 126 काउंटिंग मुशाहिदीन करीबी नज़र रखेंगे। इस अमल में मदद के लिए वोटों की गिनती से वाबस्ता तकरीबन 6000 अहलकार और 2300 से ज़्यादा माइक्रो मुशाहिदीन तैनात किए गए हैं। आसाम के आला इंतखाबी अफसर अनुराग गोयल ने 2026 के इंतखाबात को तारीखी करार दिया है, क्योंकि यहाँ तकरीबन 3 दहाइयों के बाद वाहिद मरहले में पोलिंग कराई गई है। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं रजी अहमद।
0: मगरबी बंगाल में 77 गिनती मराकज पर तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तफसील हमारे नामानिगार से।
2: चुनाव कमीशन के मुताबिक पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती की जाएगी, उसके बाद कई राउंड में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से डाले गए वोटों की गिनती होगी। गिनती के अमल को शफाफ और बिला रुकावट बनाने के लिए मरकजी फोर्सेस, रियासती पुलिस अहलकारों और चुनाव अहदेदारों को तैनात किया गया है। स्ट्रांग रूम्स और काउंटिंग हॉल्स में सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए हैं और कसीर जहती हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। कोलकाता से संदीप दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
0: इस दौरान चुनाव कमीशन ने जुनूबी 24 परगना के फाल्टा असेंबली हलके में वोटिंग के पूरे अमल को मनसूख करने का गैर मामूली कदम उठाया है। इस हलके में सभी 285 पोलिंग बूथों पर इस महीने की 21 तारीख को फिर से वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 24 मई को होगी। तमिलनाडु में वोटों की गिनती के लिए 10,545 अहलकार तैनात किए जा रहे हैं, जिनकी मदद 4,624 माइक्रो मुशाहिदीन करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
3: इस चुनाव में रियासत की सियासत में बहुत से नए किरदार शामिल हुए हैं, साथ ही नई नस्ल ने इंतखाबी अमल में काफी दिलचस्पी दिखाई है। सियासी पार्टियों ने सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया है और ऑनलाइन जबानी बहस और तकरार भी हुई है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
0: पुदुचेरी में भी वोटों की गिनती के लिए वसी हिफाजती इकदाम किए गए हैं। आकाशवाणी से बातचीत करते हुए पुदुचेरी के आला इंतखाबी अफसर पी जवाहर ने बताया कि पूरा अमल चुनाव कमीशन के मुकर्रर करदा मुशाहिदीन की निगरानी में शफाफ तरीके से किया जाएगा। तफसील हमारे नामानिगार से।
1: अब जबकि चुनाव के नतीजे आने में बहुत कम वक्त रह गया है, सियासी पार्टियां और आम लोग नतीजे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो अगले 5 साल के लिए पुदुचेरी के मुस्तकबिल के लिए अहम होगा। वोटों की गिनती के लिए 859 अहदेदार तैनात किए गए हैं। गिनती के सभी मराकज पर मीडिया सेंटर्स कायम किए गए हैं, ताकि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया को तेजी से मुसद्दका मालूमात फराहम किए जाने को यकीनी बनाया जा सके। पुदुचेरी से बिबिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं रजी अहमद।
0: केरलम में सभी 140 गिनती के मराकज पर सीनियर अहदेदारों ने तैयारियों का जायजा लिया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: रियासत भर में 43 मकामात पर 32,000 से ज्यादा पुलिस अहलकार तैनात किए गए हैं। जिला इंतखाबी अफसरों को हिदायत दी गई है कि अगर वो जरूरी समझें तो इजाफी बंदिशें आयद करें। अब जबकि वोटों के शुरू होने में कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं, सीपीएम की सरबराही वाले एलडीएफ, कांग्रेस की सरबराही वाले यूडीएफ और बीजेपी की सरबराही वाले एनडीए ने बेहतर कारकर्दगी की यकीन का इजहार किया है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलुरुथिस की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत के खलाई शोबे के स्टार्टअप गैलेक्स आई ने आज दुनिया का पहला ऑप्टोसार सयारचा कामयाबी के साथ खला में भेजा है। स्पेस एक्स के फैल्कन 9 रॉकेट के जरिए इस मिशन दृष्टि को अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया से खला में भेजा गया है। इस मिशन का वजन 190 किलोग्राम है। यह जमीन के मुशाहदे वाला अब तक का सबसे बड़ा मसनूई सयारचा है और इसे किसी प्राइवेट भारतीय कंपनी ने तैयार किया है। ये नए दौर के स्टार्टअप्स में शामिल है जो खलाई टेक्नोलॉजी को मजीद वसत दे रहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: बेंगलुरु में कायम गैलेक्स आई की बुनियाद 2021 में आईआईटी मद्रास के 5 साबिक तलाबा ने रखी थी, जिनमें दीगर के अलावा सोयाश सिंह, दैनिल चावड़ा और किशन ठक्कर शामिल है। इस स्टार्टअप को मिशन दृष्टि की कामयाबी पर दुनिया भर से तवज्जो हासिल हुई है। इस सयारचे को खला में दागा जाना भारत की

0: को ये शरफ बख्शा। अब इसरो का नया स्पेस इंडिया लिमिटेड इस स्टार्टअप्स की मदद कर रहा है कि वो अपने सयारचे से खींची हुई तस्वीरों को आलमी सतह पर तकसीम करे। बेंगलुरु से सुधींद्र की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि मिशन दृष्टि इख्तरा और मुल्क की तामीर के तई नौजवानों के जज्बे का सबूत है। उन्होंने गैलेक्स आई के बानी अफराद और इसकी पूरी टीम को मुबारकबाद दी है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने अपने पैगाम में कहा है कि इस पेशरफ से खला से मुतालिक प्राइवेट शोबे में भारत की बढ़ती हुई ताकत का अंदाजा होता है। उन्होंने ये भी कहा कि मिशन दृष्टि भारत के खला के कमर्शियल इको निज़ाम की राह में एक अहम कदम है और यह मिशन सभी मौसमों में ज़मीन की हमा वक्त मुशाहदाती सलाहियत का हामिल है। मुत्तहदा अरब इमारात की जनरल शहरी हवाबाजी अथॉरिटी ने यूएई के फजाई हदूद के अंदर मामूल की सभी फजाई खिदमात दोबारा शुरू करने और मगरबी एशिया में उभरती हुई सूरत हाल के दरमियान किए गए आर्जी एहतियाती इकदामात को खत्म करने का ऐलान किया है। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि भारत और मुत्तहदा अरब इमारात की एयरलाइंस ने यूएई से भारत में कई मकामात पर परवाजें बहाल कर दी हैं। वजारत ने कहा है कि तेहरान में भारतीय सिफारतखाने ने अब तक 2500 भारतीय शहरियों को जमीनी सरहद के रास्ते मुल्क से बाहर जाने में सहूलतें फराहम की हैं। हुकूमत ने आज कहा है कि वह मगरबी एशिया में तनाज़े के पेश नज़र तवानाई की सप्लाई, बहरी खिदमात और भारतीय शहरियों की मदद को यकीनी बनाने के सभी इकदाम कर रही है। पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत ने कहा है कि एलपीजी की जखीरांदोजी और काला बाजारी रोकने के लिए मुल्क भर में कार्रवाइयां जारी हैं। वजारत ने मजीद बताया कि कल तक 1900 से ज्यादा छापे मारे गए थे। मुल्क भर में एलपीजी सिलेंडरों की ऑनलाइन बुकिंग में कुल सनती बुनियाद पर 99% का इजाफा किया गया। इस साल मार्च से अब तक तकरीबन 6,04,000 पीएनजी कनेक्शन दिए गए हैं और 2,68,000 इजाफी कनेक्शन के लिए बुनियादी ढांचे कायम किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी की वजारत ने आज उन खबरों और सोशल मीडिया पोस्ट को मुस्तरद कर दिया है जिनमें कहा गया है कि इस साल के आखिर तक आधार की शक्ल महज एक फोटो और एक क्यूआर कोड कर दी जाएगी। वजारत ने वजाहत करते हुए कहा है कि इस तरह की तब्दीलियों का कोई मंसूबा नहीं है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स ने सर्जरी की एक नई तकनीक तैयार की है जिसे रीढ़ की हड्डी में शदीद किस्म की खराबियों के इलाज के सिलसिले में एक बड़ी पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है। एम्स ने एक बयान में कहा है कि यह तरीक़ाकार पिछले 7 सालों से इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे उन मरीजों के लिए एक उम्मीद पैदा हुई है जिन्होंने बीमारी के इब्तदाई दौर में सर्जरी के शदीद खतरात और इलाज के महदूद मुतबादिल का सामना किया है। हुकूमत ने बच्चों में डायबिटीज़ मेलिटस के बारे में एक रहनुमा दस्तावेज जारी किया है। यह दस्तावेज सेहत आमा खिदमात बहम पहुंचाने में बेहतरीन तौर तरीकों के बारे में हाल ही में अख्ताम पजीर कौमी कॉन्फ्रेंस में जारी की गई। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत ने बताया कि इस पहल से भारत उन खास मुल्कों के ग्रुप में शामिल हो गया है जिन्होंने बचपन में ही हो जाने वाली ज़ियाबतिस की देखभाल को सेहत आमा के निज़ाम में शामिल कर लिया। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत ने हाल ही में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBS के दोयम के रहनुमा खतूत जारी किए हैं। इस ताज़ा फ्रेमवर्क से 4 अनासिर पर मबनी तरीक़ाकार को इस्तेहकाम हासिल होता है जो इस तरह हैं: पैदाइश के वक्त खामियां, बीमारियां, कमियां और नशोनुमा में ताखीर। इसमें सेहत को दरपेश नए दौर के चैलेंजेस भी शामिल हैं जो इस तरह हैं: गैर मुतअद्दी बीमारियां, दिमागी सेहत और रवैया जाती तशवीश। इसमें किसी बच्चे की नशोनुमा के हर मरहले में अलग से की जाने वाली मुदाखलतों की बजाय लगातार देखभाल पर जोर दिया गया है। आकाशवाणी के खबरों के व्हाट्सएप चैनल ने 1,00,000 फॉलोअर्स का संगमील तय कर लिया है। व्हाट्सएप चैनल पर रोजाना की खबरें, ताज़ा तरीन खबरें और अलर्ट्स फराहम किए जाते हैं। दिल्ली में आज सुबह शाहदरा के विवेक विहार इलाके में एक 4 मंजिला इमारत में बड़े पैमाने पर आग लग जाने के हादसे में 9 अफराद हलाक हो गए। समझा जाता है कि ये आग एक एयर कंडीशनर फट जाने की वजह से लगी। आग बुझाने वाली 14 गाड़ियों को काम पर लगाया गया जिन्होंने जल्द ही आग पर काबू पा लिया। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आग के इस हादसे में जानों के नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है। وزیراعظم نے اس حادثے میں مرنے والوں کے قریبی رشتہ داروں کے لیے وزیراعظم کے قومی راحت فنڈ سے 2-2 لاکھ روپے کی امدادی رقم کا اعلان کیا ہے۔ زخمیوں کو 50-50 ہزار روپے دیے جائیں گے۔

दोस्तों, आपकी तरफ से भेजे गए खतूत और ईमेल्स पर मबनी फिल्मी नगमों का फरमाइशी प्रोग्राम आपकी फरमाइश लेकर हम हाजिर खिदमत हैं। मैं हूं आपका मेजबान जावेद अंद्राबी। उम्मीद है आप बखैर आफियत होंगे, खुश खुरम होंगे। दोस्तों, चूंकि प्रोग्राम आपकी फरमाइश पेश करने की जिम्मेदारी आज से मुझे सौंपी गई है, मेरी हर मुमकिन कोशिश रहेगी कि आपके भेजे गए फरमाइशी खतूत और ईमेल्स को बाकायदगी से शामिल प्रोग्राम करके आपकी तफरीक को यकीनी बना दूं। इससे पहले कि आपके फरमाइशी खतूत और ईमेल्स पढ़ना शुरू करूं, मैं आपको प्रोग्राम का पता बता देता हूं ताकि आप अपनी फरमाइश बाकायदगी के साथ हमें भेजते रहें। प्रोग्राम का पता है, इंचार्ज प्रोग्राम आपकी फरमाइश, मारिफत स्टेशन डायरेक्टर, आकाशवाणी श्रीनगर, पिन 19001। हमारा ईमेल आईडी है akf10pm@gmail.com। तो करते हैं आज के प्रोग्राम का आगाज और पढ़ते हैं ये पहला खत। ये हैं ग्राम पहरा दुर्गा छत्तीसगढ़ से पोषण बनूर, चंद्र किरण, प्रीति और छाया बनूर, बलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवानगन, कौशल्या देवानगन, हेमलता देवानगन और डिम्पल देवानगन, नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवास से ये हैं अब्दुल गफार दावर, अब्दुल खालिक दावर, जियाउल हक दावर, मोहम्मद उमर दावर और राजेंद्र कटारे। इसी ईमेल में किसी दूसरी जगह से कुछ और नाम भी हैं, ये हैं बाटापारा।

छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल जोशी। ये ईमेल आया है सलर पहलगाम से। लिखने वाले हैं पीरजादा मेराजुद्दीन, नजमुद्दीन, कैसरुद्दीन और उनके दूसरे साथी। पद्मा टाकीज सांगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रकाश शाह, कौशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगला बिन शाह और राजेंद्र शाह। आप सभी दोस्त फिल्म साजन से नगमा सुनना चाहते हैं अलका याग्निक और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में। गीतकार हैं समीर और मौसीकार नदीम श्रवण। तो आइए सुनते हैं प्रोग्राम का ये पहला नगमा, लेकिन इससे पहले ये शेर। लगा रहा हूं मजामिन नौके फिर अंबार, लगा रहा हूं मजामिन नौके फिर अंबार, खबर कर दो मेरे खिरमन के खुश चीनों को।

मुकेश के बाद अमित कुमार और साधना सरगम की आवाजों में अगला नगमा सुनते हैं। फिल्म है कृष्ण कन्हैया। इस नगमे को पसंद फरमाया है इन सामीन ने। ये हैं नयापारा बरही से श्री बसंत कुमार सूर्यवंशी, श्रीमती सरोज सूर्यवंशी, ईशराज सूर्यवंशी, श्री चंद्रकांत सूर्यवंशी, कुमारी प्राची सूर्यवंशी और कुमारी ट्योशी सूर्यवंशी। पदमपुर श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोरा, ममता अरोरा, कीर्ति अरोरा और भूमिका अरोरा। दतरंगी बाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पिंदर मणि वर्मा और अनोखे लाल वर्मा। वेडिंग खेड़ा पंजाब से मंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोरा। ये पोस्टकार्ड आया है नरगोदा छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले हैं महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल टेम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। ये ईमेल हमें भेजा है इन दोस्तों ने। ये हैं एयरपोर्ट रोड वंदना नगर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक फेरी और स्वाति प्रयाग चौधरी। तो पेश है आप सभी दोस्तों की

प्रोग्राम आपकी फरमाइश का अगला नगमा जिन सामिन की फरमाइश पर हम पेश करने जा रहे हैं वो हैं दामिनी पेंटर तुलसीराम, माया पेंटर संदेश, आदेश डेरे, प्रजोल डेरे, दादलिया डेरे, चंदू बिस्वा और तलुका नंदूरा, जिला बुड़ाना महाराष्ट्र से नारायण भाव खड़से, रिदा ताई खड़से, ललिता संजना खड़से, गणेश कार्तिक खड़से, मालती चौधरी और स्वाति प्रयाग चौधरी। ये पोस्टकार्ड हमें दौलतबाग मुरादाबाद से मौसूल हुआ है। लिखने वाले हैं जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी। मंजू काटेला से कमल बालूजा, मधु बालूजा और सागर बालूजा। सतना एमपी से उमंग मलिक और माही मलिक। विरामघाट राजकोट से रुचि गुप्ता, ट्विंकल और उमा गुप्ता। सहारनपुर से एसके बोची। राज पैलेस मामला

साथ बंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा और कार्तिक आरायन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुर मऊ से मुन्ना भाई खरनकार, पिंकी आर्यन, किशन और पीहू खरनकर। सेक्टर 5 सूर्या नगरी जोधपुर राजस्थान से ये हैं रमेश चंद्र चौहान, मोहनी चौहान, कल्पट चौहान, बेबी ग्रोवी और हिमाकश। पटना बिहार से बेताब रेडियो लिस्नर्स क्लब के मेम्बरान वसीम अक्रम, सालिया खातून और गुड़िया खातून। पेश है आप सभी दोस्तों की पसंद पर लता मंगेशकर की आवाज में सदाबंद किया गया ये दिल फरेब नगमा। फिल्म है सनम बेवफा। इस नगमे की धुन तैयार की है महेश किशोर ने और गीतकार हैं सावन कुमार।

माकश। पटना बिहार से बेताब रेडियो लिसनर्स क्लब के मेंबरान वसीम अकरम, सालिया खातून और गुड़िया खातून। पेश है आप सभी दोस्तों की पसंद पर लता मंगेशकर की आवाज में सदाबंद किया गया ये दिल फरेब नगमा। फिल्म है सनम बेवफा। इस नगमे की धुन तैयार की है महेश किशोर ने और गीतकार हैं सावन कुमार।

फिल्मी गीतों का फरमाइशी प्रोग्राम आपकी फरमाइश आप आकाशवाणी श्रीनगर से संवाद कर रहे हैं। मीडियम वेव 268.1 मीटर यानी 1116 किलोहर्ट्ज़ के अलावा FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब जो नगमा हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो फिल्म जानी दुश्मन से है, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। नगमे की फरमाइश इन दोस्तों ने की है। ये हैं ऊपरकोट मोहल्ला चौखंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदेन अब्बासी, सुहान अब्बासी, उर्जान अब्बासी, अयान अब्बासी और अब्बासी खानदान के दूसरे अफराद। गुरु तेज बहादुर मार्केट अहमदगढ़ मंडी पंजाब से मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना, आफिया जावेद अख्तर, सूरज अंसारी, शकीला, जासमीन सना, हिना, रजिया सुल्तान और अंसारी परिवार के दूसरे अफराद। आप सभी सामीन को मोहम्मद रफी और आशा भोसले के गाए हुए नगमे का इंतजार होगा। ये नगमा फिल्म जानी दुश्मन से है, तो आइए सुनते हैं।

और रेखा गणेश्वरी वर्मा, चटोदर सारा गांव से सुजन वर्मा, सौद्रा वर्मा और आयुषी। ये ईमेल हमें मिला है संबलपुर से। यह हैं कैनिकर फगोराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। तेलंगाना भूंगर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, मोहम्मद यूसुफ और उनके साथी। पटेल नगर मलूद से डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया, गीता रानी जजोरिया, गगनदीप जजोरिया, अर्जु जजोरिया और गुड्डू। ये पोस्ट कार्ड हमें मिला है ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद मराठवाड़ा से। लिखने वाले हैं श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित फाइल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमार सरोद देशमुख और कुमारी सानवी देशमुख। तो दोस्तों, आपको इंतजार होगा नगमा सुनने का, तो लीजिए सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में ये खूबसूरत नगमा। फिल्म है नील कमल, जो 1968 ईस्वी में बनी थी और इसके मौसीकार थे रवि।

ये थी लता मंगेशकर की आवाज फिल्म नागिन से। अब आइए मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म हमजोली से एक गीत सुनते हैं। इस नगमे की फरमाइश की है बाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जाविंद्र कुमार वर्मा ने। राजनगर मधुबनी से ओल्ड लिस्टर्स ग्रुप, कुशेश्वर कांत गुप्ता, दादा ठाकुर, मौसम गुप्ता, संगीता गुप्ता और रुद्र गुप्ता। ईशाबाग पेली कॉलोनी लखनऊ से मुकेश गुप्ता, रानी गुप्ता, कुसुम गुप्ता, पलक गुप्ता और बनखरी गुप्ता। राजनगर गांधी चौक कानित निकेतन से मंजीत गुप्ता, सोनाली गुप्ता, सूर्यशी गुप्ता, कोमल गुप्ता, मोनिका गुप्ता, माधवी, साध्वी, एम के गुप्ता, राजीव गुप्ता और विनीता गुप्ता। दोस्तों समाप्त कीजिए अपना फरमाइशी नगमा फिल्म हमजोली से मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की मधुर आवाजों में।

दोस्तों, प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव की तरफ हम गामजन हैं। यह आखिरी नगमा फिल्म समाधि से है, आवाज आशा भोसले की है। इस नगमे को सुनने की फरमाइश की है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सांवले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश ने। मलोट कैंप पंजाब से सुनीश मगलानी, सीमा, अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, लखविंदर संधु, महावीर संधु, गुरचरण ग्रोवर और रमेश मिगलानी। गांव जसवारी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागिनपुरी, वंदना भावना, बिंदु गोलू, बाबू देवियावंश और सूरज कुमार दाग से। ये ईमेल आया है गांव हंदीखेरा, जिला सिरसा से। भेजने वालों के नाम हैं राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और सार्थिक शर्मा। मारहरा दरवाजा ईटा से ये हैं नबी हसन अब्बासी, रशीद वारसी, नवीद हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, सुहेल अब्बासी और अनम अब्बासी। तो दोस्तों, पेश है आप सभी की फरमाइश पर प्रोग्राम का आखिरी गीत, जिसे गाया है आशा भोसले ने और फिल्म का नाम है समाधि।

तो दोस्तों, इस नगमे के साथ ही आज का आपकी फरमाइश प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इजाजत लेने से पहले आपको प्रोग्राम का पता बता देते हैं। पता है, इंचार्ज प्रोग्राम आपकी फरमाइश, मारिफत स्टेशन डायरेक्टर, आकाशवाणी श्रीनगर, पिन 19001। हमारा ईमेल आईडी है akf10pm@gmail.com। ईमेल आईडी एक बार फिर दोहराते हैं, akf10pm@gmail.com।

रेडियो कश्मीर के श्रेणी थर्ड से हम आपसे मुखातिब हैं। इस वक्त ठीक 11 बजने को हैं, हम आपको दिल्ली ले चलते हैं न्यूज़ के लिए, तो न्यूज़ का इंतज़ार कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी, उसके बाद ईवीएम के माध्यम से कई चरणों में मतगणना होगी। सभी केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और केंद्रीय बलों, राज्य पुलिस कर्मियों और चुनाव अधिकारियों को तैनात किया गया है ताकि मतगणना प्रक्रिया सुचारू और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सके। रिकॉर्ड तोड़ मतदाता भागीदारी के बाद अब सबकी निगाहें कल के नतीजे पर टिकी हैं, जो तय करेगा कि अगले 5 वर्षों तक पश्चिम बंगाल पर किसका शासन रहेगा। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष विशेष शुक्ला।
0: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन, अन्ना द्रमुक के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस बार के चुनाव में राज्य के सियासी मैदान में कई नए चेहरे नजर आए हैं। इस बार सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि नई पीढ़ी ने राज्य की चुनावी राजनीति में गंभीरता से दिलचस्पी दिखाई है। वॉल राइटिंग, चित्रकारी, दीवारों पर पोस्टर लगाने की संस्कृति पर प्रतिबंध लगने के बाद राजनीतिक दलों ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भरपूर इस्तेमाल किया है। मतदान के दिन युवाओं की भागीदारी भी जबरदस्त रही और हर युवा वोटर की सोशल मीडिया प्रोफाइल और पर्सनल अकाउंट पर उंगली पर नीली स्याही वाली सेल्फी भी अपडेट होती रही। चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 14,59,039 मतदाता पहली बार के वोटर रहे। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: केरल में भी मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। उधर असम में विधानसभा की सभी 126 सीट के लिए 126 पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना की जाएगी। पुदुचेरी में भी आम जन

और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने कैलिफोर्निया से स्पेस एक्स आई के फाल्कन 9 रॉकेट से विश्व के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी को बधाई देते हुए इसे भारत के अंतरिक्ष और नवाचार के सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना की उत्तरी कमान और केंद्रीय कमान तथा भारतीय रक्षा निर्माता सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से कल से अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाएगा। इसका उद्देश्य देश भर के स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि संबंधी खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के बीच सरकार ने कहा है कि वे ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री संचालन और भारतीय नागरिकों को सहायता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने 2 मई से देश के हवाई क्षेत्र में सामान्य हवाई यातायात को पूरी तरह से बहाल कर दिया है और क्षेत्रीय तनाव के कारण लगाए गए सभी अस्थायी सुरक्षा प्रतिबंध हटा दिए हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने अब तक सड़क मार्ग के माध्यम से ईरान से 2,500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में सहायता की है। आईपीएल क्रिकेट में हैदराबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। दिन के दूसरे मुकाबले में अहमदाबाद में पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 164 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17 ओवर में 5 विकेट पर 140 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

है हालात वाकत पर मबनी प्रोग्राम शहरबीन रोज की तरह शाम के 7 बजे, प्रोग्राम वादी की आवाज़ रात के 8 बजे और रात के 8:30 पर खेलों से मुतालिक प्रोग्राम नशर होगा स्पोर्ट्स टाइम। समीन शब के 9 बजे कश्मीरी गजलें समाप्त करें।

0: डीएम एडीएम और तो जो मेन डिस्ट्रिक्ट का जो है इंचार्ज सेंसस का वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। जो इनुमरेटर्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं और बाकी के दूसरे डिपार्टमेंट्स के जहां पर हैं। सिमिलरली जो सुपरवाइजर हैं वो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के सीनियर लोग हैं। हर इनुमरेटर के पास एक अपना आइडेंटिटी कार्ड रहेगा, एक उसके पास अपॉइंटमेंट लेटर रहेगा, तो आप देख सकते हैं, अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं। और जिस डिपार्टमेंट का होगा उस डिपार्टमेंट का भी उसके पास कार्ड होगा। कोई आपको परेशानी है तो आप अपने एरिया के जो एसडीएम हैं या डीएम हैं उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। वैसे तो हम लोगों ने एक एलोबोरेट वो कार्यक्रम चलाया है जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सभी आरडब्ल्यूएच के साथ मीटिंग कर रहे हैं और पब्लिसिटी भी हमारी हो रही है, तो ऐसी परेशानी होनी नहीं चाहिए। लेकिन आप अपना संतुष्टि करने कोई आता है, आपको विजिट करने आता है, तो उसका आई कार्ड देखें, वो देखें। और दूसरी बात ये कि जो हमारी एमसीडी एरिया में जनगणना है पहले फेज की, वो हमारी 16 मई से शुरू हो रही है
1: जी।
0: 16 मई से लेके 14 जून तक, तो उस समय लोग आएंगे वहां पर
1: जी, जी। यानी एक स्पेसिफिक टाइम है और जो लोग आएंगे उनके पास अपना
0: आई कार्ड
1: भी होगा और उस तरह के दस्तावेज होंगे कि उनसे हम पूछ सकते हैं। और ये ज्यादातर उस तरह के लोग हैं जो पहले ही सरकारी तंत्र से जुड़े हैं, काम कर रहे हैं,
0: सरकारी कर्मचारी हैं,
1: तो उन पर भरोसा आसानी से किया जा सकता है। आम लोग जो डेटा देंगे वो पूरी तरह सुरक्षित भी रहेगा,
0: वो पूरी तरीके से गोपनीय रहेगा
1: जी।
0: वो जो आपने डेटा दिया है वो इनुमरेटर अगर उसको किसी को वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता है
1: जी। तो जितेंद्र जी, मैं ये भी जानना चाहूंगी, जैसे जो डेटा दिया गया क्या उसके सत्यापन के लिए भी कुछ और हमें कागजात देने होंगे? अगर एक व्यक्ति दो घरों में रह रहा है, वो अलग अलग जोन में वो घर पड़ते हैं, तो क्या सत्यापन के लिए भी कुछ देना होगा? और जैसे छात्र हैं, किराए पर रह रहे हैं, तो उनका परिवार कहीं और है, वो कहीं और है, ऐसी परिस्थितियों में क्या करना होगा?
2: देखिए, हमारे जनगणना में हम एक चीज को हम फॉलो करते हैं जिसको हम कहते हैं डिफेक्टो मेथड, मतलब जो जहाँ पे है नॉर्मली जो जहाँ पे रह रहे हैं हम वहाँ पे उनको गिनेंगे
1: जी।
2: तो जैसे आप अभी दो ग्रुप ऑफ पीपल का नाम लिए, एक तो जो रेंट में रहने वाले लोग और जो एक स्टूडेंट्स, और जिसका नंबर शायद बहुत ही ज्यादा है दिल्ली जैसे जगह में, अगर वो लोग नॉर्मली यहाँ पे रहते हैं
1: जी।
2: और सेंसस के दौरान अगर उनको यही

0: भी अगर पाया जाता है, जो भी एनिमल उनके घर में जाएंगे तो उनकी गिनती यही होनी चाहिए
1: जी।
0: और इसमें आपने और जो दूसरे जो सवाल पूछे कि सत्यापन कैसे किया जाएगा, तो सेंसस में हम कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं पूछते हैं
1: जी,
0: कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। रेस्पोंडेंट जैसे क्वेश्चन का आंसर देंगे, हम उस चीज को रिकॉर्ड करते हैं और ये टोटली ये रेस्पोंडेंट बेस्ड आंसर होती है ये, तो इसमें उसको वेरिफिकेशन करने की कोई स्कोप नहीं है
1: जी।
0: तो जो भी एनुमरेटर जाएंगे वो केवल हमारे जो शेड्यूल में जो दिया हुआ क्वेश्चन को पूछेंगे और रेस्पोंडेंट जो आंसर देगा उसको वो रिकॉर्ड करेंगे
1: जी।
0: और ज्यादातर ये हमारे दिल्ली जैसे जगह पे कि हम लोग देखे हैं पिछले सेंसस में भी कि जो रेंट में रहते हैं या तो जो स्टूडेंट्स जो बाहर से आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, उनका यहाँ पे गिनती सही नंबर पे होती नहीं है
1: जी।
0: और इस बार हम काफी इस चीज के ऊपर जोर भी दे रहे हैं, जो पब्लिसिटी हमारे जो होती है उसमें भी हम बार बार सभी हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी बताते हैं कि अपने लोकल लेवल पे भी ये जागरूक लाए कि जो रेंट में रहने वाले लोगों को भी यहाँ पे गिना जाए।

0: नंबर पे होती नहीं है।
1: जी
0: और इस बार हम काफी इस चीज के ऊपर जोर भी दे रहे हैं, जो पब्लिसिटी हमारे जो होती है उसमें भी हम बार बार सभी हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी बताते हैं कि अपने लोकल लेवल पे भी ये जागरूक लाए कि जो रेंट में रहने वाले लोगों को भी यहाँ पे गिना जाए।
1: जी
0: और इसके पीछे का खास एक मकसद भी है, अगर उनके नंबर हम दिल्ली में अगर नहीं गिनेंगे तो बहुत बड़ी एक प्रोपोर्शन लोगों को हम छोड़ देंगे।
1: जी
0: और आप अगर देखेंगे तो दिल्ली के जो भी रिसोर्स है, चाहे वो आपके ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो आपके बेसिक एमिनिटीज जिसमें ड्रिंकिंग वाटर हो, तो ये तो दिल्ली के ही यूज कर रहे हैं। तो अनलेस अनटिल उनका नंबर हमें पता चले, बेटर प्लानिंग भी नहीं बना सकते हम दिल्ली के लिए।
1: जी
0: तो ये इससे आपके चैनल के माध्यम से भी हम ये जनरल पब्लिक को ये कहना चाहेंगे कि अगर उनके घरों में कोई पीजी में रह रहा हो या तो कोई रेंट में रह रहा हो तो उनको भी जरूर गिनती कराए जनगणना में।
1: और दिल्ली हम सिर्फ उदाहरण के लिए बोल रहे हैं, भारत वर्ष में ही यानी हर स्थान पर यही प्रक्रिया।
0: जी जी जी, ये दिल्ली का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग दिल्ली को देखते हैं, बट ये जो मैंने जो बताया अभी ये पूरे भारत के लिए लागू है।
1: जी अच्छा जी, आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि आपने कहा कि बाद में नीतियां भी बनाई जाएंगी, उनका लाभ मिलेगा आम लोगों को, लेकिन कई लोगों के मन में ऐसा भी भाव होगा कि अगर हम न बताना चाहें अपने बारे में, हम जनगणना में भाग न लेना चाहें, तो क्या हम पर कोई कार्रवाई हो सकती है? क्या ये जरूरी है भाग लेना?
2: जरूरी है। सेंसस जो कानून है 1948 का, वो हर नागरिक के ऊपर एक जिम्मेवारी देता है
1: कि
2: वो सही जानकारी दे
1: जी,
2: जो उनसे मांगी जाएगी, जो पूछी जाए।
1: जी और ऐसे में क्या डबल काउंटिंग भी हो जाती है, जैसा कि अभी बात की जितेंद्र जी ने, कि कोई किसी का परिवार मान लिया उत्तर प्रदेश में कहीं रह रहा है छोटे से गांव में, और उनका बच्चा दिल्ली में आकर पढ़ रहा है या मुंबई में है, तो मुंबई में वो रेंट पर रहता है, वहां उसकी गिनती हो गई है, ऐसे में परिवार में जो माता पिता हैं वो भी अगर उसके बारे में बताएं, तो क्या ऐसी कोई प्रक्रिया है जिसमें पता चल पाए कि दो जगह एक ही व्यक्ति का नाम गिना जा चुका है?
2: उसको हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि 100%, लेकिन जो नियम ये है कि जो जहां पर नॉर्मली रहता है वहीं पे काउंट होगा।
1: जी
2: अगर कोई बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है तो वो यहीं पे काउंट होगा।
1: जी जो जहां रह रहा है उसकी
2: नॉर्मली
1: वहीं
2: पे
1: होनी चाहिए,
2: सामान्यतः जहां पे रह रहा है वहीं पे काउंट होगा, वो वहीं पे उसे अपने आप को काउंट कराना चाहिए।
1: जी जो मकान मालिक होते हैं उनके मन में अपनी संपत्ति को लेकर अक्सर एक डर रहता है, इसीलिए जो रेंट एग्रीमेंट भी होते हैं कई बार वो बहुत डर के साथ बनाते हैं या कुछ क्लॉज उसमें रखते हैं, ऐसे में अगर जनगणना में किराएदारों को उसी संपत्ति पर गिना जाएगा, उनका एड्रेस वही जनगणना में शामिल होगा, तो क्या आगे चलकर मकान मालिक को इससे कोई खतरा हो सकता है? उन्हें डरना चाहिए क्या इस बात से?
2: नहीं, जो आपने जनगणना में इन्फॉर्मेशन दी है
1: जी,
2: वो ना तो कोर्ट उसको मंगाती है ना आरटीआई में वो प्रोवाइड की जाती है।
1: जी यानी जो कहा जा रहा है कि अगर आपके यहाँ कोई किराएदार है, अगर आपके यहाँ कोई स्टूडेंट रह रहा है और पीजी के रूप में रह रहा है, तो उनकी भी सही जानकारी देनी चाहिए, और आगे चलकर वो आपकी संपत्ति पर कोई दावा नहीं कर सकते,
2: उसके आधार पर नहीं कर सकते,
1: उसके आधार पर नहीं कर सकते हैं। जी तो अजय जी, आपसे अब मैं ये जानना चाहूंगी कि जनगणना का प्रोसेस है आपने बताया, और माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन जो हमने सुना उसमें भी उन्होंने कहा कि शुरुआत जो है वो जनता को अपनी ओर से करनी है, दो चरण इसके आमतौर पर होंगे, तो वो पहला चरण क्या है, हम किस तरह से ऑनलाइन कैसे शुरुआत करेंगे, कैसे अपनी जानकारी देंगे?
2: हाँ, इस बार जिसे सेल्फ इन्यूमरेशन कहते हैं, स्वगणना, उसको रखा गया है। तो इसमें जैसे हम एमसीडी एरिया का ले लें, तो एमसीडी एरिया में 1 मई से लेकर 15 मई तक आप स्वगणना कर सकते हैं। स्वगणना व सेल्फ इन्यूमरेशन का मतलब ये है कि आप उस पोर्टल पे चले जाएं
1: जी,
2: और बहुत आसान है, अपनी डिटेल खुद भर दें उसमें, मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं भरने में
1: जी,
2: और जैसे ही आपने भर के उसको आपने सबमिट किया पोर्टल पे, तो आपका एक नंबर जनरेट हो जाता है
1: जी,
2: जिसे सेल्फ इन्यूमरेशन आईडी बोलते हैं। तो इन्यूमरेटर जब आपके यहाँ पे आएगा तो आप उसे अपनी ऐसी आईडी दे देंगे, तो फिर वो नहीं भरेगा डिटेल, जो आपकी डिटेल है उसके पास आ जाएगी
1: जी,
2: तो वो उसके हिसाब से आगे, तो इससे काम काफी त्वरित हो जाएगा। बाहर के कई पाश्चात्य देशों में स्वगणना का है, तो हमारे यहाँ पर ये पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, डिजिटल सेंसस का एक एक कंपोनेंट है
1: जी।
2: और दूसरा पक्ष क्या होता है, जब हमारा 1 से 15 तक स्वगणना है, सेल्फ इन्यूमरेशन है, फिर 16 मई से लेकर 14 जून तक एमसीडी वाले एरिया में
1: जी,
2: हमारा फील्ड ऑपरेशन, मतलब इन्यूमरेटर घर घर जाएंगे, और जिन्होंने स्वगणना नहीं कर पाते हैं तो वो उनका डिटेल इकट्ठी करेंगे, और स्वगणना वालों की

0: सेल्फ इन्यूमरेशन वालों की सिर्फ ऐसी आईडी ले लेंगे, नंबर ले लेंगे और
1: जी
0: इस तरीके
1: तो प्रक्रिया जल्दी भी हो जाएगी, समय
0: जल्दी
1: कम लगेगा,
0: बहुत जल्दी हो जाएगी
1: जी। ऐसे में मुझे ये जानना है कि जब जनगणना हो रही है और घर पर अधिकारी आए हैं, उन्हें डिटेल देनी है, ऐसे में अगर कुछ समय के लिए कोई विदेशी नागरिक किसी परिवार में रुके हुए हैं या कोई ट्रैवलर हैं वो रुके हैं किसी वजह से, आजकल बीएनबी सिस्टम भी है तो घरों में पेइंग गेस्ट के रूप में कुछ समय के लिए रुकते हैं, क्या उनकी डिटेल भी देनी जरूरी है?
0: देखिए व्यक्ति की जो डिटेल है वो तो हमारा जो नेक्स्ट फेज होगा पॉपुलेशन इन्यूमरेशन वाला उसमें ली जाती है। अभी तो बेसिकली घरों का सूचीकरण हो रहा है
1: जी,
0: एक तरीके से हम जो हाउसेज हैं उनकी डिटेल इकट्ठी कर रहे हैं, बस ये जरूर पता कर रहे हैं कि भाई कितने वो, मतलब एक ही आदमी बताते हैं जो हेड ऑफ द हाउस होल्ड है
1: जी,
0: कि भाई हमारे इसमें चार लोग हैं या पांच लोग हैं
1: जी। ऐसे में जिस व्यक्ति के नाम वो मकान है अगर उनका देहांत हो चुका है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई है, तो किसका नाम वहाँ लिखवाया जाएगा मुखिया के तौर पर, परिवार के मुखिया के तौर पर?
0: हेड ऑफ द हाउस होल्ड तो कोई जरूरी नहीं है कि वो घर का मालिक ही हो, जो भी वहाँ पर बेसिकली वो एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में उनकी जानकारी दे रहा है घर के बारे में, जिसको घर के बारे में मालूम हो,
1: तो उस एड्रेस पर एक व्यक्ति रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को और वो परिवार की
0: जानकारी दे रहा है
1: जी। तो इस तरह के कंफ्यूजन नहीं रखने हैं कि किसके नाम मकान है,
0: नहीं, और नहीं, वो व्यक्ति वो नहीं
1: जी।
0: बात यह है कि कोई परिवार रह रहा है एक घर में, इस मान लीजिए इधर कोई रह रहा है
1: जी,
0: तो इसको इस घर में कितने लोग रह रहे हैं, इसके क्या स्ट्रक्चर्स की एट्रीब्यूट्स हैं वो
1: जी वो बताने हैं। जितेंद्र जी आपसे जानना चाहूंगी, जैसे अभी सर ने बताया कि एक घर का रिप्रेजेंटेशन इसमें हो रहा है
0: जी,
1: तो जो कच्ची कॉलोनियां होती हैं, झुग्गी बस्ती जो है, जैसे एक परिवार वहां रह रहा है वो एड्रेस कहीं कागजों पर पक्का नहीं है
2: जी,
1: तो ऐसे में वो क्या करें
2: जी? देखिए जनगणना में हम कभी ये नहीं देखने के लिए कोशिश करते कि ये घर ऑथोराइज कॉलोनी में है कि अनऑथोराइज कॉलोनी में है, रहने वाले आदमी के नाम पे ये कागजात बनाए कि नहीं बनाए, ये हमें नहीं देखना है
1: जी।
2: हमारा जो मकसद है कि पूरे अगर कोई एरिया, जैसे आप, मैं दिल्ली का ही फिर से एग्जांपल दूंगा यहाँ पे, तो जैसे दिल्ली में जैसे सर बता रहे थे कि 46,000 के आसपास हम लोगों ने ब्लॉक्स बनाए हैं, तो इन ब्लॉक्स में जितने भी स्ट्रक्चर्स है, कहने का मतलब है जितने भी स्ट्रक्चर मकान तो ये भी होंगे, उनको हम पहले फर्स्ट फेज में उसका हम कवर करेंगे
1: जी,
2: जिसको हम कहते हैं मकान सूचीकरण और हाउसिंग सेंसस, उसमें जाके पूरी डिटेल लिया जाएगा। तो इसमें कहीं पर भी हम ये नहीं पूछ रहे हैं जो स्ट्रक्चर में जो रहने वाले पर्सन जो है एक्चुअल उसका वो ओनर है कि नहीं है
1: जी,
2: ये हम कभी नहीं पूछते हैं। और हम सेंसस में हम सभी जगह, चाहे वो ऑथराइज हो, चाहे वो स्लम हो, चाहे वो झुग्गी जो आप बता रहे थे, हम सभी जगह हम उसको जाके सेंसस कराएंगे
1: जी।
2: हाँ, और इसमें कोई लीगलिटी देखने का कहीं पर भी स्कोप नहीं है। अगर हमारे जो शेड्यूल भी अगर आप देखेंगे जिसमें हम 33 क्वेश्चंस पूछने वाले हैं अभी
1: जी,
2: पहला चरण में, तो यहाँ पे कहीं पे लीगल डॉक्यूमेंट्स का पूछने का कहीं पर भी प्रावधान ही नहीं है
1: जी। अजय जी आपसे जानना चाहूंगी, अगर किसी वजह से गलत सूचना दे दी गई है परिवार के किसी सदस्य के द्वारा और वो बाद में सही करवानी है, तो क्या ये संभव है, इसका क्या प्रोसेस होगा?
0: क्योंकि इस बार डिजिटल है, ऐप के थ्रू डिटेल इकट्ठी की जाती है
1: जी,
0: तो अगर ऐप में मतलब जो इन्यूमरेटर है उसने सबमिट कर दिया तो फिर चेंज नहीं होगी वो,
1: फिर उसमें सुधार नहीं हो सकता,
0: उसमें सुधार नहीं होगा
1: जी। जैसे गांव देहात में होता है कि माता पिता अकेले रह रहे हैं, वृद्ध हैं, उन्हें पता नहीं है कि बच्चों ने जहां रह रहे हैं वहां अपनी जानकारी दे दी है और वो भी बता देते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो परिवार का सदस्य तो है ही, तो वो डबल एक तरह से हो गया प्रोसेस, तो उसमें क्या किया जा सकता?
0: देखिए डुप्लीकेशन हो सकता है, जो यहाँ पर जैसे मैंने पहले कहा कि इस फेज में हम जो कर रहे हैं वो हाउसिंग सेंसस कर रहे हैं
1: जी,
0: तो उसमें हम मोटा मोटी यही मांग रहे हैं कि जो आदमी उस घर में नॉर्मली रहता है, तो हो सकता है कि लोग कुछ लोग इस तरीके का
1: जी। और
0: वैसे तो इन्यूमरेटर उनको जाके समझाता है, भाई इन्यूमरेटर जाके समझाता है कि भाई जो बाहर रह रहे हैं वो मतलब उस तरीके से उनको जानकारी देता
1: जी,
0: है
1: उस समय भी उनको पहले समझाया जाएगा तब उनसे डिटेल ली जाएगी जी। और जो घर लंबे समय तक बंद मिले उनके बिहाफ पर कौन जानकारी देगा?
0: नहीं वो तो लॉक्ड लिख के हम आगे बढ़ जाते हैं
1: जी। ठीक है, तो जितेंद्र जी अब
2: इसमें मैं थोड़ा सा सर ने तो बता दिए, बट जो हमारे जो एन्यूमरेटर या तो उनके ऊपर जो सुपरवाइजर होते हैं उनका बहुत ही एग्जॉस्टिव ट्रेनिंग होती है
1: जी,
2: 3 दिन की, और इस ट्रेनिंग के दौरान हम उनको अच्छे से समझाते हैं कि हमारे सेंसस के जो कॉन्सेप्ट है, जैसे नॉर्मली रिसाइडिंग कौन हो सकते हैं, जैसे आपका जो सवाल था
1: जी,
2: कि अगर एक स्टूडेंट यहाँ आके पढ़ रहा है और उसके पेरेंट्स उसके होम स्टेट में है, तो वो एन्यूमरेटर जब उनके घर विजिट करेंगे तो वो जनरली कुछ प्रोबिंग क्वेश्चन क्वेश्चंस पूछेंगे
1: जी।
2: जैसे सपोज ओल्ड पेरेंट्स है तो उनको ये पूछेंगे कि आपके बच्चे क्या आपके साथ रह रहे हैं।

0: कि वो बाहर रह रहे हैं, तो इस तरीके से एकदम से जाके ये सवाल नहीं करेंगे कि आपके इस घर में कितने लोग रहते हैं। थोड़ी सी प्रोबिंग टेक्निक्स को यूज करके वो अपने क्वेश्चन करेंगे
1: जी,
0: ताकि हमारा जो सही जो सवाल है उनसे हम निकाल सकते हैं या तो पूछ सकते हैं, ले सकते हैं उनसे
1: जी।
0: और लॉक्ड वाला सर ने बता दिए, बट हमारे जो पहला चरण का जो समय सीमा जो है वो 30 दिन की होती है। तो ये 30 दिन के अंदर अगर एनुमरेटर फर्स्ट या सेकेंड डे में जाके देखा कि घर लॉक्ड है, तो उसका कोशिश ये होनी चाहिए कि वो सेकेंड या थर्ड टाइम भी जाके उसको चेक कर ले, क्रॉस चेक कर ले। कई बार जैसे जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं वो निकल जाते हैं अपने काम में, तो मैं भी अगले दिन वो शाम को जाए
1: जी।
0: और जैसे ऐसे भी परिवार है जो मंडे से लेके फ्राइडे तक बहुत बिजी होते हैं, तो उनको रिविजिट करने के लिए वो एक बार सैटरडे या तो संडे को चले जाए, तो एक बार रिकन्फर्म करके उसको लॉक या तो वैकेंट लिखे, ताकि हमारे यहाँ पे जो लोग जो रहने वाले एक्चुअल जो वो ना छूटे। मेन पर्पज हमारा वो है, इसीलिए 30 दिन का वो दिया गया विंडो पीरियड। और इसी 30 डेज के बाद भी अगर उनको रिकन्फर्मेशन के बाद भी पता चलती है कि घर वैकेंट है, लॉक्ड है, तो उनको वही मार्क करनी है, लॉक या वैकेंट
1: जी। यानी पूरा प्रयास किया जाएगा कि सही जानकारी दर्ज हो और सही समय पर भी हो, जो सुविधाजनक समय है।
2: उसमें बेसिकली जो जितेंद्र ने बोला कि जो लॉक्ड हाउस है उसको एक दो बार
1: जी प्रयास किया जाएगा,
2: एक दो बार फिर से विजिट किया जाता है
1: जी। यहाँ अजय जी आपसे ही जानना चाहूंगी, जैसा अभी बताया जितेंद्र जी ने कि प्रशिक्षण दिया गया है और बहुत सारी बातें उसमें बताई गई हैं, तो आपने भी बातचीत के माध्यम से बताया कि कई चीजें नई हैं, फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो पहले जनगणना हुई है भारत में और जो इस बार हो रही है, तकनीकी तौर पर, व्यावहारिक तौर पर क्या अंतर है प्रक्रिया में?
2: तकनीकी तौर पर यह है कि इसमें हम डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके 4 डिजिटल टूल हम इस्तेमाल कर रहे हैं। पहला तो है जिसे हम कहते हैं कि CMMS पोर्टल
1: जी,
2: जहां पर पूरा सेंसस का जो मैनेजमेंट है तो उसको हम इसके थ्रू, इसमें जितने भी जैसे पूरी कंट्री में करीब 34 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉइज उनको इंगेज किया जा रहा है सेंसस प्रोसेस के लिए, तो उन सबका रजिस्ट्रेशन हो गया
1: जी।
2: फिर उनको अलॉटमेंट है कहाँ पे ड्यूटी करनी है, पूरा उसका मैनेजमेंट इसके माध्यम से हो रहा है। दूसरा है हाउस लिस्टिंग ब्लॉक क्रिएटर, तो एक अगेन ये पोर्टल है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि सैटेलाइट इमेजरी जो होती है
1: जी,
2: गांव की, म्यूनिसिपल वार्ड की, सब डिस्ट्रिक्ट की, उसके ऊपर हम उसको जियो रेफरेंस्ड ब्लॉक्स काट रहे हैं। मतलब एक ब्लॉक इनुमरेटर को दिया जाता है ना, तो जैसे दिल्ली में मैंने आपको बताया कि दिल्ली को हमने 46,000 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया है
1: जी।
2: और ये 46,000 ब्लॉक जियो रेफरेंस्ड है। तीसरा जो हम टूल इस्तेमाल कर रहे हैं वो कर रहे हैं सेल्फ इनुमरेशन पोर्टल, जिसमें व्यक्ति अपना खुद का सेल्फ इनुमरेशन कर सकता है। और जो चौथा है, पहले बड़े बड़े फॉर्म लेके जाते थे हमारे इनुमरेटर जिसमें वो डिटेल लिखते थे, अब सिर्फ मोबाइल फोन पे ऐप के माध्यम से वो डिटेल इकट्ठी कर रहे हैं, वो उससे बहुत तेजी से डेटा इकट्ठा हो रहा है
1: जी।
2: पहले 20-25 मिनट लगता था उसको भरने में फॉर्म को, अब हार्डली 10 मिनट लगता है
1: जी। और व्यावहारिक तौर पर आपने बताया कि कुछ के बाद में बेहतर सुविधाएं दी जा सके।
2: हाँ, क्वेश्चन ज्यादा नहीं जोड़ेगा, 2011 के उससे
1: जी
2: कुछ ही अमेंडमेंट हुए हैं। बहुत एक्चुअली क्या होता है, सभी डिपार्टमेंट से उनकी रिक्वायरमेंट पूछी जाती है, एक हाई लेवल हाई पावर्ड कमेटी होती है
1: जी,
2: वो डिसाइड करती है कि सेंसस में कौन से सवाल, कि कोई डिपार्टमेंट कहता था मुझे इसका चाहिए, डिटेल चाहिए
1: जी। जैसे कई बार आम लोग जो है वो इस तरह की शिकायतें भी करते हैं कि इस एरिया में हमारे इतने लोग हैं लेकिन सीधी बस सुविधा कोई नहीं है, या हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन की जो है वो समस्या है, या बिजली पानी की दिक्कत है, ये होता है। तो हम एक विभाग को जानकारी दे रहे हैं लेकिन आगे ये कई विभागों तक पहुंचती है और कई बेहतर सुविधाएं हमें मिलती हैं, उसमें चिकित्सा सुविधा भी हुई, कई तरह के सरकारी डिस्पेंसरीज, ये सब। तो और इसीलिए सही जानकारी देना बहुत जरूरी है
2: जी।
1: अब जितेंद्र जी ये बताएं कि जब हम अपनी जानकारी देते हैं सेंसस के लिए, तो क्या इससे कोई आर्थिक लाभ भी होगा? कुछ लोगों के मन में ये बात है कि हमें बदले में सरकार से कुछ पैसा मिलेगा क्या, हम अपनी जानकारी दे रहे हैं या डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं तो।
0: देखिए, सेंसस में कोई डायरेक्ट बेनिफिट पब्लिक के लिए नहीं है, बट अगर आप देखेंगे तो सेंसस एकमात्र सोर्स है जो वर्ल्ड लेवल, जो आपके अर्बन एरिया का सबसे जो लोएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है
1: जी,
0: और रूरल एरिया में जो विलेज है, तो इतने लोएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर डेटा प्रोवाइड करती है। और जैसे हम बता रहे थे, सर भी बता रहे थे कि सेंसस 2 फेज में हो रही है। पहला फेज में हम हाउस लिस्टिंग करते हैं और हाउस के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक को भी कलेक्ट

0: करते हैं, और सेकंड में पॉपुलेशन एनुमरेशन करेंगे, मतलब उतने वार्ड में उतने एरिया का वार्ड का जो भी होगा उसमें कितने लोग रहते हैं वो हम जानकारी इकट्ठा करते हैं
1: जी।
0: सिमिलरली विलेज का भी, तो इतने छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जब ये गवर्नमेंट के पास अवेलेबल होगा कि इतने घरों में मे बी इतने नंबर ऑफ घरों में अभी एलपीजी कनेक्शन नहीं है, कि लैट्रिन फैसिलिटी नहीं है, कि इनके अभी भी जो मकान जो है वो कच्चा है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे स्कीम के लिए शायद वो बेनिफिशियरी बन जाएंगे। और या तो आप अगर आप देखेंगे उज्ज्वला योजना जो चल रही है अभी सरकार के द्वारा, तो उसमें जिस जिस घरों में अभी एलपीजी कनेक्शन नहीं है तो वहाँ के वो सब घर अभी यहाँ के लिए बेनिफिशियरी बन जाएंगे
1: जी।
0: तो ये एक डायरेक्टली कनेक्शन है सेंसस का डेटा एंड अवर गवर्नमेंट के पॉलिसी एंड प्रोग्राम। तो यहाँ पे आप एकदम डायरेक्ट बेनिफिट जैसे आर्थिक जैसे आप बता रहे थे वो ना देख के जितने लोग यहाँ पे सही तरीके से अपने पार्टिसिपेशन करेंगे और आंसर्स देंगे उतने अच्छे पॉलिसी एंड प्रोग्राम बन सकती है देश के लिए, वो भी छोटे से छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे
1: जी।
2: तो जैसे आपको एक उदाहरण दें कि हम फेज वन में डिटेल इकट्ठी करते हैं कि किस तरीके का ईंधन इस्तेमाल होता है घर में, तो फिर हमारे पास पूरा डेटा है कि भारत के कौन से हिस्से में लकड़ी इस्तेमाल हो रही है, कितने घरों में एलपीजी है, क्या है, हमारे पास डेटा है, तो उसके हिसाब से हम एक प्लान कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे जरूरत है। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीजें जैसे ड्रिंकिंग वाटर की है तो हम पता करते हैं कि साहब कितने घरों में नल है, तो हमारे पास हमें ये मालूम पड़ जाता है कि साहब इस डिस्ट्रिक्ट का ये जो हिस्सा है इन इन ब्लॉक्स में वहां पर वो कुएं से पानी लाते हैं, किसी पोखर से पानी लाते हैं, तो फिर हम एक इंटरवेंशन स्कीम बना सकते हैं कि साहब यहाँ पे हमें लगानी है
1: जी,
2: यहाँ पे टैप वाटर पहुंचानी है। तो जैसे सीवर फैसिलिटी है उसकी भी डिटेल हम इकट्ठी करते हैं, तो हमें मालूम पड़ जाता है कि इस कॉलोनी में सीवर फैसिलिटी नहीं है, तो ये डेटा इस तरीके से इस्तेमाल होता है। जैसे बैंकिंग का हो गया
1: जी,
2: तो बैंकिंग का अब इस शहर में इस शहर के पर्टिकुलर पार्ट में बैंकिंग बहुत कम लोगों के अकाउंट खुले हैं, तो उस हिसाब से स्कीम बन सकती है कि कैसे उसको प्रमोट किया जाए।
1: यानी ये जो डेटा है बहुत ही विस्तारित तरीके से सोचा जाता है इस पर, और किसी एक इंडिविजुअल को टारगेट नहीं किया जाता है, और जो सोचा जाता है वो पूरी सोसाइटी के बेनिफिट के लिए सोचा जाता है कि जिस चीज का अभाव है उसे हम दूर कर पाए जी। यहाँ एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी अजय जी, आपने बातचीत में कहा कि टीचर्स जो हैं वो जाएंगे डेटा कलेक्शन के लिए,
2: आपसे एक चीज शेयर करूंगा, उनका काम बहुत अच्छा रहा है
1: जी,
2: सभी जो हमारे शिक्षक टीचिंग फ्रेटर्निटी से हैं
1: जी,
2: बहुत अच्छा काम हमारे पिछले सेंससेस में हुआ है। और चूंकि एक तो उन्हें अपने एरिया का आइडिया भी होता है
1: जी,
2: तो वो भी फैसिलिटेट होता है। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, जैसे इस बार हम वैकेशन के टाइम पे कर रहे हैं तो उनकी अवेलेबिलिटी भी है
1: जी,
2: और बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने
1: जी।
2: बाकी डिपार्टमेंट से भी लेते हैं, लेकिन हाँ ये बात सही है कि टीचिंग फ्रेटर्निटी से
1: जी। तो जो भी शिक्षक सुन रहे हैं हमारे कार्यक्रम को, उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि क्योंकि आप बहुत अच्छा काम करते हैं और अपने एरिया में आप सम्मानित व्यक्ति हैं और अपने एरिया को आप अच्छे से जानते हैं, इसलिए ये जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है। हमने अभी तक जाना कि जनगणना जो है ये क्यों जरूरी है, हमें अपनी ओर से क्या सहयोग करना है, और कैसे सरकार जो है एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया इसके लिए अपना रही है, बहुत डिटेल में तैयारी की गई है ताकि हमारी सही जानकारी सरकार तक पहुंचे और बदले में हमें सुविधाएं मिले और साथ ही ऐसे फैसले लिए जा सके जो हमारे लिए आने वाले समय में बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर मैं जितेंद्र जी आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि जो हमें फर्स्ट फेज में अपनी जानकारी देनी है उसके लिए जो ऐप है या वेबसाइट है कैसे करना है उसके बारे में आप हमें बताएं
0: जी। ये पहला सेंसस है जहाँ पे सेल्फ एनुमरेशन इंट्रोड्यूस हुआ है
1: जी,
0: इससे पहले कभी ऐसे हुआ नहीं था। और ये जो जानकारी देने का जो URL जो पोर्टल है वो sec.census.gov.in, इसमें आप जाके
1: एक बार दोहरा दीजिए
0: जी, SE फॉर सेल्फ एनुमरेशन .census.gov.in
1: जी,
0: इस पोर्टल में जाके आप अपने मोबाइल नंबर घर का कोई भी सदस्य का मोबाइल नंबर से आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं
1: जी।
0: उसके बाद अपने पसंदीदा भाषा भी चुन सकते हैं और उसके बाद आप अपने जो जानकारी जो है
1: जी,
0: जो हमारे पहला चरण में जितने भी 30 थे जो क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को आप जाके अपने पसंदीदा भाषा में पढ़ के उसको आप अपना जवाब दे सकते हो
1: जी।
0: और एक चीज आपको ध्यान रखना होगा, एक बार आपने भाषा को चयन करने के बाद अब आगे जाके उसको आप

0: नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए किसी ने अगर हिंदी अगर चुना है रजिस्ट्रेशन के बाद, तो उसके पूरे जो आने वाले जो सवाल जो रहेंगे वो हिंदी में ही होंगे। और अगर किसी ने अंग्रेज अगर या तो इंग्लिश अगर उसने चुना है, तो आने वाले सभी सवाल उसको इंग्लिश में ही मिलेगा
1: जी।
0: तो जब भी अपना भाषा को वो चयन करे वो थोड़ा ध्यान से करे
1: जी,
0: क्योंकि आगे जाके वो चेंज नहीं कर सकते हैं वो। और ये सेल्फ एन्यूमरेशन का जो अभी टाइमलाइन जो है हमारे एमसीडी एरियाज के लिए, 1 मई से लेके 15 मई
1: जी,
0: 15 दिन के अंदर आप अपना जानकारी अगर चाहेंगे तो इसी पोर्टल में जाके दे सकते हैं। और जैसे सर ने भी बताए थे कि एक बार आपने जानकारी आप इस पोर्टल में जाके देने के बाद 11 डिजिट का एक ऐसी आईडी जनरेट होगी, और इस आईडी को आप अपने पास सुरक्षित रखिएगा। जब आपके घरों में एन्यूमरेटर विजिट करेंगे तो तब उनको आप ये आईडी दीजिएगा, ताकि इस आईडी के द्वारा वो आपका दिया हुआ जानकारी को वो फेच कर सकते हैं एचएलओ ऐप में
1: जी।
0: ये हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन ऐप जो है एक डिजिटल एक ऐप है जिसके द्वारा पूरे जानकारी इसी सेंसस में इकट्ठा होने वाला है।
1: एचएलओ ऐप
0: हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन ऐप
1: जी। और क्या इसके लिए कोई हेल्पलाइन नंबर भी है अगर कोई समझना चाहे इस प्रक्रिया को?
0: जी, इस बार सेंसस में जो हेल्पलाइन नंबर जो रखा गया है वो है 1855। तो अगर कोई दिल्ली के रहने वाले कोई व्यक्ति या तो कोई भी सिटीजन अगर यहाँ पे से रहने वाले कोई भी पर्सन अगर इस नंबर पे फोन करेंगे सेंसस को लेके, अगर कोई उनके मन में कोई प्रश्न हो तो इस नंबर पे फोन करेंगे तो हमारे जो भी कंसर्न जो पर्सन है इस लाइन को जो हैंडल करते हैं वो उनको वो हेल्प करेंगे, वो सहायता करेंगे
1: जी। उन्हें समझा भी सकते हैं कि कैसे एंटर करनी है डिटेल्स
0: जी।
1: और अजय जी, अब आपसे ये सवाल कि सच में जो लोग मुसाफिर हैं, ना घर है ना ठिकाना है, होमलेस लोग हैं जो जैसे बेगर्स भी हैं या कुछ उस तरह का काम करते हैं, फेरी वाले होते हैं कई लोग, या कोई उस तरह की स्थिति है, तो वो कैसे अपने आप को दर्ज करें, उन्हें क्या जानकारी देनी है?
2: जो होमलेस हैं तो होमलेस का जो उनका मकान सूचीकरण का तो नहीं होता है
1: जी,
2: जो दूसरा फेज होता है जिसको हम पॉपुलेशन एन्यूमरेशन कहते हैं, उस समय उनकी गणना होती है। तो उसमें एक दिन हमारा फिक्स होता है, अक्सर 28 फरवरी होता है, 28 फरवरी की रात को
1: जी।
2: तो हमारे जितने एन्यूमरेटर हैं पूरे जहां पर भी इन लोगों का हमारे पास, पहले हम लोग मैपिंग कर लेते हैं कि अधिकतर इन लोगों का यहाँ रहने का है, और फिर उनका वो डिटेल इकट्ठी कर लेते हैं
1: जी।
2: इस तरीके से
1: मतलब पे वो जहाँ भी जिस
2: जहाँ पर भी
1: वहीं
2: पर फुटपाथ पे जाते हैं हमारे लोग, पहले मैपिंग कर लेते हैं हम लोग
1: जी,
2: यहाँ फुटपाथ पे लोग रहते हैं वहाँ रहते हैं। तो फिर 28 तारीख की रात को शाम को वहाँ पर जाके सब लोग डिटेल इकट्ठी कर लेते हैं होमलेस की।
1: तो अजय जी, आपसे बातचीत के माध्यम से और जितेंद्र जी ने जो बताया, हमने समझा कि सेंसस जो है वो कितनी जरूरी चीज है, और ये पूरी प्रक्रिया जो है बहुत लंबी प्रक्रिया है जिसमें हमारा योगदान यही है कि हम अपने बारे में सही जानकारी दें, और जो भी हमारे घर पर आ रहे हैं वो एक विश्वसनीय पात्र हैं, वो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको हम अपना डेटा दे सकते हैं, और ये डेटा पूरी तरह गोपनीय भी है, और हमसे कुछ ऐसी जानकारी नहीं पूछी जा रही है जिससे बाद में हमें कोई नुकसान हो सकता है। तो इतना भरोसा जो है वो रखना है जी। जितेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब घरों में आएंगे एक तरह का सर्वे ये हो रहा है, ऐसे में जो सवाल वो हमसे पूछेंगे, आम लोगों को जो जवाब देना है उन सवालों का, क्या पहले से वो पता कर सकते हैं कि कौन से सवाल हैं, और इसके अलावा कोई सवाल पूछा जा रहा है तो वो मना कर सकते हैं क्या?
0: जी बिल्कुल, जो सेंसस में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पहले से ही गैजेट में नोटिफाई होती है
1: जी।
0: तो जैसे अभी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन के लिए कुल 33 क्वेश्चन पूछा जाएगा
1: जी,
0: ये क्वेश्चन का सूची ऑलरेडी ये गैजेट में नोटिफाई हो चुकी है, और एचएलओ स्टार्ट होने से पहले भी ये अपने न्यूज़पेपर में भी आप लोग देख सकते हो, कई बार न्यूज़पेपर में भी ये आती है ये
1: जी।
0: तो ये ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में भी होती है, और पब्लिक अगर जानना चाहेंगे तो गैजेट नोटिफाई जो किया गया क्वेश्चंस को भी वो अपने तरीके से जैसे इंटरनेट से भी वो लोग देख सकते हैं
1: जी।
0: और हर एक चीज पब्लिक में ही है, पब्लिक डोमेन में ही है, तो उनको भी सब कुछ पता रहता है शुरू से ही कि जो एनिमेटर उनके घर में विजिट करेंगे तो वो कौन से सवाल पूछने वाले हैं, तो इसमें कहीं मिसयूज ऑफ उनका जो पावर आप या तो पोजीशन का यहाँ पे कुछ सवाल ही नहीं उठता है
1: जी। तो सवाल पहले से हमें
0: पता होता है
1: और उनके सही जवाब देते हैं। घरों में जब हम सदस्यों की संख्या की बात करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जो दिव्यांगजन है उन्हें छोड़ दिया जाता है, या न्यू बॉर्न बेबीज हैं उनको नहीं गिना जाता है, तो क्या इनका भी बताना इनके बारे में जरूरी है?
0: जी देखिए, सेंसस में चाहे वो कोई

0: भी जेंडर का क्यों ना हो, चाहे कोई भी एज का क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी दिव्यांग या तो और कोई क्यों ना हो, हम सभी को गिनेंगे।
1: जी
0: और जैसे बताया गया है कि ये नॉर्मली रिसाइडिंग, चाहे कोई भी एज का हो, चाहे कोई भी जेंडर का हो, हम उनको गिनेंगे। और इंडिया में ये हमेशा ये देखा गया है, जो एल्डरली होते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज जो होते हैं,
1: जी
0: मे भी कुछ दिनों के वो है, और या तो दिव्यांग, तो इनको
1: जी
0: हम जनरली छोड़ देते हैं। तो ये हम आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि जब भी आपके घरों में एनिमेटर आए और आपको ये पूछे कि आपके घरों में नॉर्मली रिसाइडिंग मेंबर की संख्या क्या है,
1: जी
0: तो आप जरूर इन सबको इसमें इंक्लूड करें,
1: जी
0: क्योंकि अगर गवर्नमेंट को सही संख्या जो दिव्यांग हो या तो एल्डरली हो अगर नहीं पता चलेगा, तो उनके लिए जो जरूरत की जो योजनाएं जो है वो नहीं बन सकती है,
1: जी
0: क्योंकि वो एक स्पेशल नीड के कैटेगरी के लोग हैं, और आप दूसरी भाषा में कैसे, वो सबसे मार्जिनलाइज ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं सोसाइटी के।
1: जी
0: एल्डरली के लिए उनके जेरियाट्रिक केयर की जरूरत होती है, डिजेबल पीपल के लिए स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत होती है, कि
1: जी
0: और कुछ चीजों की जरूरत पड़ सकती है, हेल्थ केयर हो सकती है, एजुकेशन हो सकती है। तो ये एकमात्र के जरिया है जिसके द्वारा हम अपने घरों में जो रहने वाले ऐसे कैटेगरी के लोगों को बताएं, ताकि गवर्नमेंट उनके लिए भी सही योजनाएं प्रोग्राम बना सकती है।
1: जी
0: जी
1: एक आम धारणा रहती है, जब जैसे मतदाता पहचान पत्र होता है
0: जी
1: तो जिन लड़कियों की शादी हो जाती है
0: जी
1: या जो लोग बाहर जाकर नौकरी करते हैं
0: जी
1: वो अपने मूल स्थान पर ही मतदान करना चाहते हैं, तो
0: जी
1: मतदाता पहचान पत्र में एड्रेस चेंज नहीं करते,
0: जी
1: और जब कभी गिनती होती है तो मूल स्थान पर ही करवाते हैं।
0: जी
1: लेकिन ये उससे बिल्कुल अलग
0: बिल्कुल
1: है ना?
0: अलग है।
1: आप जहां रह रहे हैं,
0: जी
1: जहां आप काम कर रहे हैं, आप वहां पर अपने आप को काउंट कर
0: बिल्कुल
1: सकते हैं। जी
0: जी जैसे नॉर्मली रिसाइडिंग में हमेशा जो टेम्पररी ऑप्शन लोगों को भी गिना जाएगा,
1: जी
0: ये जरूरी नहीं कि जब एनुमरेटर घरों में जाए जितने नॉर्मली रिसाइडिंग के लोग सबके सब अवेलेबल हो, ये
1: जी
0: पॉसिबल नहीं हो सकता
1: जी
0: सभी केसेस में।
1: जी
0: तो अगर कोई अगर टेम्पररी एबसेंट है, चाहे वो काम के लिए बाहर गए हैं या तो पढ़ाई के लिए बाहर गए हैं, कुछ दिनों के लिए मैं बात कर रहा हूँ मैं, और या तो मे भी रिश्तेदारों में चले गए हैं, ऐसे लोगों को भी जो टेम्पररी एबसेंट है बट वो दे आर द नॉर्मली रिसाइडिंग मेंबर ऑफ दैट हाउस होल्ड,
1: जी
0: तो उनको भी आप इसमें गिने।
1: गिनेंगे उनको।
0: और कोई अगर गेस्ट है जो आपके घरों में मे भी कुछ दिन के लिए आए हैं
1: जी
0: और मे भी कुछ दिनों के बाद तो फिर से वापस चले जाएंगे अपने जहां से आए हैं, तो उनको आप एक्सक्लूड करें, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि हम दिल्ली में ये जानना चाह रहे हैं कि सेंसस के दौरान, और या तो आप कह सकते हैं जिस तारीख को ये डेटा पब्लिश होगी जो कि 1 मार्च 2027,
1: जी
0: तो उसी तारीख में दिल्ली में कितने लोग नॉर्मली रह रहे हैं, ताकि इस नंबर के हिसाब से जो भी पॉलिसी जो भी प्रोग्राम बननी है वो बनेगी।
1: जी आपने दिल्ली की बात की और जनगणना की जो तारीख है वो भी हमें बताई।
0: जी
1: मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि हमें कुछ और राज्यों के बारे में बताएं।
0: जी बिल्कुल, देखिए जैसे हाउस होस्टिंग ऑपरेशन जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये हमेशा ये समय सीमा दे रखा है कि अप्रैल से लेकर सितंबर, इन महीनों में कोई 30 दिन में आप हाउस होस्टिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। तो दिल्ली के लिए जैसे एमसीडी एरियाज के लिए अभी ये 16 मई से लेके, मतलब जस्ट हमारे सेल्फ एनिमेशन खत्म होती है 15 मई, 1 मई से लेके 15 मई हमारे सेल्फ एनिमेशन होगी,
1: जी
0: 16 मई से लेके 14 जून तक हमारे HLO होगी MCD एरियाज में।
1: जी
0: तो इस तरीके का बाकी स्टेट भी, बाकी यूनियन टेरिटरी भी ऐसे अपना टाइमलाइन भी पहले से ही वो नोटिफाई कर रखते हैं। जैसे यहाँ पे मैं अगर बताऊँ आपका पंजाब जैसे स्टेट में अभी 30 अप्रैल से लेके 14 मई ये उनका सेल्फ एनिमेशन का पीरियड है,
1: जी
0: और उसके बाद 15 मई से लेके 13 जून उनका HLO का टाइम है। और आप उत्तर प्रदेश का देखेंगे 7 मई से लेके 21 मई तक उनका सेल्फ एनिमरेशन है, और 22 मई से लेके 20 जून उनका HLO का पीरियड है।
1: जी
0: हरियाणा का सेल्फ एनिमरेशन का जो पीरियड है वो 16 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल और 1 मई से लेके 30 मई उनका HLO का पीरियड है।
1: जी
0: तो ऐसे स्टेट अपने अपने सेल्फ एनुमरेशन और HLO का पीरियड को भी वो नोटिफाई करते हैं,
1: जी
0: तो पब्लिक को भी पता रहता है कि इसी टाइम में ही एनुमरेटर आएंगे, उसके बाद में भी कोई आएगा तभी उनको हमें जानकारी नहीं देनी है।
1: जी
0: तो सभी चीजें यहाँ पे क्लियर है कि कौन आएगा और उनको अगर पहचानने के लिए हमें क्या क्या देखनी है, जैसे सर ने बताया उनका आइडेंटिटी कार्ड होनी चाहिए,
1: जी
0: और टाइमलाइन भी फिक्स है, क्या सवाल पूछा जाएगा। और आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाना है चाहे कोई भी हालत में हो
1: जी।
0: आप जो कहेंगे वो उनको रिकॉर्ड करेंगे, तो सभी चीजें यहाँ पे क्लियरली है।

0: इसलिए पब्लिक को पूरे दिल से मतलब तहे दिल से उनको यहाँ पे सपोर्ट करनी चाहिए, पार्टिसिपेट करनी चाहिए ताकि सेंसस सही ढंग से हो पाए।
1: जी। चाहो तो दिल्ली और जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उनकी टाइमलाइन फिर से बता दीजिए।
0: जी सर, दिल्ली के लिए अभी जो MCD एरियाज जो है इसमें कुल 12 डिस्ट्रिक्ट आते हैं न्यू दिल्ली को छोड़ के। तो यहाँ पे अभी सेल्फ एनिमेशन जो होगी वो 1 मई से लेके 15 मई तक, और उसके बाद ही HLO होगी जिसका टाइमलाइन है 16 मई से लेके 14 जून।
2: जी।
0: और राजस्थान का भी यही टाइमलाइन है, मतलब 1 मई से लेके 15 मई तक सेल्फ एनिमेशन होगी, 16 मई से लेके 14 जून तक HLO होगी। उत्तर प्रदेश का जो SC जो सेल्फ एनिमेशन का जो टाइमलाइन है वो 7 मई से लेके 21 मई एंड 22 मई से लेके 20 जून तक HLO होगी।
2: जी।
0: हरियाणा का 16 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल सेल्फ एनिमेशन होगी, 1 मई से लेके 30 मई तक HLO होगी। तो HLO हर जगह 30 दिन का ये फिक्स है ये टाइमलाइन।
1: HLO का मतलब है जहाँ पे एनुमरेटर घर घर जाएंगे।
2: जी। तो अजय जी, चलते चलते हमारे माध्यम से आप सभी लोगों से क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं सभी लोगों से सहयोग की अपील करना चाहता हूँ।
2: जी, तो बहुत बड़ी चुनौती ये सामने है, बहुत बड़ा काम है, और आज के हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे सभी जो दोस्त हैं, श्रोता मित्र हैं, वो समझ गए होंगे कि कितने लंबी प्रक्रिया है और बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं। तो हमें भी अपनी ओर से सहयोग करना है, और जैसा अजय जी ने कहा कि सहयोग की अपील जो है वो विभाग हम सभी से कर रहा है। सही जानकारी दें, समय से जानकारी दें, सतर्क भी रहें, लेकिन साथ ही जो परस्पर भरोसा है वो बनाकर रखें, क्योंकि जो ये प्रक्रिया है जनगणना की, ये कहीं ना कहीं दीर्घकालीन उद्देश्य के साथ में है। इसके लक्ष्य यही है कि हमारा लाभ हो सके, हमें फायदा पहुंचाया जा सके। तो अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी परिवार की ओर से मैं आपको कहती हूँ, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें जनगणना के विषय में बहुत विस्तार से ये जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: आभार
2: जी। डॉक्टर जितेंद्र गौड़ा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सरल शब्दों में ये पूरी प्रक्रिया आपने हमें समझाई, और अब हमें पता है कि कौन सी वेबसाइट है, क्या प्रक्रिया है, क्या तारीख है। तो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से ये जो जानकारी आपने हमारी बढ़ाई है उसके लिए आपके आभारी हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो कार्यक्रम संयोजक प्रमोद कुमार वत्स के साथ, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान के साथ, मैं नीलम मलकानिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से अब आप सभी से लेती हूँ अनुमति। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। इन मतदान केंद्रों की मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व में धर्म निरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन अन्नाद्रमुक के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। केरल में मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। असम में विधानसभा की सभी 126 सीट के लिए 126 पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना की जाएगी। पुदुचेरी में आम जनता और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
1: जनादेश 2026।
2: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
1: आज सुबह 8:30 बजे से
2: मतगणना की पल पल की खबर,
1: हर सीट की सटीक जानकारी,
2: संवाददाताओं से ताजा हाल
1: और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण
2: आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए।
1: जनादेश 2026।
0: पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 3 विधानसभा सीटों की मतगणना के लिए सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। सीएपीएफ और पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। सुचारू और पारदर्शी मतगणना प्रक्रिया के लिए मतगणना केंद्र के अंदर ड्रोन, मोबाइल फोन और ज्वलनशील वस्तुओं के उपयोग पर रोक लगा दी गई है। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने कैलिफोर्निया से स्पेस एक्स आई के फाल्कन 9 रॉकेट से विश्व के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी को बधाई देते हुए इसे भारत के अंतरिक्ष और नवाचार के सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना की उत्तरी कमान और केंद्रीय कमान तथा भारतीय रक्षा निर्माता सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से आज अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाएगा। इसका उद्देश्य देशभर के स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि संबंधी खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए

लिपुलेख दर्रे का उपयोग करने पर आपत्ति जताई है। नेपाल सरकार का कहना है कि ये क्षेत्र उसकी संप्रभु अधिकार क्षेत्र में आता है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि तीर्थ यात्रा के मार्ग को अंतिम रूप देने से पहले उससे परामर्श नहीं किया गया था। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल की आपत्ति भारत द्वारा जून और अगस्त के बीच यात्रा आयोजित करने की घोषणा के कुछ दिनों बाद आई है। पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के बीच सरकार ने कहा है कि वे ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री संचालन और भारतीय नागरिकों को सहायता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने 2 मई से देश के हवाई क्षेत्र में सामान्य हवाई यातायात को पूरी तरह से बहाल कर दिया है और क्षेत्रीय तनाव के कारण लगाए गए सभी अस्थायी सुरक्षा प्रतिबंध हटा दिए हैं। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। इससे पहले गुजरात टाइटंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। गुजरात टाइटंस की ओर से जैसन होल्डर ने 4 विकेट लिए। होल्डर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 12:11 और 9 सेकंड। शुरू हो चुका है प्रोग्राम निशिगंधा। प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर और रफी साहब की आवाज के साथ।

मिलन की रुत तो है और इस रुत में मैं तो आ गई हूँ और आप भी जल्दी से जुड़िए मेरे साथ यानी आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये वो वक्त है जब दो दिल एक सा सोचते हैं और शायद समझते भी एक सा ही है। अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

जीने के लिए बस यही जोश होना चाहिए। आपको पता है कभी कभी ना हम थके नहीं होते हैं बल्कि एक ही रूटीन लाइफ जीकर बोर हो जाते हैं। हर दिन वही चेहरे, वही बातें और वही हम सब खुद भी। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि हम मोबाइल को ही अपडेट ना करें बल्कि खुद को भी अपडेट करें। अगला गीत महेंद्र कपूर और आशा जी की आवाज में।

मुझे ऐसा लगता है जब दिन इकरार के हों तो बाहर के दिन अपने आप आ जाते हैं। अगर आपकी जिंदगी में कभी ऐसे दिन आए तो उन्हें जल्दी जल्दी जी लेने की कोशिश करना, क्योंकि ये दिन रोज रोज नहीं आते और ना ही लौट कर आते हैं। अगला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में।

वो तेरा का उतारते होंगे, वो तेरा सदका उतारते होंगे, तू जिन्हें मुस्कुरा के मिलता है। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 MHz पर। मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 12:37 और 23 सेकंड। गीतों की महफिल, बातों की महफिल, यानी आपकी अपनी महफिल निशिगंधा सुन रहे हैं आप। और अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में

पता हम सभी को होता है, लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं करते, है ना। एक बात बताइए, कभी आपने ऐसा किया है कि सब कुछ पता होने के बाद भी अनजान बनने की कोशिश की है? अगर हाँ तो मैं आपके साथ हूँ। कभी कभी हर बात मान लेना बिल्कुल जरूरी नहीं होता। अगला गीत महेंद्र कपूर और आशा जी की आवाज में।

कुछ भी गाओ, इस तरह के गाने मूड फ्रेश तो कर देते हैं। कभी कभी इस तरह के गाने भी सुन लेने चाहिए ताकि दिल और दिमाग दोनों को सुकून मिल सके। जब हमारा मूड इस तरह का हो गया है थोड़ा सा शरारती, तो एक गाना और सुन लिया जाए इसी तरह का। अगला गीत आशा जी की आवाज में।

निशिगंधा में आज के लिए बस इतना ही। 1 बजे सुनेंगे आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। आपसे फिर मुलाकात होगी 1:10 पर हमारे अगले प्रोग्राम में। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। इन मतदान केंद्रों की मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन, अन्ना द्रमुक के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। केरलम में मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। असम में विधानसभा की सभी 126 सीट के लिए 126 पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना की जाएगी। पुदुचेरी में आम जनता और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
1: जनादेश 2026।
2: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
1: आज सुबह 8:30 बजे से
2: मतगणना की पल पल की खबर,
1: हर सीट की सटीक जानकारी,
2: संवाददाताओं से ताजा हाल
1: और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण
2: आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
1: जनादेश 2026।
0: भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने कैलिफोर्निया से स्पेस एक्स आई के फाल्कन 9 रॉकेट से विश्व के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी को बधाई देते हुए इसे भारत के अंतरिक्ष और नवाचार के सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना की उत्तरी कमान और केंद्रीय कमान तथा भारतीय रक्षा निर्माता सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से आज अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाएगा। इसका उद्देश्य देश भर के स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि संबंधी खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। पेट्रोलियम निर्यातक देश ने जून के लिए तेल उत्पादन लक्ष्य बढ़ाने पर सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की है। संयुक्त अरब अमीरात के बाहर निकलने के बाद अपनी पहली वर्चुअल बैठक में ओपेक प्लस के 7 देशों ने अगले महीने तेल उत्पादन लक्ष्य को लगभग 1,88,000 बैरल प्रतिदिन बढ़ाने पर सहमति जताई है। इस वृद्धि में शामिल 7 देश सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान है। ये वृद्धि फिलहाल प्रतीकात्मक है क्योंकि होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने और पश्चिम एशिया में जारी संघर्षों के कारण तेल आपूर्ति पहले से ही प्रभावित है। नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुल

एक दर्रे का उपयोग करने पर आपत्ति जताई है। नेपाल सरकार का कहना है कि ये क्षेत्र उसके संप्रभु अधिकार क्षेत्र में आता है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि तीर्थ यात्रा के मार्ग को अंतिम रूप देने से पहले उससे परामर्श नहीं किया गया था। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल की आपत्ति भारत द्वारा जून और अगस्त के बीच यात्रा आयोजित करने की घोषणा के कुछ दिनों बाद आई है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। पंजाब किंग्स द्वारा 164 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस ने एक गेंद शेष रहते जीत हासिल कर ली। गुजरात टाइटंस की ओर से जेसन होल्डर ने 4 विकेट लिए। होल्डर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने आज उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। वक्त हुआ है 1:11 और 8 सेकेंड। गीत सुहानी प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर की आवाज के साथ।

फिल्म मुगले आजम से लता मंगेशकर की आवाज में सुना आपने ये गीत। संगीत था नौशाद साहब का और गीतकार थे शकील बदायूनी। ये फिल्म रिलीज हुई थी 1960 में और इस फिल्म का निर्देशन किया था के आसिफ ने। ये फिल्म भारतीय सिनेमा में एक क्लासिक फिल्मों में से एक मानी जाती है। और अगला गीत आशा जी की आवाज में, फिल्म साहिब बीवी और गुलाम से।

1962 में आई फिल्म साहिब, बीवी और गुलाम से सुन रहे थे आप ये गीत, और आवाज थी आशा जी की, संगीत था हेमंत कुमार का और गीतकार थे शकील बदायूनी। इस फिल्म का निर्देशन किया था अबरार अलवी ने और इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी मीना कुमारी, रहमान, वहीदा रहमान। और इस फिल्म में मीना कुमारी द्वारा निभाया गया छोटी बहू का किरदार भारतीय सिनेमा में एक बहुत ही प्रभावशाली चरित्रों में से एक माना जाता है। ये फिल्म भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम दौर की महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक मानी जाती है। ये फिल्म बिमल मित्र के उपन्यास पर आधारित थी। और अब हम सुनते हैं अगला गीत रफी साहब और सुमन कल्याणपुर की आवाज में, फिल्म शगुन से।

1964 में आई फिल्म शगुन से सुना आपने ये गीत, और आवाज थी मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की। ये फिल्म रिलीज हुई थी 1964 में और इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी वहीदा रहमान, कमलजीत, नज़ीर हुसैन, अचला देवी, निवेदिता, प्रतिमा देवी, चांद उस्मानी और नाना पलसीकर ने। फिल्म की शूटिंग बॉम्बे और नैनीताल के महबूब स्टूडियो में की गई थी और इस फिल्म में जो जितने भी गीत थे वो लिखे थे साहिर साहब ने और इन गीतों को संगीत से सजाया था खय्याम साहब ने। और अब सुनते हैं हम अगला गीत लता जी की आवाज़ में फिल्म देवदास से।

वक्त हुआ है 1:38 और 35 सेकंड। स्वादिष्ट पुलाव 1 MHz पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने। अगला गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुना आपने ये गीत। फिल्म का नाम था मिस मैरी और ये फिल्म 1957 में आई थी और इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी मीना कुमारी ने और साथ ही इस फिल्म में किशोर कुमार, जैमिनी गणेशन ने भी अभिनय किया था। संगीत हेमंत कुमार का था और गीत एवं संवाद इस फिल्म के लिखे थे राजेंद्र कृष्ण ने। अगला गीत हम सुनते हैं तलत महमूद की आवाज में, फिल्म देख कबीरा रोई।

100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। वक्त हुआ है 1:50 और 22 सेकंड और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन, अन्नाद्रमुक के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। केरलम में मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। असम में विधानसभा की सभी 126 सीट के लिए 126 पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना की जाएगी। पुदुचेरी में आम जनता और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
1: जनादेश 2026।
2: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
1: आज सुबह 8:30 बजे से
2: मतगणना की पल पल की खबर,
1: हर सीट की सटीक जानकारी,
2: संवाददाताओं से ताजा हाल
1: और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण
2: आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
1: जनादेश 2026।
0: भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई ने कैलिफोर्निया से स्पेसएक्स आई के लिए के फाल्कन 9 रॉकेट से विश्व के पहले ऑप्टोसार उपग्रह मिशन दृष्टि का प्रक्षेपण किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गैलेक्सी को बधाई देते हुए इसे भारत के अंतरिक्ष और नवाचार के सफर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना की उत्तरी कमान और केंद्रीय कमान तथा भारतीय रक्षा निर्माता सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से आज अखिल भारतीय अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाएगा। इसका उद्देश्य देश भर के स्वास्थ्य केंद्रों में अग्नि संबंधी खतरों की रोकथाम और निवारण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उन खबरों और सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि आधार कार्ड का स्वरूप इस साल के अंत तक बदलकर केवल एक फोटो और एक QR कोड वाला हो जाएगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का उपयोग करने पर आपत्ति जताई है। नेपाल सरकार का कहना है कि ये क्षेत्र उसके संप्रभु अधिकार क्षेत्र में आता है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि तीर्थ यात्रा के मार्ग को अंतिम रूप देने से पहले उससे परामर्श नहीं किया गया था। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल की आपत्ति भारत द्वारा जून और अगस्त के बीच यात्रा आयोजित करने की घोषणा के कुछ दिनों बाद आई है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जून के लिए तेल उत्पादन लक्ष्य बढ़ाने पर सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की है। संयुक्त अरब अमीरात के बाहर निकलने के बाद अपनी पहली वर्चुअल बैठक में ओपेक प्लस के 7 देशों ने अगले महीने तेल उत्पादन लक्ष्य को लगभग 188,000 बैरल प्रतिदिन बढ़ाने पर सहमति जताई है। इस वृद्धि में शामिल 7 देश सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाक

ख्वाबों से न जाओ कि अभी रात बहुत है, ख्वाबों से न जाओ कि अभी रात बहुत है, पहलू में तुम आओ कि अभी रात बहुत है, जी भर के तुम्हें देख लूं, तस्कीन हो कुछ तो मत शमा बुझाओ कि अभी रात बहुत है, कब पौ फटे कब रात कटे कौन ये जाने, मत छोड़ के जाओ कि अभी रात बहुत है, कट जाए यूं ही प्यार की बातों में हर एक पल, कुछ जागो जगाओ कि अभी रात बहुत है, ख्वाबों से ना जाओ कि अभी रात बहुत है। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं मुझे यानी अपनी रात की हम सफर मंजू को। रात सुरमई प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत।

वो नहीं मिला तो मलाल क्या, वो नहीं मिला तो मलाल क्या, जो गुजर गया सो गुजर गया, उसे याद करके न दिल दुखा, जो गुजर गया सो गुजर गया, न गिला किया न खफा हुए, यूं ही रस्ते से जुदा हुए, न तू बेवफा न मैं बेवफा, जो गुजर गया सो गुजर गया।

जाने कब तक तेरी तस्वीर निगाहों में रही, जाने कब तक तेरी तस्वीर निगाहों में रही, हो गई रात तेरे अक्स को तकते तकते, मैंने फिर तेरे तसव्वुर के किसी लम्हे में तेरे तस्वीर पे लब रख दिए आहिस्ता से।

0: जाने कब तक तेरी तस्वीर निगाहों में रही, जाने कब तक तेरी तस्वीर निगाहों में रही, हो गई रात तेरे अक्स को तकते तकते, मैंने फिर तेरे तसव्वुर के किसी लम्हे में तेरे तस्वीर पे लब रख दिए आहिस्ता से।
1: Come on अरुण, मेरी पार्टी में रंग कैसे जमेगा जब तक तुम शेर नहीं सुनाओगे।
2: हाँ, come on अरुण,
3: come on, come on, come on यार, come on यार।
4: क्या करूँ यार, आज कोई शेर ही नहीं बन रहा।
2: अरे ये क्या हुआ, ये तो शम्मा ही बुझ गई। अरे अब तो इसे खुदा ही रोशन कर सकता है भाई। अरे चेक करो यार, फिर तो नहीं गया।
1: क्या मालूम।
2: अरे भाई किसी के पास माचिस वाचिस है कि नहीं।
4: हाँ हाँ मेरे पास है। ये आंखें, ये चेहरा, ये नूर, इंसान हो या परी हो तुम, कितनी फुर्सत से बनाया होगा तुम्हें बनाने वाले ने।

उदास लोगों से प्यार करना कोई तो सीखे, उदास लोगों से प्यार करना कोई तो सीखे, सफेद लम्हों में रंग भरना कोई तो सीखे, कोई दिखाए मोहब्बतों के शराब मुझको, मेरी निगाहों से बात करना कोई तो सीखे।

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ और मैं हूं आपके साथ मंजू। वक्त हुआ है 2:39 और 39 सेकंड और आप सुन रहे हैं

कोई मिसाल नहीं है तेरी मिसाल के बाद, कोई मिसाल नहीं है तेरी मिसाल के बाद, मैं बेख्याल हुआ हूँ तेरे ख्याल के बाद। बस एक मलाल पे तू जिंदगी तमाम न कर, बड़े मलाल मिलेंगे मेरे मलाल के बाद।

तुम लौट कर आओ ना आओ, तुम लौट कर आओ या ना आओ, चाहो या ना चाहो, जो तुम्हारा इंतजार करता है तुम्हें आधा पा लेता है।

रत्सुरमई में आज के लिए बस इतना ही। आपसे बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। 3 बजे सुनेंगे आप समाचार। 3:10 पर हम साथ रहेंगी अर्चना गोयल, मुझे यानी अपनी रात की हम सफर। मंजू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम बंगाल में मतों की गिनती 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन, अन्नाद्रमुक के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। केरला में मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। असम में विधानसभा की सभी 126 सीट के लिए 126 पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना की जाएगी। पुदुचेरी में आम जनता और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
1: जनादेश 2026।
2: असम, केरलम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
1: आज सुबह 8:30 बजे से
2: मतगणना की पल पल की खबर,
1: हर सीट की सटीक जानकारी,
2: संवाददाताओं से ताजा हाल
1: और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण
2: आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए।
1: जनादेश 2026।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना की उत्तरी कमान और केंद्रीय कमान तथा भारतीय रक्षा निर्माता सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और जमैका के संबंध निरंतरता और परिवर्तन से परिपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ये संबंध साझा इतिहास पर आधारित हैं और भविष्य में अपार संभावनाओं से भरा है। जमैका के एक निजी समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को अधिक मजबूत साझेदारी बनाने के लिए मिलकर काम करना जारी रखना चाहिए। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जून के लिए तेल उत्पादन लक्ष्य बढ़ाने पर सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की है। संयुक्त अरब अमीरात के बाहर निकलने के बाद अपनी पहली वर्चुअल बैठक में ओपेक प्लस के 7 देशों ने अगले महीने तेल उत्पादन लक्ष्य को लगभग 188,000 बैरल प्रतिदिन बढ़ाने पर सहमति जताई है। इस वृद्धि में शामिल 7 देश सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान हैं। ये वृद्धि फिलहाल प्रतीकात्मक है क्योंकि होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद रहने और पश्चिम एशिया में जारी संघर्षों के कारण तेल आपूर्ति पहले से। नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का उपयोग करने पर आपत्ति जताई है। नेपाल सरकार का कहना है कि ये क्षेत्र उसके संप्रभु अधिकार क्षेत्र में आता है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि को अंतिम रूप देने से पहले उसे परामर्श नहीं किया गया था। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल की आपत्ति भारत द्वारा जून और अगस्त के बीच यात्रा आयोजित करने की घोषणा के कुछ दिनों बाद आई है। अटलांटिक महासागर में एक क्रूज जहाज पर हंता वायरस के संदिग्ध प्रकोप के कारण 3 लोगों की मौत हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि हंता वायरस का एक मामला पुष्ट हो गया है जबकि 5 अन्य संदिग्ध मामलों की जांच चल रही है। हंता वायरस मुख्य रूप से चूहों और अन्य कृंतकों के मलमूत्र से फैलता है और ये इंसानों के लिए जानलेवा श्वसन रोग का कारण बन सकता है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। पंजाब किंग्स द्वारा दिए गए 164 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस ने 1 गेंद शेष रहते जीत हासिल कर ली। इससे पहले गुजरात टाइटंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का विकल्प चुना। गुजरात टाइटंस की ओर से जेसन होल्डर ने 4 विकेट लिए। होल्डर को

आप सुन रहे हैं आपका अपना चैनल जो हमेशा आपके दिल के करीब रहता है, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम हमराही में, जिसमें हम आपके लिए लाते हैं 60 और 70 के दशक के बेहतरीन नगमे। युगल गीतों से सजे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आज आपके साथ कर दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं हसीना मान जाएगी फिल्म के इस युगल गीत के साथ।

दोस्तों, हमराही एक ऐसा कार्यक्रम जहां बातें होती हैं दिल की, उन जज्बातों की जो अक्सर होठों पर आकर भी खामोश रह जाते हैं। आज की रात उन रिश्तों के नाम जो कभी कहे नहीं जाते पर हर पल महसूस होते हैं।

मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी छोटी सी मुलाकात। कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ लोग आते हैं जो हमारे लिए कुछ नहीं होते हुए भी सब कुछ बन जाते हैं। न कोई नाम, न कोई पहचान, बस एक एहसास जो हर धड़कन में बस जाता है। शायद वो दोस्त होते हैं या शायद कुछ और, पर हम कभी पूछ नहीं पाते और वो कभी हमें बता नहीं पाते।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये गीत था फिल्म दो कलियों से। कुछ यादें बारिश की तरह होती हैं, बिना बताए आ जाती हैं और दिल को भिगो जाती हैं। वो पहली मुलाकात और वो खामोशियां जो बहुत कुछ कह जाती थीं, आज भी जब बारिश होती है तो ऐसा लगता है जैसे वो पल फिर से जी रहे हैं।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये गीत था फिल्म अनजाना से। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही और मैं हूं आज आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना गोयल। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 3:33 और ठीक 47 सेकेंड।

मोहब्बत हमेशा इजहार नहीं मांगती, कभी कभी वो सिर्फ एहसास होती है। किसी का इंतजार करना बिना ये जाने कि वो आएगा या नहीं, किसी के लिए दुआ करना बिना ये जाने कि वो आपका है या नहीं है, यही तो होती है खामोश मोहब्बत।

दोस्तों, क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा रिश्ता है जिसको आपने कभी नाम ना दिया हो? अगर है तो हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि शायद आपकी कहानी किसी और की भी हो।

आज की ये रात उन रिश्तों के नाम रही जो बिना नाम के भी सबसे खास होते हैं। याद रखिए, हर रिश्ता बोलता नहीं, कुछ रिश्ते बस महसूस किए जाते हैं, और जो महसूस होता है वो ही सबसे खास होता है।

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में ये गीत अभी आपने सुना, फिल्म थी दो रास्ते। पहली मोहब्बत एक किताब की तरह होती है जिसे हम बार बार पढ़ते हैं और हर बार कुछ नया महसूस करते हैं। दिल की धड़कन तेज, बातें कम, मुस्कान ज्यादा, यही तो होती है पहली मोहब्बत।

लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में अभी आपने गीत सुना, फिल्म थी नाइट इन लंदन। हर पहली मोहब्बत पूरी नहीं होती, पर जो अधूरी होती है वो सबसे खूबसूरत कहानी बन जाती है। पहली मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, वो बस याद बनकर मुस्कुराती रहती है।

दोस्तों, ये था हमराही का सफर। मैं आपकी हमराही अर्चना गोयल आपसे अनुमति चाहती हूँ। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए एहसास के साथ। तब तक अपनों को महसूस कीजिए और दिल की सुनिए। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतगणना स्थलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम

0: बंगाल में मतों की गिनती 77 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को फिर मतदान होगा। मतगणना 24 मई को की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि 29 अप्रैल के मतदान में गंभीर गड़बड़ी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के बाद ये निर्णय लिया गया है। तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके के नेतृत्व में धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन, अन्नाद्रमुक के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन और कुछ क्षेत्रीय दलों के बीच बहुकोणीय मुकाबला है। केरला में मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। असम में विधानसभा की सभी 126 सीटों के लिए 126 पर्यवेक्षकों की निगरानी में मतगणना की जाएगी। पुदुचेरी में आम जनता और राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव के नतीजों का
1: तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी के चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के साथ
2: आज सुबह 8:30 बजे से
1: मतगणना की पल पल की खबर,
2: हर सीट की सटीक जानकारी,
1: संवाददाताओं से ताजा हाल
2: और विशेषज्ञों द्वारा नतीजों का विश्लेषण
1: आकाशवाणी गोल्ड और अन्य फ्रीक्वेंसी पर सुनिए
2: जनादेश 2026।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय सेना की उत्तरी कमान और केंद्रीय कमान तथा भारतीय रक्षा निर्माता सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और जमैका के संबंध निरंतरता और परिवर्तन से परिपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ये संबंध साझा इतिहास पर आधारित है और भविष्य में अपार संभावनाओं से भरा है। जमैका के एक निजी समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को अधिक मजबूत साझेदारी बनाने के लिए मिलकर काम करना जारी रखना चाहिए। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जून के लिए तेल उत्पादन लक्ष्य बढ़ाने पर सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की है। संयुक्त अरब अमीरात के बाहर निकलने के बाद अपनी पहली वर्चुअल बैठक में ओपेक प्लस के 7 देशों ने अगले महीने तेल उत्पादन लक्ष्य को लगभग 188,000 बैरल प्रतिदिन बढ़ाने पर सहमति जताई है। इस वृद्धि में शामिल 7 देश सऊदी अरब, रूस, इराक, कुवैत, कजाकिस्तान, अल्जीरिया और ओमान है। अटलांटिक महासागर में एक क्रूज जहाज पर हंता वायरस के संदिग्ध प्रकोप के कारण 3 लोगों की मौत हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि हंता वायरस का एक मामला पुष्ट हो गया है, जबकि 5 अन्य संदिग्ध मामलों की जांच चल रही है। हंता वायरस मुख्य रूप से चूहों और अन्य कृंतकों के मलमूत्र से फैलता है और ये इंसानों के लिए जानलेवा श्वसन रोग का कारण बन सकता है। नेपाल ने भारत चीन द्वारा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए लिपुलेख दर्रे का उपयोग करने पर आपत्ति जताई है। नेपाल सरकार का कहना है कि ये क्षेत्र उसके संप्रभु अधिकार क्षेत्र में आता है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि तीर्थ यात्रा के मार्ग को अंतिम रूप देने से पहले उसे परामर्श। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर नेपाल की आपत्ति भारत द्वारा जून और अगस्त के बीच यात्रा आयोजित करने की घोषणा के कुछ दिनों बाद आई है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया। गुजरात टाइटंस की ओर से जेसन होल्डर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने आज उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश और आंधी तथा तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और विदर्भ में आंधी और ओलावृष्टि का भी अनुमान व्यक्त किया गया है। विभाग ने असम, मेघालय, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज गरज के साथ तेज वर्षा की आशंका जताई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणु कटारिया। All preparations are in place for counting of votes for the assembly elections in 4 states, West Bengal, Keralam, Tamil Nadu, Assam and the Union Territory of Puducherry to be held today. The counting will begin at 8 in the morning. Counting of

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। नमस्कार दोस्तों, इस पवित्र प्रभात बेला में आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम अरुणिमा में। मैं हूं आपकी साथी अर्चना गोयल। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की सुबह में हम जोड़ेंगे मन, आत्मा और ईश्वर का एक सुंदर संगम। सुबह का ये समय सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं बल्कि ईश्वर से जुड़ने का सबसे सुंदर अवसर है। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं ईश्वर की प्रार्थना के साथ।

बहुत ही खूबसूरत सी प्रार्थना भी आपने सुनी फिल्म मुजरिम से, आवाज थी साधना सरगम की। दोस्तों, जब हम सुबह उठकर ईश्वर को याद करते हैं तो हमारे दिन में एक अलग ही ऊर्जा बढ़ जाती है। आज का भाव है, हे प्रभु, आपकी कृपा से दिन शुरू हो, मेरे हर कर्म में आपका आशीर्वाद बना रहे।

अपने भीतर की अच्छाई को पहचानना ही सच्ची आध्यात्मिकता है। जब मन शांत होता है तब जीवन सुंदर लगता है। एक छोटी सी सीख, अगर आपके मन में नकारात्मक विचार आते हैं तो तुरंत खुद से कहिए, मैं ईश्वर की संतान हूं, मैं मजबूत हूं, मैं सकारात्मक हूं।

मोहम्मद रफी की आवाज में अभी आपने गीत सुना, फिल्म थी गोपी। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 4:28:56। मैं आपके साथ अर्चना गोयल, बने रहिए मेरे साथ। थोड़ा समय खुद के लिए, आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। महसूस करें आपके भीतर एक दिव्य प्रकाश है जो आपको शांति और शक्ति दे रहा है। हर सांस के साथ आप ईश्वर के और करीब जा रहे हैं, क्योंकि मन ही मंदिर है।

आज नहीं कल सही पर मेहनत रंग जरूर लाएगी। हौसलों को जरा संभाले रखो, हर कोशिश काम आएगी। थोड़ी देर भले लगे राहों में, पर मंजिल करीब आ जाएगी। ये अंधेरी रात के बाद जीत की सुबह मुस्कुराएगी।

बजा दैया, दाय उठाय लियो गिर नक पर बन से बजावत देन चलैया, जगके मोहन मन में माए नित्य करत राधा राधा राधा राधा राधा राधा।

जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें सिर्फ एक चीज चाहिए, विश्वास। खुद पर विश्वास, अपने सपनों पर विश्वास। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन सच्चाई ये है, आप वही कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। तो आज से डर को छोड़िए और अपने सपनों को गले लगाइए।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत था फिल्म गुमनाम से। दोस्तों, सुबह सिर्फ एक समय नहीं, ये एक मौका है कल की गलतियों को पीछे छोड़कर आज को बेहतर बनाने का। कहते हैं कि हर सुबह हम फिर से जन्म लेते हैं। आज हम क्या करते हैं, यही सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो आज की सुबह खुद से एक वादा कीजिए कि आप अपने दिन की शुरुआत मुस्कान से करेंगे, ना कि चिंता।

जीवन में समस्या आना तय है, लेकिन उन समस्याओं को हम कैसे देखते हैं, यही हमें खास बनाता है। एक आदमी रोज सुबह उठकर कहता था कि आज का दिन मेरा है और मैं इसे खूबसूरत बनाऊंगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी क्योंकि उसने अपनी सोच बदल ली थी। तो क्यों ना आप भी अपनी सोच को बदलकर आगे बढ़ें।